मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। आज रविवार है। शक्त 1948 की आषाढ़ मास की 21वीं तिथि तदनुसार 12 जुलाई सन 2026 5:57 होने को हैं। प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। 6 बजने के हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले समूह सर्व सुनते हैं सुमित्रा नंदन पंत की ये मातृवंदना।

आइए अब सुनते हैं केपी पुहाल के स्वर में संत कुमार सावन की, माफ कीजिएगा, सोहनलाल आंचल का लिखा यह भक्ति पद।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। आइए सुनते हैं धर्म ग्रंथों से पाठ। इसमें श्रीमद् भागवत गीता से पाठ

0: दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है उनके लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं,
1: अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वलोलुत्वं मार्दवं रीरचापलम।
0: मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण करना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग तथा चित्त की चंचलता का अभाव होना, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब प्राणियों में हेतु रहित दया भाव बनाए रखना, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, स्वभाव की कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा भाव रखना और व्यर्थ चेष्टाओं से दूर रहना।
1: तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोः नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत।
0: तेज क्षमा धैर्य अंतर्बाह्य शुद्धि शत्रुभाव का अभाव एवं अपने में बड़प्पन का अभिमान न रखना आदि दैवी संपदा वाले पुरुष के लक्षण हैं।
1: दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम।
0: अब आसुरी संपदा के संबंध में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, पाखंड घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं।
1: दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता माशुचः संपदं दैवी मभिजातोसि पांडवा।
0: दैवी एवं आसुरी दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है, इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, तू तो दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है।
1: प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते।
0: हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य तो कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होना और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होना भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है और न श्रेष्ठ आचरण तथा सत्य भाषण ही होता है।
1: असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरं अपरस्पर संभूतं

धर्म ग्रंथों से पाठ अभी आपने सुना। इसमें आपने सुना श्रीमद् भागवत गीता से पाठ। आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का अनुवाद।

श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति किसी से छिपी नहीं है। फिर भी राजा जनक अपनी रानी सुनैना से भरत के गुणों का बखान करते हैं। रानी की मनोदशा भांप कर राजा जनक भी यही चाहते हैं कि भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि भरत ने स्वार्थ तथा निजी सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं ताका है। उधर श्री राम के मन में ये विचार आता है कि मिथिलापति जनक अयोध्या वासियों तथा माताओं को चित्रकूट में वन प्रवास के कष्ट सहते कई दिन बीत गए हैं। वो कुल गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि अब वे जो उचित समझें आदेश दें।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। कृषि चर्चा में खरीफ में प्याज की खेती की जानकारी दे रही हैं डॉक्टर दीपिका चंद्रवंशी।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम खरीफ प्याज के विषय पर हम चर्चा करेंगे। प्याज आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसका उपयोग हम किस किस तरीके से और कहां कहां पर हम उपयोग करते हैं। इसे हम खरीफ सीजन में भी और रबी के सीजन में भी हम आसानी से लगा सकते हैं। इसमें प्रमुख जो प्रजातियों में प्याज की जो किस्में हैं वो आती है एग्रीफोंट डार्क रेड N53 और भीमा रेड। ये किस्में जो हैं वो खरीफ के सीजन में आसानी से लगा सकते हैं। साथ ही इसका जो बीज दर होता है वो 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त होता है। इसके लिए हम नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए हम 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा बेड बनाते हैं। उस बेड में अच्छे से वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाकर इसके बीज को हम बुवाई कर देते हैं। और बीज को बोने से पहले हम कार्बेंडाजिम नामक जैव फफूंदी नाशक या फिर ट्राइकोडर्मा नामक जैव फफूंदी नाशक उपयोग करके इसको उपचारित करने के बाद ही हम इसके बीज की बुवाई जो है वो हम करते हैं। पौधे को या फिर किसी भी फसल को लगाने के लिए खेत की तैयारी करना हमें बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए हम अच्छे से जुताई करने के बाद पौधे जब हमारी तैयार हो जाती है उसके बाद इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं और क्यारियों में लगा सकते हैं या फिर इसे समतल भूमि में भी लगा सकते हैं। और क्यारियों की चौड़ाई जो होती है हम इसमें लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर रखते हैं और लंबाई हम अपने अनुसार रख सकते हैं। और जब हमारा पौधा तैयार हो जाता है उसके बाद पौधे से पौधे की दूरी हम 10 सेंटीमीटर रखते हैं और पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है वो हम 15 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं। इसमें खाद की भी हमें जरूरत पड़ती है, तो हम खाद के लिए 50 टन सड़ी हुई गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर की दर से हम मिट्टी में मिला करके उपयोग करते हैं। या रासायनिक खाद को हम यूरिया को 100 किलोग्राम, सिंगल सुपरफास्फेट 300 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास को 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देते हैं और इसे हम समतल कर देते हैं। पौधे की देखरेख या फसल की देखभाल करने के लिए हमें इसकी जो पौधे की जड़ें हैं उसको अपेक्षाकृत ये प्याज की जड़ें हैं वो बहुत ही कम गहराई में जाती है, तो अधिक गहराई तक गुड़ाई नहीं करना चाहिए। इसमें अच्छी फसल के लिए हमें 2 से 3 बार शुरू में खरपतवार को निकालना जरूरी होता है और इसके लिए या तो हम खरपतवार नाशी पेंडीमिथेलिन जिसे हम स्टाम्प पाउडर भी बोलते हैं उसका 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 बार स्प्रे करते हैं। छिड़काव करने के बाद हम खरपतवार को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। फसल में हम टॉप ड्रेसिंग देते हैं। टॉप ड्रेसिंग मतलब यूरिया जो होता है हम उसे छिड़काव के रूप में भी करते हैं। रोपाई के 4 सप्ताह के बाद में लगभग 100 किलोग्राम यूरिया को प्रति हेक्टेयर की दर से हम छिड़काव करते हैं और यूरिया का प्रयोग सिंचाई के बाद हमें करना चाहिए जिससे हमारी जो पौधे की बढ़वार है वो अच्छे से हो सके। साथ ही हम इसमें कुछ सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं जिसमें कॉपर, आयरन और बोरान जो रहता है जिससे हमारी जो प्याज है वो फटने की जो स्थिति होती है वो नहीं होती। डबल प्याज जो आता है जिसे हम 2 प्याज जो बोलते हैं वो नहीं होता है। सूक्ष्म तत्व भी प्याज की फसल के लिए देना चाहिए। पौध संरक्षण की जहां तक बात है इसमें कीट भी लगते हैं और रोग भी लगते हैं। कीट में थ्रिप्स नामक कीट लगता है जो पत्तियों के रस चूसता है, तो इसके रोकथाम के लिए मेलाथियन का 1 ml या फिर मोनोक्रोटोफास का 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव करना चाहिए। रोग का जहां तक बात है रोग में पर्पल ब्लॉच जिसे बैगनी धब्बा भी बोलते हैं या झुलसा रोग आता है, इसके रोकथाम के लिए हमको मैनकोजेब का 2.5 ग्राम या क्लोरोफेनोलिन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से हमें 10 से 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए और इसका समय समय पर छिड़काव करके इसका रोकथाम हमें करना चाहिए। प्याज की खुदाई जो होता है जब हमारी जो गांठें अच्छे विकसित हो जाए और लगभग 6 से 9 महीने का समय हो जाए, तब जब पत्तियां सूखने लग जाए तब हमें इसकी जो कंद है उसे खुदाई करके अच्छे से छायादार जगह में हमें इसे रखना चाहिए। उपज जो होता है वो खरीफ मौसम में प्याज की जो उपज होती है वो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर हमें मिलती है। इसमें खेती करने पर लागत जो होता है वो 25,000 से 35,000 तक के आसपास प्रति एकड़ होता है और शुद्ध लाभ जो होता है वो 50,000 से 1.5 लाख के आसपास हमें शुद्ध लाभ मिलता है। धन्यवाद।

0: कृषि चर्चा में खरीफ में प्याज की खेती, इसी जानकारी दे रही थीं डॉक्टर दीपिका चंद्रवंशी। आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, आइए अब आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा में रात 10 बजे प्रसारित होगा कुमार मारदूर का गायन स्वर धरोहर। इस कार्यक्रम का समय होगा रात 8:15 पर। स्पोर्ट्स स्कैन आप सुनेगा रात 8:30 पर। इन कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 9 बजे खेल संसार में आप सुनेंगे भारतीय काइकिंग और केनिंग और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के सहसचिव श्री प्रशांत सिंह रघुवंशी से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे रमा शंकर। नियति चक्र, इस नाटक का समय होगा सुबह 10:30। लेखिका होंगी डॉक्टर इंदु प्रकाश किरण और निर्देशक होंगे श्री सुदर्शन कुमार। हमारा दैनिक प्रसारण नमस्कार रायपुर सुनेगा सुबह 7:05 पर। शाम 6:30 पर कानून की बात में सुनेगा स्थाई लोक अदालत यानी जनोपयोगी सेवा के प्रभावी संचालन और उनकी सुलह करने और निर्णय की भूमिका पर जानकारी देंगे जिला न्यायालय दुर्ग के अधिवक्ता श्री गौरव सतपथी। यह आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति होगी। शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी में प्रसारित होगी बस्तर जिले की चिट्ठी, आलेख संतोष वर्मा का होगा। बच्चों का कार्यक्रम किसलिए का समय होगा सुबह 8:30। इसमें बच्चों की डायरी में चर्चा होगी सदा सोचें दूसरों का भला। साथ ही प्रसारित होगी दीपान्विता राय बनर्जी की वार्ता समय प्रबंधन और होगा बच्चों के मुख से और बाल गीत। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया का प्रसारण होगा दोपहर 1:30 पर। इसमें आज की बात में चर्चा होगी कुछ ना कुछ लिखने की आदत पर। साथ ही होगी नूर पैकर की वार्ता बड़े बुजुर्गों का करे सम्मान। साथ ही होगा कुछ बातें कुछ गीत और दीदी की सलाह। इसमें फलों और सब्जियों की लाभकारी गुण के बारे में बताई जाएगी। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर हिंदी में आजकल का विषय होगा उम्मीद का दामन ना छोड़े। साथ ही होगा कार्यक्रम राग नंदिनी का अगला भाग, आलेख और संपादन बीरभान साहू का होगा। साथ ही होगा सवालों का आईने में और फिल्म संगीत। किसान भवन का कार्यक्रम चौपाल शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात में चर्चा होगी खरपतवार नाशी रसायनों का के उपयोग पर सावधानी। आज की सलाह में नए फल उद्यान की स्थापना के लिए नियोजन और प्रबंधन की जानकारी देंगे कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र गरियाबंद के फल विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कुंतल साटकर। श्रोताओं का फरमाइशी कार्यक्रम फोन इन फरमाइश का प्रसारण होगा सुबह 11:05 पर। प्रस्तुत करेंगी तारकेश्वरी आसुदानी। छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम बापन के गीत का समय होगा दोपहर 12:30। ये था प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट सुनेगा शाम 5 बजे। ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित करते हैं।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रोयंताम प्रवाचिका रिचा झा।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी न्यूजीलैण्डदेशस्य स्वीयाम् ऐतिहासिकीं द्विदिवसीय यात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगतचत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अनन्तरम् एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैण्ड यात्रा आसीत्, या उभयदेशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमन्त्री मोदी न्यूजीलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा, पर्यटन, क्रीडा, पदप्रबन्धन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पञ्च ज्ञापनपत्राणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैंड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैण्ड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: प्रधानमन्त्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारम्परिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढम्, आत्मनिर्भरं, भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनम् नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामन्त्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनम् भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवानिवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानकाधिनियमस्य 2006 इत्यस्य उल्लंघन सम्बद्धानां बहूनां उपभोक्तृ परिवादानां अनन्तरं स्विगी इंस्टामार्ट इत्यस्मै नव अधिसूचनाः प्रेषिताः। फीफा विश्व चषक प्रतिस्पर्धायाम् अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र मियामी क्रीडा प्रांगणे इंग्लैंड देशेन नॉर्वे देशं 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य उपांत्यचक्रे प्रविष्टम्। वियतनाम देशस्य प्रधानमंत्री ले मिन हुन इत्येषः फूक्वक द्वीपस्य समीपे जाता स्पीड बोट इत्येतस्याः दुर्घटनायाः अन्वेषणाय आदेशं प्रदत्तवान्। अस्याम् दुर्घटनायां 15 भारतीय पर्यटकाः निधनमुपगताः। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यापक अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। उधर गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपए की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों की निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकोक द्वीप के पास रट नगोआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका के कंसास में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अर्जेंटीना मुकाबले में 1-0 से आगे है। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उधर लंदन में कल रात विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक प्रसारण। नमस्कार रायपुर।

सुबह की बेला रात की कहानी कहती ही है, साथ ही नई आशा का संचार भी करती है, नई उम्मीद जगाती है नया काम करने के लिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ स्वीकारिए आज नमस्कार रायपुर में संजय पाठक का। आप सभी को नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन।

श्रोताओं, आज रविवार है, सप्ताह की शुरुआत है। आराम से बैठकर सप्ताह भर में करने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार करने का दिन है। परिवार के साथ छुट्टी कल के पलों को बिताने का दिन है। संभव है हमारे कई श्रोता आज के दिन के लिए अपना कार्यक्रम पहले से तैयार कर चुके हैं और कुछ देर बाद उसका क्रियान्वयन करने वाले हों। खैर, बरसात के दिन हैं, इस दौरान पूरे वातावरण में नमी का आलम है। प्रकृति भी हरे रंग का श्रृंगार करने को बेकरार है। इस दौरान थोड़ी सी सावधानी भी जरूरी है। और अभी सुबह की बेला है, सुबह की सैर की बेला है, दौड़ने की, कसरत करने की और टहलने के साथ की बेला है और साथ ही साथ चाय या कॉफ़ी की चुस्की लेने का भी समय है। इसके अलावा ये समय अपने इष्ट को याद करने का भी है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: श्रोताओ, समय की अपनी एक चाल है, इन आते जाते पलों में कुछ यादगार पल भी बन जाते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं। आज है 12 जुलाई, इसकी अपनी एक विशेषता है। आज है उम्मीदों का दिन, आशा का दिन, कुछ ऐसे सपने देखने का दिन जिसे आने वाले दिनों में साकार कर सकें। श्रोताओ, हमें इस अवसर पर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य यशोधरा की एक पंक्ति याद आ रही है और वो है, आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब टूटे। आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब टूटे, दिन मुख दम के पल्लव चमके, भावने नवरस लूटे। स्वामी के सद्भाव फैल कर फूल फूल में फूटे, उन्हें खोजने को ही मानो नूतन निर्झर छूटे, उन्हें खोजने को ही मानो नूतन निर्झर छूटे। हर साल 12 जुलाई को विश्व उम्मीद दिवस मनाया जाता है। आज के ही दिन संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन ने उसको आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों और समुदायों में सकारात्मकता को आगे बढ़ाना है और आशा को आगे बढ़ाना है, प्रेरणा को बढ़ावा देना है। कहा भी जाता है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और ये आशा हमें सतत आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

श्रोताओं, आज एक और विशेष दिन है। आज है विश्व पेपर बैग दिवस। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक बैग से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के बारे में जागरूक करना है, साथ ही पर्यावरण के अनुकूल और जैव अपघटनी कागज के बैग के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। प्लास्टिक को विघटित होने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, वहीं कागज के थैले आसानी से विघटित हो जाते हैं। इसे रिसाइकिल भी किया जा सकता है। वर्ष 1852 में फ्रांसिस वोले ने कागज के थैले बनाने वाली पहली मशीन का आविष्कार किया। फिर 1871 में मार्गरेट ई नाइट ने सपाट तले वाले थैले बनाने वाली मशीन बनाई। इससे इसका उपयोग करना अधिक सुविधाजनक हो गया। हम भी चाहें तो एक बार उपयोग में आने वाले पॉलीथीन के बैग के स्थान पर कागज के बने बैग का उपयोग कर न केवल इस दिन को सार्थक कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं। नहीं तो संभव है हमें भी कुछ इस तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करना पड़ेगा।

तो श्रोताओं चलिए आशा का दामन थामे हुए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षकों की वरिष्ठता और पात्रता को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू की है। सहायक शिक्षकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टैट से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। ये कवायद सहायक शिक्षक यानी स्नातक प्रशिक्षित संवर्ग के लिए की जा रही है। विशेष रूप से 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में जारी की गई अंतिम वरिष्ठता सूची में शामिल शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। इसमें TET उत्तीर्ण होने की संबंधी विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसके लिए 15 जुलाई तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र में आने वाले शिक्षकों का डाटा संकलित करके अनिवार्य रूप से संयुक्त संचालक कार्यालय रायपुर को भेजें। इस कदम का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की सेवा अभिलेखों को पूरी तरह से अपडेट करना है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की विसंगति से बचा जा सके। माना जा रहा है कि इस डाटा के संकलन के बाद शिक्षकों की पदोन्नति और वरिष्ठता सूची निर्धारित करने में तेजी आएगी।

श्रोताओं, 30 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी। सावन में शिव मंदिरों और तीर्थस्थलों की ओर कई लोग अक्सर जाते हैं, कई श्रद्धालुओं के पांव सुर बढ़ते हैं। कई लोग बाबा धाम जाते हैं तो कई लोग महादेव शाल स्थान की ओर जाते हैं। इसके अलावा ज्योतिर्लिंगों की ओर भी जाते हैं। तो ऐसे में यातायात के साधन जो होते हैं, बस और ट्रेन, इनमें यात्रियों की भीड़ लगने लगती है। इससे कंफर्म टिकट मिलने की संभावना भी कम हो जाती है। इसे देखते हुए महादेवशाल मंदिर में लगने वाले श्रावणी मेला को देखते हुए 4 जोड़ी गाड़ियों का अस्थायी ठहराव वहां दिया गया रहा है। ये सुविधा 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगी। इस दौरान यहां आरा से दुर्ग और दुर्ग से आरा जाने वाले दक्षिण बिहार एक्सप्रेस, पूरी योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस, टाटानगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस और टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस आते और जाते समय महादेवशाल स्टेशन में रुकेगी। इससे मेले में जाने वाले यात्रियों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ शासन ने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से हर साल डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार देता है। इस साल भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को होने वाले मुख्य समारोह में ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन मंगाए गए हैं। खेती में नवाचार, जैविक कृषि, उत्पादन में वृद्धि, कृषि यांत्रिकीकरण या जल संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कृषक इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी पात्र कृषक निर्धारित तिथि तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक अर्हताएं और इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषक संबंधित विकासखंड या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आवेदनों का सत्यापन संयुक्त संचालक कृषि से गठित विकासखंड स्तरीय छानबीन समिति करेगी। समिति के सदस्य कृषकों के प्रक्षेत्रों में जाकर आवेदन में उल्लेखित अधोसंरचना, कृषि आदान, सिंचाई संसाधन और अन्य जानकारी का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगे और अवलोकन का सत्यापन कर प्रतिवेदन को जिला स्तरीय समिति के सामने प्रस्तुत करेंगे। जांच के बाद जिला स्तरीय समिति 3 उत्कृष्ट कृषकों का चयन करेगी और इसके बाद उनका जो पुरस्कार है, उनकी जो रिपोर्ट है, वो संचालनालय को भेजा जाएगा। इस तरह ये प्रक्रिया पूरी होगी और जो सफल किसान होंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मो प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सब लग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: श्रोताओ, इन दिनों बारिश के दिन है और जल संरक्षण की बात अक्सर होती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों में बारिश की एक एक बूंदों को सहेजने के लिए अनोखा अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 18 जुलाई से वर्षा जल संचयन की मॉनिटरिंग शुरू होगी। 28 से 31 जुलाई तक स्कूल स्तर पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा और 15 अगस्त को इसके विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा। और जल संचय के आंकड़ों की घोषणा भी की जाएगी। इसके लिए कुछ अनिवार्य शर्तें भी हैं। किसी भी स्कूल में जल संचय का काम शुरू करने से पहले वहां लगे हैंडपंप या नल की जांच की जाएगी। खराब होने पर उसे ठीक कराया जाएगा। स्कूल का जल स्रोत ही बंद होगा तो जल संरक्षण का संदेश विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। 3 से 5 दिनों में इसका मॉडल बनाकर प्रस्तुत करना होगा। इसमें भवन की छत से पाइप के जरिए पानी को रेत, बजरी और चारकोल के फिल्टर से गुजार कर सीधे कुएं, बोरवेल या फिर रिचार्ज पिट में डाला जाएगा। इसका उद्देश्य बारिश के पानी को बचाने के लिए स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार करना है। 31 जुलाई तक स्कूलों में वर्षा जल संचय की संरचनाएं तैयार करने का लक्ष्य है। इस अभियान में छात्रों को वाटर हीरोज बनाया जा रहा है। वो न केवल डिजाइन में सहभागिता करेंगे बल्कि वे प्रतिदिन साइट डायरी भी लिखेंगे। प्रार्थना सभा की घंटी के समय छात्र वर्षा गेज और जल स्तर की निगरानी करेंगे ताकि ये उनकी आदत बन जाए। इस अभियान की रिपोर्ट 11 जुलाई को प्रस्तुत एक बार की जा चुकी है, मतलब उसे प्रसारण किया गया है और अब 18 जुलाई, 25 जुलाई और 1 अगस्त को विकासखंडवार प्रगति रिपोर्ट सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक की जाएगी। इस तरह पानी बचाने के लिए एक अनोखी पहल की जा रही है। पानी होगा तो चारों ओर खुशहाल लिखेगा, बागों में बहार आएगी।

0: दैनिक प्रसारण नमस्कार रायपुर, अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को हैं। समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन

0: तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी हैं, वैल्यूज भी हैं और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष

0: समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्र

0: नगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमरीका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमरीका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमरीका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
0: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा सम्पन्न। देश भर में आज व्यापक

0: पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beat Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations.
2: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
1: Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said Prime Minister Modi's three-country visit delivered significant outcomes, advancing cooperation across several sectors, including trade, technology, security, education, innovation, and people-to-people exchanges, among others. Vietnamese Prime Minister Le Minh Hun has ordered a probe into the speedboat tragedy near Phu Quoc Island that claimed the lives of 15 Indian tourists. According to a statement issued by Consulate General of Vietnam in Mumbai, Prime Minister Hun has asked authorities to identify shortcomings, determine

बच्चों जय हिंद। सभी नन्हे मुन्नों को अरुणा दीदी का ढेर सारा प्यार। भाई बच्चों, उमड़ घुमड़ करने वाले काले बादलों से घिरा आकाश, बादलों की गरज, बिजली की चमक और फिर सर सर करती बरखा रानी का आगमन। क्यों भाई, खूब मजा लिया ना आपने बारिश की बूंदों का? हालांकि बारिश अभी आंख मिचौली खेल रही है, कभी बारिश की बूंदों का आनंद तो उसी बीच धूप। लेकिन भाई, छई छपाक खेल कर तो, और कभी कागज की नाव बनाकर पानी में चलाकर, कभी रेन डांस करके, मजा तो आता ही है बच्चों, है ना? लेकिन सच बताना बच्चों, जब बाहर छई छपाक करते वक्त किसी के ऊपर खराब पानी की छींटे उड़ जाए, क्या तब भी अच्छा लगता है आपको? नहीं ना। आप नन्हे मुन्नों को तो हमेशा दूसरों के लिए भलाई का काम करना अच्छा लगता है भाई, ये बात हम जानते हैं बहुत अच्छे से। क्योंकि कक्षा में अगर टीचर अपनी पर्स भूलकर चली जाए तो बड़े तेजी से आप टीचर के पास जाकर कहते हैं ना, टीचर टीचर, आप अपना पर्स कक्षा में भूल गए थे, ये लीजिए। और जब घर में दादी माँ थक कर दर्द से कराती है, हे भगवान, तब आप फटाफट दादी के पैर दबाने लग जाते हैं, है ना? और दादी माँ से ढेरों दुआएं प्राप्त करते हैं। जब घर में मेहमान आते हैं तो आप ट्रे में पानी का गिलास भर कर ले जाते हैं, है ना? यानी कि नन्हे मुन्नो, आप वो फरिश्ते हैं जो हमेशा दूसरों के लिए भलाई का काम करते हैं और भला ही सोचते हैं। तो भाई, ऐसे ही अच्छे अच्छे काम हमेशा करते जाइए बच्चों, और अपने दोस्तों को प्रेरक कहानी कविता सुनाना, ये भी तो भलाई का ही काम है ना। तो आइए सुनते हैं ऐसी प्यारी प्यारी बातें बच्चों के मुख से। और आज इसमें प्रतिभागी है अभिज्ञा दीक्षिता पटेल, अवनी शर्मा, विथिका पटेल, रायमा चक्रवर्ती और तेजस पटेल। तो चलिए मिलवाते अपने दोस्तों से आपको।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: भाई देखिए बारिश का मौसम है लेकिन फिर भी यहाँ हमारे सारे नन्हे मुन्ने मित्र आ चुके हैं आपको कुछ न कुछ सुनाने।

0: के लिए और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तो सबसे पहले एक नन्नी मुन्नी हमारे सामने हैं, आप अपना नाम बताइए।
1: अभिज्ञा।
0: हाँ अभिज्ञा, आप कविता सुनाने जा रही हो ना, तो चलो सुनाओ कविता।

0: जात गो बच्चो अब मत सो, इतना सुंदर सा मैं मत खो।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी ताली है बजाया अभिज्ञा के लिए। अभिज्ञा, आप स्कूल जाती हो? कौन सी कक्षा में पढ़ती हो?
0: पीपी 2।
1: पीपी 2 में। और बारिश का मौसम आपको अच्छा लगता है?
0: हाँ।
1: क्या करती हो बारिश में?
0: पिज्जा खाती, पिज्जा पार्टी, यू।
1: अच्छा, चलिए चलिए, अब बारी है हमारे एक और नन्ही दोस्त की, है ना? आप अपना नाम बताइए।
0: मेरा नाम चांदनी भोसले है। ऊपर

0: हम तुम्हारे मामा नहीं। मामा गए दिल्ली, वहाँ से लाए बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा होंगे गंजा।
1: अब बारी है हमारी एक और नन्ही दोस्त की। आप अपना नाम बताइए।
2: दीक्षिता पटेल।
1: दीक्षिता, आप बताइए क्या सुनाने जा रही हो?
2: मैं कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कुएं का पानी।
1: कुएं का पानी, तो बच्चों आप ध्यान से सुनिए कहानी, ठीक है? दीक्षिता आपको कहानी सुनाने जा रही है, तो शुरू करिए अपनी कहानी।
2: एक बार एक आदमी ने अपना कुआं एक किसान को बेच दिया। अगले दिन जब किसान ने कुएं से पानी खींचना शुरू किया तो उस व्यक्ति ने किसान से पानी लेने के लिए मना किया। वह बोला, मैंने तुम्हें केवल कुआं बेचा है, ना कि कुएं का पानी। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने अकबर के दरबार में गुहार लगाई। उसने दरबार में सब कुछ बताया और अकबर से इंसाफ मांगा। अकबर ने यह समस्या बिरबल को हल करने के लिए दी। बिरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया जिसने किसान को कुआं बेचा था। बिरबल ने पूछा, तुम किसान को कुएं से पानी क्यों नहीं लेने देते? आखिर तुमने वह कुआं किसान को बेचा है। वह व्यक्ति बोला, मैंने किसान को कुआं बेचा है, ना कि कुएं का पानी। किसान का पानी पे कोई अधिकार नहीं। बिरबल मुस्कुराया और बोला, लेकिन देखो, क्योंकि तुमने वह कुआं किसान को बेच दिया है और तुम कहते हो कि पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें किसान के कुएं में पानी रखने का कोई अधिकार नहीं। अब या तो तुम अपना पानी किसान के कुएं से निकाल लो या फिर किसान को किराया दो। वह व्यक्ति समझ गया कि बिरबल के आगे उसकी दाल नहीं गलने वाली। वह मारा, हर समस्या का हल बुद्धिमानी से निकालना चाहिए। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए। और अकबर बीरबल के किस्से जो है हमने बहुत सुने हैं ना, उसी में से एक किस्सा बहुत अच्छा दीक्षिता ने सुनाया। और अब बारी अपने एक और नन्हे मुन्नी मित्र की है। आप अपना नाम बताइए।
3: अवनी शर्मा।
1: अवनी, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो?
3: टू।
1: अच्छा, दूसरी कक्षा में पढ़ती हो। और ये बताइए कि आज अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों को क्या सुनाने जा रही हो आप?
3: पोयम।
1: अच्छा, कविता सुना रही हो, है ना? तो सुनाइए कविता।
3: फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु

0: सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता। तालियां हो जाए भाई अवनी के लिए। और अवनी की कविता तो हो गई, और अब आपकी एक और मित्र की बारी है। आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम वितिका पटेल है।
1: अच्छा वितिका, आप बताइए कौन सी कक्षा में पढ़ती हो?
2: मैं छठवी कक्षा में पढ़ती हूँ।
1: अच्छा, और आज आप क्या सुनाने जा रही हैं?
2: मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक प्रायश्चित है, और इस कहानी के कवि का नाम श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं।
1: लेकिन कहानी के तो लेखक होते हैं, कवि नहीं होते है ना? तो कहानी के लेखक का नाम बताया आपने, है ना? तो चलिए सुनाइए अपनी कहानी।
2: घर भर में कबरी बिल्ली किसी से प्रेम करती थी तो वो थी रामू की बहू, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो वो थी कबरी बिल्ली। घर में कुछ भी खाने का सामान लाया जाए, कबरी बिल्ली के आंखों के सामने आते ही खाना खत्म। एक दिन रामू की बहू रामू के लिए खीर बनाई और बिल्ली ना खा सके वैसे ऊंचे स्थान पर रख दी। जब रामू की बहू कमरे में वापस लौटी तो देखी कि कटोरा नीचे गिरा हुआ है और खीर खत्म हो चुकी है। रामू की बहू को आता देख कबरी बिल्ली भाग गई। उस दिन रामू की बहू ने ठान लिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसने सोचा कि वो तो बिल्ली की हत्या करके रहेगी। अगले दिन रामू की बहू ने दरवाजे के चौखट पर दूध का कटोरा रख दिया। फिर उसके बाद जब बिल्ली उसे पीने आई तो उसका मौका हाथ में आ गया। जब वह वापस आई तो उसके हाथ में लकड़ी की चौकी थी। उसने देखा कि बिल्ली दूध पी रही है। उस समय रामू की बहू अपने पूरे बल से पाटा बिल्ली के ऊपर पटक दिया। बिल्ली ना ही कुछ बोली, ना ही हिली, ना ही डुली, एकदम से पलट गई। आवाज सुनकर घर के सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर महरी बोली, हाय राम, बिल्ली तो मर गई। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली का मरना और इंसान का मरना बराबर होता है। माँ जी बोली, जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतरे तब तक ना कोई खाएगा ना ही कोई पानी पिएगा। महरी दौड़ते दौड़ते पंडित परम सुख को बुलाकर लाई। पंडित परम सुख छोटे कद के मोटे आदमी थे, लंबाई 4 फुट 10 इंच, तोन का घेरा 58 इंच, चेहरा गोल मटोल, मूछे बड़ी बड़ी, रंग गोरा और छोटी कमर तक पहुंचती थी। पंडित परम सुख चौबे ध्यान लगाने के बाद बोले कि 21 तोले के सोने की बिल्ली बनवाने पड़ेगी। रामू की माँ बोली, अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। बातचीत करने के बाद बात 11 तोले सोने पर ठीक हुई। रामू की माँ बोली, अरे बाप रे, पंडित जी ने बोला यह प्रायश्चित है, कोई ऐसा वैसा काम थोड़ी ही है, और वैसे भी आप लोग भी ऐसे वैसे थोड़े ही हैं। उसी समय महरी हाफते हाफते आई और बोली कि माँ जी, बिल्ली तो भाग गई।
1: इनकी कहानी के लिए तालियां हो जाए जोर से बच्चों। और बचपन में हमने भी ये कहानी बहुत सुनी थी। और भाई ये बताइए बच्चों कि क्या जानवरों को मारना अच्छी बात है क्या?
2: नहीं
1: नहीं, नहीं मारना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर हमने जानवरों को तंग किया तो हमें प्रायश्चित करना पड़ता है ना? तो बहुत बढ़िया कहानी थी आपकी। और अब आप बताइए अपना नाम क्या है?
3: मेरा नाम रायमा चक्रवर्ती है।
1: रायमा, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो?
3: मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ।
1: रायमा, आप क्या बताने जा रहे हो अपने दोस्तों को?
3: आज मैं आप सभी को गणित के इतिहास के बारे में बताने वाली हूँ।
1: गणित का इतिहास? वाह भाई, बहुत अच्छा ये बात आप बता रहे हो, जानकारी है, ये तो महत्वपूर्ण चीज है। चलिए बताइए।
3: कहते हैं गणित हर जगह है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? आइए आज गणित के इतिहास की एक रोचक यात्रा पर चलते हैं। गणित का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। प्राचीन समय में जब लोगों ने गिनती करना शुरू किया तब वे पत्थरों, लकड़ियों और उंगलियों का उपयोग करते थे। धीरे धीरे संख्याओं को और गणना की विधि को विकास हुआ। गणित के विकास में भारत का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके बाद ब्रह्मगुप्त ने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं से जुड़े महत्वपूर्ण गणितीय नियम बताए। भास्कराचार्य ने बीजगणित और ज्यामिति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। आज गणित केवल एक विषय नहीं बल्कि विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, अंतरिक्ष अनुसंधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे AI आधुनिक तकनीकों की मजबूत नींव है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि गणित हमें केवल संख्या ही नहीं सिखाता बल्कि तर्क करना, सही निर्णय लेना और समस्याओं का समाधान ढूंढना भी सिखाता है। इसलिए गणित को कठिन नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण साथी समझना चाहिए। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी जानकारी, तालियां हो जाए भाई। और वाकई में बच्चों, गणित जो है हमारे देश में, हमारे भारत में ही शून्य का आविष्कार हुआ, बीज गणित, ज्यामिति, यानी हमारे भारत की ही देन है ना। दशमलव प्रणाली भी हमारे भारत में ही विकसित हुई, तो गणित से फिर डरना क्यों, है ना। तो गणित बहुत अच्छा है, उसे खेल की तरह खेलिए। और अब आपके एक और नन्हे दोस्त की बारी है, अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम है तेजस पटेल।
1: तेजस, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो?
4: KG 2B।
1: अच्छा, तो आज अपने दोस्तों को क्या सुनाने जा रहे हो आप?
4: पोयम,
1: कविता, है ना।
4: उजले कपड़े पहनकर मैं स्कूल जाऊंगा, सबका कहना मानूंगा, राजा बेटा कहलाऊंगा।
1: बहुत अच्छे, सबका कहना मानूंगा, राजा बेटा कहलाऊंगा। चलिए तालियां हो जाए बहन के लिए।

0: भाई बच्चों से मुलाकात तो हो गई, बहुत कुछ सुन लिया आपने और बहुत मज़ा आया होगा, है ना। और अब देखिए बच्चों, हमने अपने 30 मिनट के प्रोग्राम में से 9 मिनट का समय निकाला है, और ये 9 मिनट का समय निकाल कर ये बताने जा रहे कि समय का कैसे प्रबंधन करें। तो सुनिए वार्ता समय प्रबंधन, जानकारी दे रही है दीपान्विता राय बनर्जी।
1: प्यारे बच्चों को दीपान्विता की ओर से ढेर सारा प्यार। लंबी मस्ती भरे दिनों के बाद अब आपको फिर से स्कूल और पढ़ाई के बीच लौटना है ना। स्कूल और पढ़ाई, इसका क्या मतलब है आप जानते हैं? इसका मतलब है कामयाब होने के सपने को पूरा करने के लिए आपके पास है जादुई पिटारा। लेकिन एक बात बताऊं, ये जादुई पिटारा

ये कहानी है सुदेश की। 15 साल का सुदेश अभी 10वीं बोर्ड देने आया था। वो मेहनती था और पढ़ने में अच्छा भी, लेकिन था बड़ा आलसी। वह काम हो जाने के बाद अपना सामान सही स्थान पर उठाकर नहीं रखता था और जरूरत के वक्त अपना सामान ढूंढने में वक्त खराब कर देता था। सुबह जगते वक्त कितना ही अलार्म लगा के रखे या उसकी माँ उसे उठाने आए, वह बिस्तर में ही कुनमुनाया पड़ा रहता। फिर तो घंटा भर देर होना तय है। हर रोज स्कूल देर से पहुँचना और घर पर स्कूल से शिकायतें भी आना आम बात थी। सुदेश पढ़ने में अच्छा था और उसे पढ़ाई याद भी जल्दी हो जाती, लेकिन वह बेफिक्र था। वह परीक्षा के आखिरी वक्त तक बहुत सारी पढ़ाई छोड़े रखता कि बाद में कर लूँगा, अभी तो समय है, लेकिन आखिरी वक्त में उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होती। हड़बड़ी में उसे याद ना होता और महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाते, यानी जितने नंबर वह ला सकता था उससे बहुत कम लाता। 10वीं बोर्ड की परीक्षा अब उसके सर पर थी। बड़ों ने उसे समझाइश भी दी कि वह खुद को सुधारे, लेकिन उसने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। और परीक्षा के पहले दिन ही क्या हो गया उसके साथ सुनोगे? वह अपनी पुरानी आदत के चलते एक तो देर से उठा, छूटे हुए प्रश्नों के उत्तर थोड़ी देर याद करने की कोशिश की, लेकिन जल्दीबाजी में याद नहीं हुए। फिर उसे अपना पेंसिल बॉक्स ढूंढना पड़ा, क्योंकि वह सही जगह पर उसे नहीं रखा था। और जब वह सेंटर के लिए निकला देर हो चुकी थी। देर से परीक्षा सेंटर पहुंचने पर वहां शिक्षकों से डांट भी खाई और इस तरह कुछ वक्त और बेकार गए। फिर जब उसने प्रश्न पत्र देखा उसे कुछ अच्छी तरह याद ही नहीं आए। क्यों बोलो तो? क्योंकि देर हो जाने से उसे घबराहट हो गई थी। जैसे तैसे परीक्षा देकर निकला तो उसे महसूस हुआ कि अगर वह समय का ध्यान रखा होता तो बड़ी आसानी से उसे अच्छे नंबर आते, लेकिन अब तो मुश्किल से ही इस पेपर में पास होगा। सुदेश ने अब समय के सही उपयोग और प्रबंधन का महत्व समझ लिया था। बच्चों, आप कुछ भी काम करो उसमें समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि घड़ी की सुई यानी समय किसी के लिए कभी भी थमता नहीं। और यह समय निकल गया और आपने सही ढंग से उसका उपयोग नहीं किया तो बड़े होकर बहुत दुख होगा। समय के सही उपयोग की एक अच्छी बात क्या है जानते हो? आप पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और साथ में खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। नवाब यानी कि बहुत बड़ा और सुखी इंसान। तो बच्चों, आप मनपसंद कामों के लिए भी समय निकाल पाओगे और पढ़ाई भी पूरी कर लोगे, अगर समय का सही प्रबंधन कर लिया। बच्चों, आपने यह तो समझ लिया कि सिर्फ मेहनत करने से ही अच्छा इंसान और कामयाब नहीं बन सकते। आपको समय के सही हिसाब से मेहनत करनी होगी। और हाँ, बेकार की चीजों में समय बर्बाद करने से बचना होगा। तो चलो, समय का सही प्रबंधन कैसे करेंगे यह सीखते हैं। पहला तो यह कि आपको दिन रात मिलाकर 24 घंटे जो मिले हैं उन्हें आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे कि समझो आपके पास 24 रुपए हैं और कहीं दूर से आपको रात होने से पहले घर लौटना है, तो आप यह 24 रुपए सिर्फ इसी पर खर्च करोगे ना कि आप सही समय पर घर पहुंच जाओ। ठीक उसी तरह हमें जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए रोज के 24 घंटे दिए गए हैं, उन्हें आपको संभल कर खर्च करना है। दूसरी बात, जैसे घर में आपके माता पिता अपने खर्चे का हिसाब रखते हैं, वैसे ही आपको भी अपने खर्च होने वाले समय का हिसाब रखना है। इसके लिए आसान तरीका है कि आप एक डेली रूटीन चार्ट बना लो और उसे ध्यान में रखकर अपना सारा दिन का काम करो। सुबह उठकर स्कूल जाने से लेकर घर वापस आने तक दिन का एक हिस्सा बीत जाता है। दूसरा हिस्सा है आपके रात में सोने तक का। शाम 5 बजे से सोने तक के समय को खेलने, पढ़ने और अपनी कोई हॉबी के लिए बांट कर रखो। इससे पता चलेगा आपका कितना समय बर्बाद हुआ और कितना नहीं। अगर रूटीन बना लेते हो तो आपको घड़ी का ख्याल रहेगा और समय बर्बाद नहीं होंगे। तीसरी बात, अपना सामान उपयोग करने के बाद निश्चित जगह पर उसी समय रख दो, चाहे वह तुम्हारी किताब कॉपी हो या अन्य कोई भी वस्तु। इससे काम के वक्त चीजें ढूंढने में समय खराब नहीं होगा। चौथी बात, बाद के लिए कामों को यानी आपके टास्क को उठाकर नहीं रखो। बाद में करूंगा, कल करूंगी, यह आदत बच्चों में तनाव भर देती है। मान लो स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिला है, वह काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उसे करना ही पड़ेगा, तो आलस मत करो। जितने दिनों तक आप अपने कामों को आगे धकेलते जाओगे वह उतना ही आप पर भारी होता जाएगा। दूसरे काम भी जब पुराने टास्क के साथ जमा हो जाएंगे तो काम अधूरे रह जाएंगे। स्कूल

0: सजा मिलेगी सो अलग, आप भी तनाव से भर जाएंगे, फिर आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और बीमार पड़ोगे, आखिर में रिजल्ट बिगड़ेगा। इसलिए बच्चों, काम मिलते ही रूटीन बनाकर काम को पूरा करना शुरू कर दो। पांचवी कि अपने डेली रूटीन में स्वास्थ्यवर्धक खाना खाओ, ऐसा खाना जिससे अच्छी ऊर्जा मिले। जिन खाने में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की संतुलित मात्रा होती है उन्हें ज़्यादा खाओ और जंक फूड यानी कि बाहरी पैक किए खाने से बचो। अब पूछोगे समय के सही उपयोग में खाना कैसे आ गया? आया इसलिए बच्चों कि समय का सही इस्तेमाल कौन करेगा? हमारे प्यारे बच्चे, है ना? अगर आप बच्चे स्वस्थ खाओगे तो स्वस्थ रहोगे और तभी तो समय का सही प्रबंधन करते हुए आगे बढ़ोगे। एक बात और, खेलना और शारीरिक व्यायाम भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना लिखना। रोज शाम को घर के बाहर किसी मैदान में खेला करो या कोई व्यायाम वाली क्लास का हिस्सा बनो। इससे चुस्ती फुर्ती रहेगी, आलस भागेगा और आप अपने टास्क जल्दी खत्म कर पाओगे। आखिरी बात कि रात को रोज सही समय पर और जल्दी सो जाओ। भरपूर नींद तेज दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों, समय प्रबंधन तो आपने सीख लिया, अब देर किस बात की? आज से ही अपने आप को और भी अच्छा बच्चा बनाने में लग जाओगे, है ना? खुश रहना।
1: तो बच्चों, समय प्रबंधन, इस पर आपको जानकारी दे रही थी दीपान्विता राय बेनर्जी। और भाई, अगर एक गीत नहीं सुनाएंगे आप तो आप कहेंगे ना कि दीदी आपने गीत के लिए तो कोई समय नहीं रखा, और शिकायत भी करेंगे। तो ना ना बच्चों, शिकायत का हम मौका ही नहीं देंगे आपको। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

बच्चों कैसा लगा गाना? आप सब खूब थिरक रहे होंगे ना, और आपके साथ साथ भाई हम भी थिरक रहे थे बच्चों। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा पता जरूर लिखिएगा। आप कहेंगे पता तो नहीं मालूम है, तो नोट कीजिए जल्दी से नन्ही कलम से, किसलय कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर 492001। तो वादा कीजिए कि आप हमें पत्र जरूर जरूर लिखेंगे। और देखिए भाई घड़ी कर रही है इशारा, मन तो नहीं हो रहा है लेकिन हमें चलना होगा। तो फिर अब चलते हैं, सभी नन्हे मुन्नों को अरुणा दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम किसले, मीडियम वीवर एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं, आइए सुनते हैं खेल संसार। इसमें आइए सुनते हैं भारतीय कायकिंग और केनोइंग और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के सह सचिव श्री प्रशांत सिंह रघुवंशी से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है रमा शंकर।

0: श्रोताओ नमस्कार, खेल संसार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओ, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे प्रशांत सिंह रघुवंशी जी से, जो भारतीय कायकिंग और केनोइंग संघ में सह सचिव हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ में भी सह सचिव हैं। तो प्रशांत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो प्रशांत जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में रायपुर में कायाकिंग केनोइंग से संबंधित एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें जूनियर सब जूनियर लेवल की प्रतियोगिताएं हुई हैं। ये कब हुई और इनमें किन किन प्रदेशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, और साथ ही एक अस्मिता लीग के नाम से भी प्रतियोगिता कराई गई थी जिसमें आपकी मुख्य भूमिका थी। तो इन प्रतियोगिताओं के बारे में बताइए कि कब से कब तक सम्पन्न हुई, और साथ ही इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी थे उनका प्रभाव कैसा था।
1: मैं आपको बताना चाहूँगा कि अस्मिता लीग जो है, अस्मिता लीग की नॉर्थ जोन की जोनल लीग हमारे यहाँ आयोजित की गई थी, जिसकी तिथि थी 9 और 10 तारीख को ये आयोजित किया गया था। और इसमें लगभग 10 स्टेट के 10 राज्यों की महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें सीनियर जूनियर सब जूनियर तीनों कैटेगरी के टूर्नामेंट्स किए गए थे। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाना है, उसको देखते हुए ये केंद्र सरकार और साई के द्वारा आयोजित की जाने वाली लीग है, जो हर प्रदेश में सिटी लीग के द्वारा आयोजित की जाती है, फिर उसमें से जोनल लीग होती है, फिर नेशनल चैम्पियनशिप का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही कायकिंग एंड कैनोइंग की 36वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया गया था, जो कि जूनियर और सब जूनियर कैटेगरी में की गई थी। इसकी दिनांक थी 12, 13 और 14, 3 दिवसीय था, जिसमें भारत के लगभग 22 से 23 राज्यों के 700 से 800 खिलाड़ी एवं ऑफिशियल्स ने भाग लिया था
0: जी।
1: और दोनों ही चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक आयोजन यहाँ छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के सेंध लेक, जो कि नया रायपुर में है, अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास सेंध लेक है, वहाँ पर आयोजित किया गया था। और उक्त चैंपियनशिप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो कि जगदलपुर से निकले हुए खिलाड़ी, मतलब 11 साल की बालिका से लेके जो कि सब जूनियर में पार्टिसिपेट किया है, उसने भी मेडल पाया है। और हमारे अस्मिता लीग में 10 राज्यों के खिलाड़ियों के बीच में हम सेकंड पोजीशन पर रहे, जिसमें हमारे 18 मेडल हमारे खिलाड़ियों के द्वारा प्राप्त किए गए थे, जो कि रायपुर जगदलपुर और विभिन्न जिलों से आए बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए थे, वो महिला खिलाड़ी थे
0: जी।
1: इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे खिलाड़ियों के द्वारा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया। हमारे बच्चों के द्वारा 9 मेडल इसमें प्राप्त किए गए, जिसमें 3 गोल्ड थे, 4 ब्रॉन्ज थे और 2 सिल्वर।
0: प्रशांत जी, जो अस्मिता लीग है, इसके बारे में बताएं कि अस्मिता लीग का क्या महत्व है, क्योंकि कई खेलों में भी हमने देखा है कि अस्मिता लीग कराई जाती है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई है, उसका क्या महत्व है।
1: अस्मिता लीग का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह योजना और यह सोच हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाई गई है कि खिलाड़ियों को हर क्षेत्र में आगे लाना और विशेषतः महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कार्य किया जा सके वो करना है। तो इसलिए ये अस्मिता लीग लगभग सभी खेलों में की जाती है, और इसका आयोजन महिला वर्ग के लिए ही केवल है, जो कि महिला खिलाड़ियों के लिए की जाती है जूनियर सब जूनियर सीनियर कैटेगरी में। इनसे महिलाओं को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो रोल है वो ये हो रहा है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उसमें अपना पुरस्कार भी जीत रहे हैं, तो एक अच्छी सोच है। और इस तरह के आयोजन लगातार होने से हमारे महिला खिलाड़ियों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा ये
0: जी। जी, तो अभी जो हाल ही में आपने बताया कि कायकिंग केनोइंग की जो जूनियर और सब जूनियर प्रतियोगिताएं संपन्न हुई, और इसमें अस्मिता लीग भी इसी के साथ ही संपन्न हुआ है, तो आपने प्रदेश के किन किन खिलाड़ियों ने जो इसमें जो काफ़ी उत्कृष्ट अपना योगदान दिया है।
1: इसमें मैं वही बताना चाहूँगा कि लगभग हमारे खिलाड़ियों के द्वारा 9 पदक, जो पूर्व में भी मैंने बताया कि 9 पदक प्राप्त किए गए, और इसके लिए उनकी मेहनत की और उनका जो लगातार परिश्रम था वो बोलने के लायक नहीं है कि उन्होंने क्या मेहनत की है, बिना मेहनत के तो सफलता प्राप्त नहीं होती है। पर एसोसिएशन के द्वारा, छत्तीसगढ़ प्रदेश कायकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन के द्वारा भी उनको हर तरीके से सुविधा, हर तरीके से उनको सहयोग प्रदान करने का कोशिश किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पूर्व हमने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन बूढ़ा तालाब पर किया था। उस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में से लगभग जो खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे थे उन सभी का 30 दिवसीय कैंप हम लोगों ने बूढ़ा तालाब और सेंट लेक दोनों जगह आयोजित किया था और उसी का परिणाम है कि आज बच्चों का आप देख रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस आया कि नौ मेडल। और विशेषता मैं ये भी बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में, जितना मैं जानता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य के ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक दिलाने वाला खेल है कायाकिंग एंड कैनोइंग। चार साल में, पिछले चार साल में 40 मेडल दिलाना ये छोटा कार्य नहीं है। ये योगदान खिलाड़ियों की मेहनत अलग से दिखाता ही है कि आपको उनका परिश्रम, उनकी मेहनत कहाँ तक है।
0: जी जी जी प्रशांत जी, जैसे कि आपने बताया कि नया रायपुर के जो शहीद वीर नारायण स्टेडियम के पास सेंध लेक में ये कायाकिंग और कैनोइंग की प्रतियोगिताएं संपन्न कराई गई थी, तो इसमें किन किन जिलों से खिलाड़ी आए थे और उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं थी, और जो संघ में आप सह सचिव हैं, ओलंपिक संघ में भी सह सचिव हैं, तो इसके अंतर्गत खिलाड़ियों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ भी छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं?
1: छत्तीसगढ़ प्रदेश कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के द्वारा लगभग 26 से 30 लाख की बोट्स अभी परचेज की गई जिनका लाभ हमारे खिलाड़ियों को अभी मिला है
0: जी।
1: हमारे यहाँ कैटेगरी होती है K1, K2, K4, C1, C2 और C4। K1 कैटेगरी की 8 बोट, K2 की 8 बोट और K4 की 8 बोट। सेम कैटेगरी C1, C2, C4 में भी 8-8 बोट्स की सुविधा हमने बच्चों को दिलाई है। और ये पूरा जो अरेंजमेंट था हमारी एसोसिएशन के द्वारा, CSR और अन्य फंड के द्वारा किया गया, स्वतः किया गया है। और इसके अलावा, ये तो सुविधाओं वाली बात हो गई कि हम बच्चों को क्या सुविधाएं दे रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2012 से मेरे पास डेटा है कि बच्चे लगातार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाते हैं और रेगुलर भाग ले रहे हैं। तो जो वो लोग जाते हैं, मतलब आना जाना, रहना खाना, इवेंट फीस, जो भी वहाँ के खर्चे होते हैं, वो छत्तीसगढ़ प्रदेश कायाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए कोच NIS कोच को रखा गया है जो उनको बूढ़ा तालाब पर रेगुलर प्रैक्टिस करा रही है, जिसके लिए हम उनसे कोई भी चार्ज या कोई भी रुपया उनसे नहीं लेते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग है। तो ये पूरा अरेंजमेंट छत्तीसगढ़ प्रदेश कायकिंग कैनोइंग एसोसिएशन कर रही है। और उसी का मैं आपको छोटा सा एक डेटा बताना चाहूँगा कि वर्ष वाइज हमारे परफॉर्मेंस में आपको बताना चाहूँगा, 2012 में आयोजित हुई थी 22वीं राष्ट्रीय कैनो स्पिन चैंपियनशिप जो कि बेंगलोर में हुई, उसमें 1 मेडल आया था। 2013 में 23वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन मणिपुर में हुआ था, उसमें भी 1 मेडल था। 24वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप भोपाल में आयोजित हुई जो कि 2013-14 में हुई थी, इसमें 12 मेडल हमारे खिलाड़ियों के द्वारा प्राप्त किए गए थे। 35वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप केरला, जो कि नेशनल गेम्स की बात करूं, चैंपियनशिप नहीं है ये, 35वीं नेशनल गेम्स जो केरला में आयोजित हुआ था, इसमें हमारे 2 मेडल आए थे। 25वीं राष्ट्रीय कैनो स्पिन चैंपियनशिप जो कि उसके जस्ट बाद हमने रायपुर में 2015 में आयोजित की थी, इसमें 13 मेडल हमारे आए थे। 26वीं सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स चैंपियनशिप जो कि भोपाल में आयोजित की गई थी 2016 और 17 में, इसमें 14 मेडल आए थे। 27वीं सब जूनियर चैंपियनशिप जो आयोजित की गई थी, ये इंदौर में आयोजित हुई थी और इसमें हमारे बच्चों के द्वारा 13 मेडल प्राप्त किए गए थे। इसके अलावा लगातार हमारे बच्चों के परफॉर्मेंस में, मतलब जितना भी पढ़ना चाहूँ, लगातार परफॉर्मेंस है, ऐसा आप देख सकते हैं। मतलब 28वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप हो या नेशनल गेम्स हो
0: जी,
1: अगर नेशनल गेम्स में पूरे छत्तीसगढ़ के 10 पदक आते हैं तो उसमें से हमारे 1 या 2 पदक हमारे भी शामिल रहते हैं
0: जी।
1: तो ये परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है
0: जी जी जी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ी अब काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इसमें संघ की भी अपनी अलग ही भूमिका है। तो प्रशांत जी, आप छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ में भी सह सचिव हैं, तो ओलंपिक में छत्तीसगढ़ के लिए आप जो जिस तरह संघ से क्या कार्य किया जा रहे हैं और कौन कौन से खेल इसमें शामिल है?
1: छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अंतर्गत लगभग 30 खेल समावेश होते हैं, 30 खेल आते हैं, जिसमें हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कायकिंग, कैनोइंग, स्क्वाश, इस तरह से विभिन्न ओलंपिक विधाएं जो हैं उनको शामिल किया जाता है, ओलंपिक खेलों को इसमें शामिल किया जाता है। और रिसेंटली अभी 23 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आया था, उस दिन हमने 2036 वृक्षों का वृक्षारोपण नई राजधानी में कराया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी आमंत्रित हुए थे और डिप्टी सीएम खेल मंत्री जी भी थे, हमारे साथ में आए थे उस खेल में। केदार कश्यप जी भी उक्त कार्यक्रम में आए हुए थे, गुरु खुशवंत साहब थे, विक्रम सिसोदिया जी जो कि महासचिव हैं छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के, उन्हीं के संलग्न में उन्हीं के उसमें कहेंगे कि उन्हीं ने इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की थी और बहुत ही अच्छे से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था।
0: जी जी जी।
1: इसके अलावा मैं और चीज़ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की क्या कार्यशैली है या क्या वर्क रहता है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जब भी नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाता है, चाहे केरला हो, चाहे गोवा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे अभी रिसेंटली लास्ट में देहरादून में आयोजित किया गया था, ये जो आयोजन होता है, इस आयोजन के अंतर्गत जो भी टीम्स जाती हैं, जितनी भी टीम्स यहाँ से जाएंगी, वो सभी टीम्स छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के बैनर तले ही जाती हैं। शैवदा मिशन रखा जाता है, उन वो अपनी एक टीम बनाते हैं और उसके बाद उनका एक्रेडिटेशन प्रोसेस, उनका ट्रैवलिंग प्लान से लेके सारी चीज़ें वो प्लान करते हैं। इसके अलावा उनके कैंप्स लगाए जाते हैं, लगभग 21 दिन का कैंप लगाना, उनको किट देना, ये सब कार्य उसमें ओलंपिक संघ के अंतर्गत किया जाता है। अभी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच है और माननीय खेल मंत्री जी की भी सोच है कि शायद आने वाले समय में आपको नेशनल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में के रायपुर और विभिन्न और जिलों में भी देखने को मिलेगा।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है ये। तो प्रशांत जी, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी अब राष्ट्रीय खेलों के लिए बहुत अच्छा मंच बन चुका है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्टेडियम्स भी हैं और इसके लिए संघ भी काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं। तो हम जैसे कि कायकिंग केनोइंग के बारे में बात करें, जो प्रतियोगिता अभी हाल ही में सम्पन्न हुई थी, तो ये कायकिंग केनोइंग क्या होता है? इसमें लोग जो है कायकिंग केनोइंग के नाम से जानते हैं, चूँकि ये सिंपल सा एक नौकायन का खेल है, लेकिन लोग इसके नाम से थोड़ा अनभिज्ञ हैं। तो इसके बारे में पूरा बताएं कि कायकिंग केनोइंग का खेल क्या होता है, कैसे खेला जाता है, इसमें जीत हार कैसे होती है?
1: कायकिंग एंड केनोइंग दो अलग अलग बोट्स रहती हैं, पैडल्स अलग अलग रहते हैं। कायकिंग में दोनों साइड बोथ साइड पैडलिंग की जाती है, कैनोइंग में सिंगल साइड पैडलिंग की जाती है और अपने घुटने के बल बैठ के उसमें कैनोइंग की जाती है। दोनों सेपरेट गेम्स हैं लेकिन दोनों अंतर्गत आते हैं, कायकिंग एंड कैनोइंग खेल एक ही होता है, दोनों उसमें शामिल हैं। और इसमें जो डिस्टेंस रहता है 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर, इस तरह से डिस्टेंस में चैम्पियनशिप का आयोजन किया जाता है और उसमें 8 लाइन बनाई जाती हैं और 8 लाइन में 8 बोट से उनकी रेगुलर उनका जो चैम्पियनशिप का आयोजन उसी तरीके से किया जाता है उसमें। इसके अलावा इसमें कायकिंग कैनोइंग के अंतर्गत कितने खेल आते हैं, कायकिंग कैनोइंग के अंतर्गत स्प्रिंट, जिसकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन अभी हमने किया था यहाँ पर, इसके अलावा पैरा कैनो है, पैरा प्लेयर्स के लिए भी कायकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप थी। तो हर्ष का विषय है कि आज हमारे पास पैरा कैनो के लिए भी बोट है जो हमने परचेज की है और पैरा प्लेयर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको उसमें भी आपको मेडल देखने को मिलेंगे। कैनो पोलो होता है, ड्रैगन बोट चैंपियनशिप होती है, सलालम होता है, राफ्टिंग भी हमारे अंतर्गत आता है कायकिंग कैनोइंग के अंदर, बहुत सारी विधाएं हैं और लगभग ओलंपिक के 16 से ज्यादा मेडल्स इसमें शामिल रहते हैं।
0: और कार्यक्रम में चलते चलते प्रशांत जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे खिलाड़ियों, हमारे श्रोताओं को बताएं कि हमारा छत्तीसगढ़ अभी खेलों में काफी उभर रहा है और उसमें यदि कोई खेलों में भाग लेना चाहे, जैसे कायकिंग, केनोइंग और ओलंपिक के किसी भी खेलों में शामिल होना चाहे, तो उसके लिए कितने अच्छे अवसर अभी प्रदान किए जा सकते हैं?
1: आज की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में खेलों के लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना हुआ है और जितना मुझे समझ में आता है कि जो भी खिलाड़ी, पहले तो वो अपनी जो भी एथलीट है वो अपने बारे में थोड़ा सा स्टडी करे कि उनका फिजिक किस तरीके का, मतलब उनकी बॉडी उनको किस तरह से अलाउ करती है और वो किस गेम में जाके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उस हिसाब से उस खेल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद में आप संबंधित एसोसिएशन से आवेदन करके उसमें जुड़ सकते हैं और खेल सकते हैं।
0: जी जी जी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे प्रशांत सिंह रघुवंशी जी से, जो कि कायकिंग और कैनोइंग संघ में सहसचिव हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ में सहसचिव भी हैं। तो प्रशांत जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे श्रोताओं को खेलों से संबंधित जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप खेल संसार कार्यक्रम में सुन रहे थे। भारतीय काइकिंग और कैनोइंग और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ में सह सचिव श्री प्रशांत सिंह रघुवंशी से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे रमा शंकर। आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म आर पार से। आवाज गीता दत्त की है, बोल मजरू सुल्तानपुरी की, और संगीत ओपी नैयर का है।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
3: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आरती का ये गीत। रोशन का संगीत था और बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी के।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादे,
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
8: सुनिए।

डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: अभी आपने सुना फिल्म आशिक का गीत। मुकेश की आवाज़ थी, शैलेंद्र के बोल और संगीत शंकर जय किशन का था।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए सुनिए एक सूचना। श्रोताओं, आगामी मंगलवार 14 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं का के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित होंगे विशेषज्ञ मनीषा खापरडे, विषय वस्तु विशेषज्ञ मात्स्यिकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003-482-4003-483-4003-484। रायपुर का स्टडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 14 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। आइए अब सुनते हैं भरत व्यास की रचना। इसे संगीत से संवारा है सिंह त्रिपाठी ने। आवाज़ मुकेश की है और फिल्म है रानी रूपमती।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी आंचलिक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार हैं सुखियारी नवानीपुरी और साथी। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले इनकी आवाज़ में सुनते हैं बरखा गीत।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह

0: गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के रायपुर सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। कलाकार हैं सुखहरिण वानिकपुरी। आइए अब इनकी आवाज में सुनते हैं बरखा गीत।

0: छत्तीसगढ़ी आंचलिक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थी सुख्यानिन मानिकपुरी और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। रायपुर में कल से शुरू हुई 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग मीट। और जशपुर जिले के तपकरा क्षेत्र में हाईवे और कार के बीच हुई भिड़ंत में 2 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल 13 जुलाई से शुरू होगा। 17 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। इस बीच मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की अध्यक्षता में आज रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देशभर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे और जनभागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में परिवर्तित करने का आह्वान करेंगे। इस कार्यक्रम में देश के लगभग सभी राज्यों से ऐसे वृक्ष मित्र पहुंचेंगे जिन्होंने वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। केंद्रीय मंत्री वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी आज रायपुर में मानसून के दौरान प्रमुख औद्योगिक इकाइयों द्वारा संचालित और प्रस्तावित वृक्षारोपण गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रमों की प्रगति, उनके क्रियान्वयन, पौधों के संरक्षण और रखरखाव के साथ ही निगरानी व्यवस्था तथा उद्योगवार एक्शन प्लान की समीक्षा की जाएगी। राजधानी रायपुर के माना कैंप स्थित शूटिंग रेंज में कल 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग मीट का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर के निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में विंग कमांडर विवेक कुमार साहू शामिल हुए। इस राज्य शूटिंग मीट में पुरुष और महिला वर्ग के साथ अलग अलग आयु समूहों में मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। जशपुर में तपकरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा कुनकुरी मार्ग में लवाकेरा के पास शनिवार को एक तेज रफ्तार हाईवा और कार के बीच आमने सामने से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा का एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से अगले 4 दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने 13 जुलाई से पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना जताई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए रायपुर जिले में 22 केंद्र बनाए गए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में भिलाई नगर के बीच स्थित खुर्सीपार रेलवे संपार फाटक पर मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके चलते 14 जुलाई की सुबह 8 बजे से 24 जुलाई की रात 8 बजे तक इस फाटक पर सड़क यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। राज्य शासन ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग में 122 अधिकारियों कर्मचारियों की नई पदस्थापना की है। इनमें 66 अभियंता और 56 विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। रायपुर में कल से शुरू हुई 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग मीट। और जशपुर जिले के तपकरा क्षेत्र में हाईवा और कार के बीच हुई भिड़ंत में 2 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

दस बजे हैं, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सूरवीर से। आवाज़ें मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की, बोल SH बिहारी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अभी आपने सुना बप्पी लहरी के संगीत से सजी फिल्म पाप की दुनिया का ये गीत। बोल अनजान के थे और आवाज़ें थी लता मंगेशकर और

कबीर कुमार की। आइए अब सुनते हैं फिल्म बाजी का गीत। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, आवाज़ें एक बार फिर लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की है।

अभी आपने सुना फिल्म बाजी का ये गीत। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। एक बार फिर लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में सुनते हैं आनंद बख्शी की रचना। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है वो सात दिन।

आइए अब सुनते हैं फिल्म प्यार किया है प्यार करेंगे का ये गीत। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और शब्बीर कुमार की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और बोल हैं SH बिहारी के।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है नाटक नीति चक्र। लेखिका हैं डॉक्टर इंदु प्रकाश किरण और निर्देशक हैं श्री सुदर्शन कुमार।

0: आवो आवो, अंदर चली आवो।
1: जैसन हम तुमरे लिए काटत रही, चलो चलो भागो महतारी।
0: देखो जिसका हक है उसे ही को खाने दो।
1: देखो देखो दादा, हम मुंशी उंशी नहीं है। देखो हम हैं गारड साहब।
2: बबुआ
1: का
2: फिर गलती हो गई गारड साहब।
0: अरे गलती काहे हो गई? बुजुर्ग लोग मंत्री लोगन को भी बेटा ही बोल देवत है।
2: गारड साहब हमार बिटवा माखनपुर थाने में छोटा दरोगा है। पता नहीं बड़े दरोगा से कौन टसन रही, वे किसी केस में हमार बिटवा को फसाए दी ना।
3: 6 महीना हो गए गारड साहब, नौकरी गई, महतारी बीमार रहे हैं, छोटे छोटे लड़की बच्चा है।
1: हैं तो आज तलक कहाँ सोवत रहे?
3: सोए ना ही रहे गारड साहब, बहुत अर्जी वर्जी चलाए, कप्तान साहब को भी दरखास्त भेजे हैं।
2: अभी तक कछु नहीं भबा। गारड साहब हम सुने हैं कि कप्तान साहब बहुत ही भले आदमी हैं, न्याय विचार कर रहे हैं।
3: तभी तो हिम्मत बांध के आ गए गारड साहब, अब आप ही के सहारे हैं।
1: देखो देखो देखो भैया, ये काम कोई हमरे हाथन का तो है नहीं, ये तो कप्तान साहब के हाथन का ही है। लेकिन भैया साहब तो अभी स्नान वस्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, नाश्ता करेंगे, तैयार होंगे और बज जाएगा भैया 9:30। देखो तब तलक रुकना हो तो बैठ जाओ। जी मैम साहब,
4: घास काटनी हो तो जल्दी से साहब की वर्दी प्रेस कर दो, बिजली का कोई भरोसा नहीं कब चली जाए।
1: आया आया मैम साहब।
5: लक्ष्मण
1: जी स्टैनो बाबू,
5: साहब की टेबल पर ये फाइल रख देना, बहुत जरूरी है, उन्होंने मंगाया है।
1: अच्छा साहब, ऑफिस घर ऑफिस घर, बहुत बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है हम पर, समझो भैया। बड़े बाबू के बाद फिर ये कारण साहब भी हैं, बस
3: इसीलिए तो हम अपने फरियाद आप ही से किए हैं।
4: हाँ।
1: अजीब आया आया मैम साहब।

0: लक्ष्मण
1: जी,
0: ये उनकी रच्ची है ना, इसको हाँ ऐसे पकड़ के अब गोले बना। क्यों रे लक्ष्मण, तेरी घरवाली स्वेटर वेटर बुन लेती है कि नहीं?
1: वो का स्वेटर बुनेगी मेम साहब, धोती तलक तो सलीके से बांध ना सकते है।
0: तू जानता है धोती सलीके से कैसे बांधी जाती है?
1: हाँ, जैसी आप बांधत हैं।
0: अच्छा तो तू सिखा दिया कर उसे ऐसे धोती बांधना।
1: अब क्या करेंगे सिखा के मेम साहब।
0: अरे तेरी घरवाली सुंदर लगेगी और क्या।
1: हमका तो वो वैसे ही सुंदर लगा था।
0: सिर्फ सूरत से ही सुंदर है या सीरत से भी सुंदर है तेरी घरवाली?
1: मैम साहब उसे कि सीरत नहीं तो हमारी जिंदगानी बनाए है। तीन बच्चा है, बूढ़ी महतारी है, 5 बीघा खेत है हमारा, सब है। कौन संभालत है?
0: कौन संभालता है?
1: वही तो संभालत है। जाड़ा गर्मी बरसात सब कुछ खुशी खुशी एक जोड़ा धोती में काट लेवत है। तभी तो हमका सबसे सुंदर वही दिखाई पड़त है मेम साहब।
0: अच्छा, तब तो तेरा मन हमेशा घर में ही लगा रहता होगा है?
1: जी मेम साहब, वो मन तो हर वक्त काम में लगाना ही पड़त है।
0: नहीं नहीं ठीक नहीं कर रहा इसको।
1: जी जी हाँ,
0: ध्यान से।
1: और मेम साहब, जब गांव में खेती का वक्त आवत है तो फिर हमारा मन घर को ही भागत है। अपनी अखियन में बार बार दुनिया ही दिखाई पड़त है।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, ये ऊन के गोले बना फटाफट से।
1: जी जी जी मेम साहब।
0: नहीं जल्दी खत्म कर, देख साहब आते ही होंगे, आज हमें पार्टी में जाना है।
1: जी,
0: लेकिन उससे पहले हम शॉपिंग को जाएंगे कोई यही 4 बजे के करीब। अरे देख तो शायद साहब आ गए।
2: जी जी मेम साहब, साहब आ गए।
0: आ गए, पार्टी में जाना है ना?
2: ऑफ कोर्स, तभी तो आ गया हूँ जल्दी।
0: खाना लगवाऊं?
2: नहीं नहीं, खाना नहीं खाऊंगा, बस 2 घंटे सोना चाहता हूँ।
0: लगता है आजकल काम का बोझ कुछ ज्यादा ही आ गया है।
2: हाँ भाई, काम नहीं होता तो भी तो काम नहीं चलता।
0: पर आपका काम तो तभी बढ़ता है ना जब चोरी लूट हत्या गबन दंगे ये सब होते हैं।
2: हाँ भाई, अब नौकरी ही इनसे निपटने की है, इसी की पगार मिलती है मेम साहब, तो इनसे तो निपटना ही है। अब देखो ये सब होता है तभी तो एक सिपाही का और एक अधिकारी का कैलिबर पता चलता है।
0: हाँ सो तो है। अच्छा चलिए अब आप आराम कीजिए।
2: oh, sure.
0: नहीं तो इन्हीं बातों में 2 घंटे बीत जाएंगे।
2: ओके ओके।
0: लक्ष्मण
3: जी आया मैम साहब।
2: लक्ष्मण
4: जी, बाबूजी
2: डेली हाजिरी नहीं भरते हो क्या?
4: बाबूजी वो
2: पिछले 2 दिन से तुमने दस्तखत नहीं किए। देखो कागज पर काम पूरा होना चाहिए, तनख्वाह कटेगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ
1: साहब, बात ये है का सुबेरे घर के काम बड़े टाइम से करने होवत
2: है,
1: नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जावत है।
2: बिल्कुल हाँ।
1: उसमें दस्तखत करने का ध्यान ही नहीं रहत। लेकिन लेकिन साहब अब ऐसी गलती ना ही करेंगे, सबसे पहला दस्तखत ही करेंगे।
2: और कहीं अगले दिन की हाजिरी भी पहले ही दिन ना भर देना जोश में आकर, समझे?
3: अब अर्दली बाबू जरा बंगले के सटाप का हाजिरी रजिस्टर तो दियो।
5: का है?
3: साहब मंगावत रहीन।
5: साही?
3: हाँ।
5: तातारी धुनना में लग गयो।
3: चले। ले आओ ले आओ ले आओ। हाँ। होम गार्ड लक्ष्मण दास स्टाफ मेंबर SP जयंत सिंह का बंगला। हाँ।
5: अब यहाँ काहे बैठ गए?
3: अरे देखो दस्तखत करना था।
5: का मतलब?
3: साहब कहत रहीन।
5: कहा कहत रहीन?
3: हाजिरी रजिस्टर में दस्तखत कर दियो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। हाँ
5: अच्छा, तो साहिब का नाम लेके हमसे रजिस्टर मंगवाए? तुम हमसे बदतमीजी किए हो? हम साहब से कहेंगे जरूर।
3: अरे बाबा
6: लक्ष्मण जरा आज का अखबार तो दो।
3: भैया क्या बात हो गई, साहब क्यों लौट आए इतनी जल्दी?
6: गार्ड साहब, आप रोजाना अखबार नहीं पढ़ते क्या?
3: अरे भैया, गार्ड साहब को अखबार पढ़ने का फुर्सत है का?
6: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, एक बड़ा जटिल केस हो गया है।
3: ओ।
6: आज से 2 महीना पहले तुमने अनीता हत्याकांड के बारे में पढ़ा होगा? अब नहीं नहीं सुना होगा।
3: हाँ हाँ, बहुत दिनों तक पढ़त रहा। नहीं नहीं सुना सुना रहा।
6: उसमें किसी विनीत कुमार को हिरासत में लिया गया था, सबूतों के अभाव में फिर उसे छोड़ दिया गया। केस अंडर स्टडी चल रहा था। अंडर स्टडी चल रहा था।
3: हाँ,
6: उधर अनीता के भाई देवेंद्र ने अनीता के पति पर हत्या का इल्जाम लगाया है, वो फरार हो गया है। देवेंद्र ने पुलिस पर कोताही का आरोप लगाते हुए आईजी साहब के दफ्तर में शिकायती पत्र दाखिल किया है। उससे हड़कंप मच गया, हड़कंप। हाँ, साहब को तुरंत तार भेजा है कि केस की जल्दी से जल्दी छानबीन की जाए और अनीता के पति को गिरफ्तार किया जाए।
7: ये बताओ भैया, उसके मर्द ने उसकी हत्या काहे की?
6: ये आप पता लगाइए गार्ड साहब। हाँ, आप
7: पता लगा मैं।
2: So you come, Inspector.
8: Sir.
2: Bedi.
8: Yes, sir. Thank you.
2: So what's the report?
8: Sir, अनीता का पति शैलेंद्र सुबह 5 बजे रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया है।
2: Really? That's great.
8: सर, मैंने इसे फोन पर बताना ठीक नहीं समझा। अभी हमने डिक्लेयर नहीं किया है, बाकी आप जैसा निर्देश दें वैसा किया जाए।
2: मुझसे कुछ पूछताछ की?
8: उसने बिना पूछे ही बहुत कुछ बता दिया सर, और हत्या का जुर्म भी स्वयं कबूल किया है। वो कुछ नॉर्मल सा नहीं था सर, थाने पहुंचते ही बस बिलक बिलक कर रोने लगा।
2: नाटक तो नहीं था?
8: नहीं सर, उसकी बात में सच्चाई झलक रही थी।
2: क्या बताया उसने?
8: उसने बताया सर, उसकी पत्नी अनीता के उसके पड़ोसी विनीत कुमार से अवैध संबंध थे। पिछले 2 वर्षों से शैलेंद्र इसे बर्दाश्त करता रहा और कई बार उसने पत्नी को मना भी किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर शैलेंद्र ने तलाक लेने को भी कहा लेकिन वो उस पर राजी नहीं हुई। एक दिन शैलेंद्र बाहर गया हुआ था, वो रात को जब 11 बजे लौटा तो उसने अपने घर में अपने ही बेडरूम में अपनी पत्नी को उसी पड़ोसी के साथ पाया। विनीत कुमार चला गया, शैलेंद्र की स्थिति बहुत असामान्य सी हो गई। जैसा कि उसने बताया सर, उसे अचानक कोई दौरा पड़ा और उसने हाथ में चादर लेकर अनीता का गला घोंट दिया और खुद बाहर चला गया और उस रात लौटा ही नहीं। अगले दिन वो तब लौटा जब पुलिस उसके घर पहले ही पहुंच चुकी थी। विनीत कुमार को इसलिए हिरासत में लिया गया था सर कि रात में पान की दुकान पर खड़े 2-3 लोगों ने उसे अनीता के घर से निकलते हुए देखा था।
2: आप ऐसा कीजिए, इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दीजिए।
8: राइट सर।
2: और आप चलिए मेरे ऑफिस पहुंचिए, मैं वहां जल्दी पहुंच रहा हूं।
8: यस सर। जय हिंद सर।
2: जय।
9: मेम साहब, पानी।
0: हाँ, रख दो।
9: मेम साहब,
0: कुछ कहना है क्या?
9: वो मेम साहब, आपको तो पता हुई
0: क्या?
9: अनीता के मर्द ने उसकी हत्या काहे की?
0: हाँ मालूम है।
9: काहे की?
0: उल्टा थी, पड़ोसी के साथ 2 साल तक तो उसका पति बर्दाश्त करता रहा पर जब पति हो गई तो मार डाला।
9: पहले ही दिन मार देना चाहिए था, 2 साल तक काहे रुकत रहा?
0: लक्ष्मण, पुलिस का आदमी होकर तू कानून के खिलाफ बात करता है?
9: अब आदमी तो आदमी होते मेन साहब, अब दिल पर केकर बस है।
0: जो दिल को बस में कर लेना वही असली इंसान है।
9: हाँ, बात तो आपकी सौलाह ने सही है मेम साहब, लेकिन इन शहर की औरतों के रंग ढंग ऐसा है मेम साहब कि आदमी को पागल कर देवत है।
0: लक्ष्मण।
9: अरे मेम साहब, इससे तो हमरे गांव की औरतें भली हैं, गवार हैं, बेसऊर हैं, लेकिन अपना मर्द, अपना बाल बच्चा, अपना परिवार ही उनकी जिंदगानी होवत है। ये अब हमरी दुनिया को ही देखो, मेम साहब 5 बरस हो गए हमका गांव छोड़े, लेकिन वो तो अपने बच्चन में ही डूब गई है।
0: तू बहुत नसीब वाला है लक्ष्मण, लेकिन देख, अच्छे बुरे लोग तो सब जगह होते हैं, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, देश हो, चाहे विदेश हो, अच्छे बुरे लोग सब जगह मिल जाते हैं।
9: जी मेम साहब, मेम साहब, वो धान का बखत हुआ गया
0: तो
9: हम गांव जाना चाहते हैं, पैसा पास में कौड़ी नहीं, कुछ रुपए आप दे देती तो काम बन जाता, अगली तनख्वाह में चुकवा देंगे हम।
0: ये धान का समय अचानक हो गया या तुझे दुनिया की याद सता रही है?
9: बात तो सही है मेम साहब, जब खेती का काम होवत है तभी हमका दुनिया की याद आवत है।
0: अच्छा अच्छा, देख रुपया तो मैं दे दूंगी तुझे, लेकिन छुट्टी तो तेरे साहब ही देंगे ना।
2: अरे मेन साहब, साहब को तो हम आज ही मना लेंगे, वो मना ना ही करेंगे।
0: अच्छा कितने रुपए चाहिए तुझे?
2: आप ही समझ लीजिए, इतने दिन बाद घर जा रहे हैं।
0: बात चालाकी से बता रहा है कि ज्यादा रुपए चाहिए।
2: मेम साहब, हमका अपना दिमाग बहुत तेज रखना पड़ा था। होम गार्ड है मतबल घर के रक्षक, यहाँ के भी और वहाँ के भी।

0: भौजी पाए लागी।
1: जीते रहो जीते रहो। कैसे हो लक्ष्मण भैया?
0: अच्छे हैं भौजी।
1: हाय तुमरी उर्मिला तो तुमरे ब्रहमा सूखे कांटा हुई गई है। है तुम बेदर्दी अब आए हो?
0: भौजी तुम तो जानो तो हमरी नौकरी कितनी सख्त है, छुट्टी बहुत कम मिलत है।
1: ए भैया छुट्टी ना ही मिलते तू है बसो, अरे खेत वेत कहूँ बटाई माँ दे दे और अपनी उर्मिला को हुए ले जाओ। बिरहा की नदिया जोर मारे है, कहूँ तुमरा घर बार खेत सब बहा ले जाएंगे। हाँ
0: इका कह गई पहुंची।
2: अरे भैया लक्ष्मण बहुत देर कर दिए हो, कितने दिन की छुट्टी आए हो?
0: दद्दू हुआ बड़ा काम रहा, बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलत है।
2: अरे बेकार है छुट्टी किए हो फिर, अरे हियाँ तो सब काम तुमरे घर में चल ही रहा है।
0: कैसन?
2: अरे तुमरे घर में ट्रैक्टर खड़ा है, तुमने दुल्हनिया के मायके से कोनो हरिद्वारी आया है वही का ट्रैक्टर है तुमरा साला, ई सब इंतजाम कराई से। हरिद्वारी आजकल हियाँ ही रहते भाई, अकेली औरत नान नान बच्चा बुढ़िया माँ पता नहीं रात बिरात कौन काम पर जाए।
0: तो ये बात है।
3: ए दुनिया अरे क्या बात है, आजकल बच्चन का बहुत जल्दी सुलाई दे तो
4: क्यों का चाह तो जागे रहे।
3: अरे लो हम ही काहे जाएंगे भला। अरे अरे अरे अरे अरे धीरे धीरे पंखा चलो महारानी, अरे हम उड़ी जाएंगे।
4: अच्छा तुम का उड़ी हो, तुम तो हम का उड़ाए चुके हो।
3: अरे लो
4: हमरे तो जैसे पंख उग गया है।
3: तो चलो ना कहीं अंते उड़ी चले दोनों।
4: अरे काहे इतना बढ़िया घोंसला ही अंते काहे उड़ी चली।
3: ये घोंसला के मालिक आ जाए ना तब तो हमको बाहर धकेर दोगे।
4: वो कितने दिन रही, काम तो सब खत्म है समझो, 3-4 दिन रह के खुदे उड़ी जाई वीरान देश दाना बटोरे खाते।
5: दुनिया ये तू का कुल खिलाई हो कुल अच्छी।
6: अरे बिना जाने बूझे तुम का कर दियो।
5: खामोश रहे बच्चात, सारा गांव तुम्हारे चरित्र का मत रहे।
6: गांव वालों की बात में ना आओ, ये गांव वाले जते हैं हमरे घर की सुख शांति, खेती बारी का ठाट गांव वालों की आंखन की किरकिरी हो गया है।
5: और कहानी बनाओ, और कहानी बनाओ, हम तुम्हारी सारी बातें सुन चुका था।
6: बात का बटंगड़ ना बनाओ, का जाइयो ना ही 3-4 दिन माँ, हम इतना मनवती हैं याक दिन और रुक जाओ, हमसे तो जैसे पीछा छुड़ाकर भागे तो। और वहाँ लखनऊ माँ शहरवारिन के साथ कुल छर्रा उड़ा तो
5: क्या बोली हो?
6: हम यहाँ घुट घुट कर जिये थे। आए ओ भैया हमरा दया करके ही हरिद्वारी को भेजे रहा। आए आए बेचारा इसे काम किया जैसे उसके घर का काम होए। अरे हम कहे नहीं रहे, यह तो कहे रहे कि ओके एहसान से ने हम उड़ी रही हैं, हमरे पाखी उगाए हैं, तो हम कोई गलत थोड़ी ना कहे हैं, तुमका तो खुश होना चाहिए, उल्टा तुम उस बेचारे का बिना जाने बूझे गांव वाले

0: हमको रुबाब लाएगी जी।
1: राम जी क्या कर दे, उस समय हम पागला है गए, तो हर हाथ जला दिया। आपका आपको माफ कर दो दुनिया, हम तुम पर बेकार सकी है। गांव वालों की बात सुना के हम पगलाए गए रहे, हर बात का उल्टा मतबल निकालने लगे, और हम तुम्हारा हाथ चला दिए। ये हाथल से तुम खेतर में फावड़ा चला धोई हो, ये हाथल से तुम हमरे लड़कन के लिए रोटी पकाती हुई हो, ये हाथल से तुम धान रोपत हुई हो, काटत हुई हो, और ये हाथल खाम जलाए दिए। आपका आपका माफ कर दो दुनिया,
0: का कर दो, माफी मांग के हमरे माथे पाप ना चढ़ाओ जी। तुम हमरे पति हो, पति परमेश्वर होते हैं, फिर तुम जौन कियो गलत फहमी माँ कियो, हमका कौनो दुख नहीं है, हमका खुशी है, तुम हमका कितना चाहत हो।
1: देखो दुनिया, कल सुबह नखलाऊ चलो, हम हाथ का इलाज कराएंगे।
0: नहीं नहीं,
1: नहीं हाथ ठीक ना हुई।
0: नहीं नहीं, ठीक हो जाए, फिर हुआ पता नहीं कब तक रुकेगे परी।
1: तो का हुआ, थोड़ा दिन शहर में रह लियो।
0: और बच्चा,
1: अरे बच्चन का भी साथ ही ले चलो, साथ ही ले चलो, हमारी बात मान लियो दुनिया, मान लियो।
0: ठीक है।
2: सिंह
3: जी, मैम साहब,
2: तुम्हारी ड्यूटी आजकल ऑफिस में लगी है क्या?
3: जी,
2: ऑफिस में बहुत काम है आजकल।
3: जी वो
2: तुम्हारे साहब आजकल उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं?
3: हम कुछ बता नहीं सकते मैम साहब। हाँ, आज से दो दिन पहले साहब के नाम कोई कुरियर चिट्ठी लाया था।
2: चिट्ठी?
3: मैंने ही रिसीव की थी। चिट्ठी पर भेजने वाले का नाम पता नहीं था। साहब उसे देखते ही चौंके, फौरन भीतर गए। थोड़ी देर में उन्होंने हमसे एक डिब्बे सिगरेट मंगवाई।
2: सिगरेट? पर सिगरेट तो वो पीते नहीं।
3: लेकिन उस दिन मेम साहब उन्होंने बहुत सिगरेट पी, उस दिन से साहब उखड़े उखड़े से हैं।
2: कोई चिट्ठी मिलने से उखड़ा है, कोई चिट्ठी ना मिलने से।

0: ढूंढो उस चिट्ठी को। चिट्ठी मिल जाती तो पता लग जाता जयंत की बेरुखी का कारण। चिट्ठी ने तो
1: केवल मेरे ही जयंत, ये मेरा आखिरी पत्र है तुम्हारे नाम। 15 वर्ष हो गए, इन आंखों ने तुम्हें देखा नहीं, लेकिन ये मन तुम्हारी ही बाहों में झूलता रहा। ओह माय गॉड, इसका सबूत है पिछले 15 वर्षों से तुम्हारे हर जन्मदिन पर भेजे गए मेरे वो 15 पत्र, जो तुम्हारे मेरे प्यार की एक छोटी सी निशानी है। मेरे जयंत, आत्मा से किसी और को समर्पित पत्नी का जिस्मानी समर्पण कब तक किसी पति को धोखे में रख सकता है? मेरे पति ने इसे आज से 10 साल पहले ताड़ लिया था और मैं अगले 8 साल तक प्रताड़ित होती रही। अब 2 साल पहले से तलाकशुदा जिंदगी जी रही हूं। जयंत, इस जिंदगी से नफरत हो गई है। ये शरीर अब अपना नहीं लगता क्योंकि आत्मा तुम्हारी और शरीर किसी और का, इसलिए मैं ये शरीर छोड़ रही हूं।

पूरी आजादी से बिना किसी बंधन के तुम्हारे आसपास रह सकूं। जयंत, बहुत जल्दी तुम अपने आसपास सोते जागते उठते बैठते मेरी आत्मा की खुशबू पाओगे, जो अपने पवित्र शरीर के बंधन से आजाद होगी और सदा को तुम्हारी रहेगी, केवल तुम्हारी ही सुजाता। ये सब क्या है? ये चिट्ठी, ये सुजाता, सुजाता और जयंत, ये सब क्या है? क्या ये सब? और ये सुजाता कौन है? इसने तो खुद टूटकर अपना वजूद खत्म करके वो कर दिया जो शायद ये जिंदा रहते हुए नहीं कर सकती थी। Oh my God, जयंत, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? इतना बड़ा धोखा मेरे साथ क्यों किया तुमने? क्यों किया? मुझे मर जाना है, मुझे भी टू

0: एसपी साहब
1: जी,
0: बहुत एहतियात की जरूरत है
1: जी।
0: हर डोज टाइमली मिले और दवा बिल्कुल मिस ना हो।
1: यस डॉक्टर। डॉक्टर, आई एम गिल्टी ऑफ अ ब्रेकडाउन, दैट आई नो। लेकिन डॉक्टर, मैं भी अपनी जगह उतना ही बेदाग हूं जितनी वो। उसने मेरे दिल को टटोलना ही नहीं चाहा, बल्कि उसे चाहिए था कि पत्नी होने के नाते मुझे मजबूर करती हर बात का खुलासा करने के लिए, तो ये नौबत ना आती। यू नो, शी इज एन एक्सट्रीमली सेंसिबल वुमन।
0: उन्होंने कोशिश की थी जानने की, पर आप खुद भी तो उन्हें नॉर्मली जवाब नहीं दे सके।
1: एनीवे डॉक्टर, प्लीज अब जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए उसे। ये उससे कहीं ज्यादा मेरे लिए जरूरी है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी ट्रेजडी है कि उसके दिमाग में मुझको लेकर मिसकंसेप्शन रहे और मैं अपनी सफाई ना दे सकूं।
0: प्लीज प्लीज बी नॉर्मल एसपी साहब, शी विल बी क्योर्ड परफेक्टली। जाइए, आप भी आराम करिए। शी इज इन साउंड स्लीप। गुड नाइट।
1: गुड नाइट।

0: मॉर्निंग एसपी साहब, गुड मॉर्निंग।
1: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, आइए आइए प्लीज।
0: मुझे खुशी है कि मेरा डायग्नोसिस सही रहा कि उनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना होगा।
1: ऑफ कोर्स डॉक्टर, ऑफ कोर्स। आफ्टर ऑल आप ही हैं डॉक्टर साहब। अरे आपकी राय के मुताबिक मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इस तरह से बिहेव करना शुरू किया जैसे हम न्यूली मैरिड कपल हों।
0: वेरी गुड।
1: मैं कई गुना ज्यादा अफेक्शन, अटैचमेंट और कभी कभी बड़े रोमांटिक अंदाज में तनुजा के साथ इन्वॉल्व रहने लगा। और उसे भी मजबूर करता रहा डॉक्टर कि वो अपनी प्रेजेंट ट्रेजेडी को भूलकर सालों पहले के उन ख्वाबों और चाहतों से भरे दिनों में लौट जाए।
0: वेरी नाइस।
1: और यू नो, मैं अपने इस प्रयास में कामयाब हो गया। तनुजा के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट लौट आई।
0: वेल डन, एक्सीलेंट। आप तो साइकोलॉजिस्ट हो गए।
1: थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू।
0: भाई हमें ट्रीट दीजिएगा।
1: श्योर डॉक्टर, व्हाई नॉट।
0: अगर मैं 2 महीना शहर से बाहर नहीं रहता तो आप इतने काबिल साइकोलॉजिस्ट कैसे बन पाते?
1: दैट्स ट्रू डॉक्टर साहब, आप आ जाया करिए कभी।
0: लेकिन तनुजा जी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
1: बस वो ऐसे ही, वो 2 दिन से कुछ अनईजी महसूस कर रही थी। मैंने दुर्गा के साथ चेकअप कराने के लिए भेज दिया है।
0: कोई खास बात?
1: ये तो उनके लौटने पर ही पता चलेगा डॉक्टर।
2: अरे डॉक्टर साहब, आप नमस्ते, कब लौटे?
0: नमस्ते तनुजा जी, बस आज ही लौटा हूँ। कहिए कैसी तबीयत है?
2: बहुत अच्छी है।
0: चेकअप कराने गई थी?
2: जी हाँ, नहीं कुछ नहीं, बस सब ठीक है।
0: अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ।
1: चल दिए?
0: ओके साइकोलॉजिस्ट साहब, इजाजत दीजिए।
1: आते रहिएगा डॉक्टर साहब।
0: अरे अब मेरी क्या जरूरत।
1: अरे भाई
2: नमस्ते डॉक्टर साहब।
0: नमस्ते।
1: क्या बताया डॉक्टर ने?
2: डॉक्टर ने अब हम दोनों के बीच में हर पल कोई तीसरा मौजूद है।
0: रियली? थैंक यू, थैंक यू।

0: नियति चक्र। अभी आप डॉक्टर इंदु प्रकाश एरन का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता शोभाकांत राय और प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, कीमती आनंद, कमल साथी, अशोक मलकानी, डीपी श्रीवास्तव, सुनील कुमार, अजय मनचंदा, टीआर मेहता, योगेश जैन, राजेंद्र वर्मा, हेमेंद्र नाथ, राजीव कुमार, नीरू अग्रवाल, प्रतिभा शर्मा और सुचित्रा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक नीति चक्र, मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी के रायपुर सरायपाली केंद्र है, 11 बजे हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित करते हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में उन्होंने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के मंच को भी संबोधित किया और दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपतियों से बातचीत की। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये 40 वर्षों में न्यूजीलैंड की पहली यात्रा थी। श्री मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान में भी शामिल हुए। वहीं उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव अप्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में निर्धारित अवधि समाप्त होने वाले खराब, सड़े गले, दूषित और अन्य असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के आरोप लगाए गए हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई थी। ये हादसा 36

0: लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकोक द्वीप के पास अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। कल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गया है। वहीं एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं का फरमाइशी कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। प्रस्तुत कर रही हैं तारकेश्वरी आशुदानी।

0: पर हुई कुछ खास मुलाकातें, आपसे हूँ प्यारी प्यारी बातें लेकर आपके पसंदीदा गीत। हाजिर हैं हम कार्यक्रम फोन इन फरमाइश में। मैं हूँ तारकेश्वरी, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आइए सुने ये सुरीला सिलसिला। हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं संत राम कन्नौजे, ग्राम सुनार देवरी, तहसील पलारी, जिला बरौदा, बाजार छत्तीसगढ़ से बोला।
0: संत राम कन्नौजे जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम, धन्यवाद बहुत बहुत।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैडम, बस।
0: क्या करते हैं?
1: मैं इसी किसी कार्य करता हूँ, साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ मैडम।
0: अच्छा, पढ़ाना आपकी हॉबी है?
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल बहुत हॉबी है, क्योंकि मैं पिछले 2007 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों को, प्राइमरी और मिडिल लेवल के। तो मैडम, छोटे बच्चों को पढ़ाना इस प्रकार का बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बच्चे बहुत शरारती भी होते हैं कई बच्चे, और कई बच्चे तक की पढ़ाई को लिखाई में ध्यान देते हैं। लेकिन हाँ, सभी जिस प्रकार कुम्हार अपनी मिट्टी से कई प्रकार के खिलौने बनाते हैं, उसी प्रकार से मैं भी चाहता हूँ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, डिसिप्लिन में रखे और शिष्टाचार सीखें, ये सब चीज कर रहे हैं मैडम
0: जी। बहुत अच्छी बात, यूं ही बच्चों को पढ़ाते रहिए और खेती किसानी से पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान देते रहिए। बताइए, आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनवा दें?
1: हाँ, मुझे सुनना है मैडम, फिल्म है सुली का, गीत के बोल है सारी दुनिया का बोझ हम उठाते।
0: आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कुली का यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं हरीश कुमार साहू बोल रहा हूँ, फरसगांव जिला कोंडागांव बस्तर से।
0: हरीश कुमार साहू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम।
0: कैसा है कोंडागांव का मौसम? बारिश हो रही है वहाँ?
1: जी बारिश हो रही थी, अभी दो दिन बारिश कम हो रहा है, मतलब धूप निकल रहा है।
0: ये धूप चुभने वाली है या सुहावना है मौसम?
1: मौसम सुहाना है और हल्का सा गर्मी भी है।
0: तो क्या कर रहे हैं आप कोंडागांव में इन दिनों?
1: मैं मैडम पत्रकारिता करता हूँ।
0: पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। एक पत्रकार के रूप में कौन सी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो आप निभाते हैं?
1: सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह रहता है कि जो जनता की समस्या है उसको हम सरकार तक पहुँचाते हैं, और हर एक गरीब किसान हो या किसी गरीब परिवार हो, जिस जो समस्या रहता है वो समाधान नहीं हो पाता, उसको हम जिला प्रशासन या उसके बाद राज्य में उसको पहुंचाते हैं अपने खबरों के माध्यम से।
0: यानी आम जनता की आवाज उठाना आप अपना कर्तव्य समझते हैं?
1: जी।
0: इसी तरह अपना कर्तव्य निभाते रहिए। और आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनवा दें ये बताइए।
1: जी सूर्यवंशम पिक्चर का सुना दीजिएगा, पीपल के पतवार से।
0: आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सूर्यवंशम का यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: हेलो, फोन इन फरमाइश।
2: हाँ नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू बोल रहा हूँ।
1: श्रवण कुमार साहू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: कैसे हैं आप श्रवण जी?
2: ठीक है मैम, आप लोग कैसे हैं?
1: यहाँ भी सब बढ़िया है और लगातार हम आपकी फरमाइशें पूरी करने का प्रयास करते हैं। आपके ईमेल्स हमें मिलते रहते हैं।
2: जी जी जी, मैं तो आकाशवाणी रायपुर का नियमित श्रोता हूँ और प्रत्येक कार्यक्रम को मैं सुनता हूँ और ईमेल वगैरह का पत्र व्यवहार करता ही रहता हूँ।
1: जी, और रेडियो सुनने के अलावा और कौन कौन से शौक हैं आपके?
2: मेरे को पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, घूमना और पर्यटन स्थल में जाना, ये मेरे को शौक है।
1: अब तक किन किन पर्यटन स्थलों पर आप घूमकर आ चुके हैं?
2: जैसे राजिम है आपका, चंपारण है, भोरामदेव है, रतनपुर है, यहाँ अपने छत्तीसगढ़ की स्थानीय पर्यटन स्थल को मैं घूम चुका हूँ।
1: छत्तीसगढ़ प्रकृति संपन्न प्रदेश है, यहाँ प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज्यादा है, पानी की प्रचुर मात्रा है, ये वनाच्छादित क्षेत्र भी है, तो पर्यटन यहाँ बहुत रुचिकर महसूस होता है ना?
2: जी जी।
1: बताइए आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनवा दे श्रवण जी?
2: सावन को आने दो का फिल्म का ये गीत सुना दीजिए जो वर्षा ऋतु के आधारित पर है।
1: आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सावन को आने दो का ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं कुर्मी पारा बेमेतरा से बोल रहा हूँ मैम, आपका नियमित श्रोता और आपका अपना साथी सुरेश कुमार सारथी।
0: सुरेश कुमार सारथी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हम तो आपके केंद्र के बहुत ही पुराना और नियमित श्रोता हैं।
0: जी
1: और
0: बिल्कुल,
1: 40 वर्षों से हमारा पत्र हमेशा जाते रहता है मैम।
0: जी बिल्कुल, आपके पत्र हमें नियमित रूप से मिलते हैं और हम आपकी फरमाइश पूरी करने का प्रयास भी करते हैं। बताइए, आज के इस कार्यक्रम में आपने कॉल लगाया है, क्या कहना चाहते हैं?
1: अब यह श्रोता भाइयों से और जितने भी मेरे आवाज को सुन रहे हैं उनको विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आषाढ़ का महीना है, एक पेड़ अवश्य लगाएं। और मैं तो 3 पेड़ लगाया हूँ मैम, पीपल, नीम और बरगद का।
0: जी बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। ये वृक्ष लगाने का काम जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। हम सभी को सच में पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए अपने आसपास वृक्षारोपण करने की जरूरत है।
1: बहुत जरूरत है मैम, ताकि आने वाली पीढ़ी को दूषित पानी और प्रदूषण और भीषण गर्मी से निजात पाया जा सके मैम।
0: इस अच्छी सी बात के बाद अब जानना चाहते हैं वो गीत जो आप इस कार्यक्रम में सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।
1: प्रोफेसर प्यारे लाल का गीत है मैम, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में है। तेरे सिवा ना किसी का बनूंगा, खुले जिगर से ये लिख के मैं दूंगा, ये वादा रहा साजना, ये वादा रहा।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: फोन इन फरमाइश के तमाम श्रोताओं को हमारा यानी कि रविशंकर चंद्राकर दीवान का ढेर सारा अभिवादन।
0: रविशंकर चंद्राकर दीवान जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मौसम सुहाना है और खेती बाड़ी का काम चल रहा है, साथ में हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी बच्चों की पढ़ाई अच्छी सी हो रही है। मैम,
0: आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं बच्चों को?
1: जी।
0: भाषा का व्यक्तित्व के विकास में क्या योगदान हो सकता है, ये जानना चाहते हैं आपसे।
1: जी, भाषा का व्यक्तित्व के विकास में बहुत योगदान है और हमें हर भाषा सीखने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या अन्य भाषा हो, क्योंकि भाषा से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें कोई संकोच नहीं होने चाहिए कि ये हिंदी है या अंग्रेजी है या अन्य भाषा है।
0: जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और रविशंकर जी, अब जानना चाहते हैं वो गीत जो आज इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं और हमारे श्रोताओं को भी सुनवाना चाहते हैं।
1: आज जो मैंने गीत पसंद किया है फिल्म दादा का है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके ये गीत सुनना है।
0: तो आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं येसुदास की आवाज में ये प्यारा सा गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दिल के...

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हाँ दीदी नमस्कार।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम बुची पारा सुशील गंधर्व बोला था दीदी।
0: सुशील गंधर्व जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैं तो खेती किसानी काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, और हमारा प्रसारण कब कब सुनते हैं?
1: अरे आपका प्रसारण तो मैं डेली सुनते रहता हूँ दीदी।
0: कैसे सुनते हैं?
1: मोबाइल में अलग रखे रहता हूँ।
0: हाँ।
1: और घर में अपना रेडियो रखा हूँ, रेडियो धरा अभी बैठा हूँ, चालू है, अभी भोजपुरी गीत चल रहा है।
0: तो इसी तरह रेडियो से अपना प्रेम बनाए रखिएगा, आकाशवाणी रायपुर से जुड़े रहिए। बताइए आज के इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहते हैं?
1: कलाकार के नाम भूल गए, फिल्म का नाम दीदी, बाकी खानदान का है, फिल्म है, रफी साहब है उसमें गायक।
0: तो आपकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म खानदान का ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: सिमगा से राम कुमार जवान बोल रहा हूँ।
0: सिमगा से राम कुमार जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैम, क्या बताइए, आप लोग कैसे हो? आकाशवाणी परिवार,
0: हम भी बहुत अच्छे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको आपकी पसंद के गीत सुनवाए जाए आपके फरमाइशी कार्यक्रमों में। आपने फोन लगाया है आज के इस कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं?
1: मैं ये चीज बोलना चाहूँगा, बारिश शुरू हो गई है, अब बारिश के शुरू होते ही अगर वृक्षारोपण हम कर दें तो पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा और कुछ हद तक प्रदूषण से हमको राहत मिलेगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, आपका विचार बहुत अच्छा है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सिर्फ बारिश में नहीं, हमें 12 महीने प्रयास करते रहना है।
1: प्रयास गर्मी नहीं होती मैम, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, पौधा जो मर जाता है, क्योंकि अभी जो बारिश का मौसम होता है ना, इसमें तेजी से पौधा ग्रोथ करता है।
0: यही प्रयास हम सब करते रहेंगे। और अब जानना चाहेंगे आपकी पसंद का वो गीत जो इस कार्यक्रम में आज आप सुनना चाहते हैं।
1: मैम मैं एक गाना सुनना था, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, इसमें धर्मेंद्र जी है, नरसिंह शाह है, दिल दीवाने के लिए डोरा, दिलदार के लिए मने रंगा वसंती चोला।
0: आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तहलका का यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आज के इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहते हैं?
1: मैं एक मूवी है साजिश करके कहना चाहिए, उसमें से एक सॉन्ग है दिल ये कहे प्यार होने लगा है, ये सॉन्ग सुनना चाह रहा था। ये सॉन्ग मुझे सुनवा दीजिएगा मैम साहिबा।
0: तो आपकी फरमाइश पर आइए सुने यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फोन इन फरमाइश को यहीं समाप्त करने की आप अनुमति दीजिए। जाने से पहले आपको बता दें वो फोन नंबर जिस पर कॉल करके आप भी जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम से और सुन सकते हैं अपने पसंदीदा गीत। नंबर है 400-348-2। दूसरा नंबर है 400-348-2।

0: 3 और तीसरा नंबर है 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। इस नंबर पर कॉल कीजिए शुक्रवार सुबह 11 बजे और सुनिए अपने पसंद के गीत रविवार सुबह 11:05 से कार्यक्रम फोन इन फरमाइश में। आप अनुमति दीजिए आप सभी को तारकेश्वरी का नमस्कार।
1: श्रोताओं का फरमाइश कार्यक्रम अभी फोन इन फरमाइश अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी तारकेश्वरी आशुदानी। आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा और जशपुर जिले के तपकरा क्षेत्र में हाईवे और कार के बीच हुई भिड़ंत में 2 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल 13 जुलाई से शुरू होगा। 17 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। इस बीच मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की अध्यक्षता में आज रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देशभर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। बस्तर जिले के भानपुरी वन परिक्षेत्र के फरसा गुड़ा गांव में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए ट्री एटीएम का शुभारंभ किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष देवती कश्यप ने इसका उद्घाटन किया और निःशुल्क पौधारोपण वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़कर पौधों के संरक्षण का आह्वान किया। राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में MBBS की सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति NMC से मिल गई है। चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड की ओर से जारी अनुमति पत्र के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कॉलेज की MBBS सीटों की संख्या 230 से बढ़ाकर 250 कर दी गई है, यानी कुल 20 नई सीटों की बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य में मनोचिकित्सकों की कमी को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। डिवीजन बेंच ने राज्य में मनोचिकित्सकों के खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि वह मनोचिकित्सकों के 6 रिक्त पदों के लिए तुरंत विज्ञापन जारी करे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास कल एक मालगाड़ी का वैगन पटरी से उतर गया। घटना शंकरनगर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे डाउन लाइन पर हुई। राहत की बात यह रही कि मालगाड़ी की रफ्तार बेहद धीमी होने के कारण बड़ा रेल हादसा टल गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार घटना का असर ट्रेनों की आवाजाही पर मामूली रूप से पड़ा है। परिचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और ट्रैफिक बहाली का कार्य लगातार जारी है। जशपुर में तपकरा वन थाना क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा कुनकुरी मार्ग पर लवाकेरा के पास शनिवार को एक तेज रफ्तार हाईवे और कार के बीच आमने सामने से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सरगुजा जिले के मैनपाट में कल 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने से हुई टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य हादसे में अंबिकापुर सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में सेदम के पास मोटरसाइकिल से जा रहे एक दंपति को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा और जशपुर जिले के तपकरा क्षेत्र में हाईवे और कार के बीच हुई भिड़ंत में 2 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 305.81 मीटर्स अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं रोशन भारती।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं रोशन भारती।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे रोशन भारती। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। आइए अब सुने छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत।

कार्यक्रम सुनिया जम्मो संगवारी मल्ला पिंकी दुलानी के राम राम जय जोहार। संगी हो आवो कार्यक्रम के शुरुआत करे जाए सुक्तिन मरकाम और साथी मन के गाए गीतला जेला सुनवाई बर फरमाइश भेजे हो आपन। आप हो सिमगाले भारती सेन विजया सेन ललिता रामेश्वरी मीना सेन बेमित्राले जितेंद्र सलूजा छगन लाल वर्मा और प्रदीप सेन महासमुद ले आप हो अदालत दास वैष्णव मानस सतीश वैष्णव और बिलाई से आप हो निर्मल सिंह चूड़ी लाइन भाटा पारले अब्दुल मजीद कुरैसी रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद पलारी ले प्रकाश वर्मा निखिल वर्मा प्रिंस वर्मा यशस्वी वर्मा रामचंद माखीजा आप हो धमतरी ले आप मन पाती पटोय हो धमतरी ले आप संग है शंकरलाल माखीजा राहुल कुमार माखीजा सविता और स्वाति माखीजा झारखंड ले आप हो उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किस्सु और तासु और बग बुड़वा पथरिया ले नरेंद्र नेताम कुसुम नेताम मोनिका उत्कर्ष नेताम रिंगरी छत्तीसगढ़ ले आप हो दिनेश वर्मा करुणा वर्मा ग्राम दरचूरा ले आप हो ददुआ साहू भूरी साहू रेखा और मोतीलाल साहू कांकेर ले आप हो देवव्रत रामसाय कौशल और मानिक राम साहू गौतम नगर नांदेड़ ले आप हो प्रभाकर जोधले आरती जोंधले पेंड्रा ले आप हो दीपक कुमार रोशन कुमार बंसीलाल और लबी श्रीवास्तव। तो आवो संगी हो सुनतन आप संग में सुकतिन मरकाम और साथी मन के गाए ए गीता।

कार्यक्रम में आवो अब सुने जाए सोम कुमार ठाकुर और साथी मन के गाए गीतला जेला सुनवाए बर फरमाइश आप मन के है। आप हो भाटा पारले मिलव दास कुलदीप संतोष संदीप अजीत हथनी भाटा पारले आप हो चुवा राम वर्मा मुकेश वर्मा दुलारी वर्मा और दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा कोरदा लवनले भूधर प्रसाद वर्मा घनश्याम प्रसाद वर्मा गुलशन कुमार शिव कुमारी हेमलता वर्मा और वेद किरण वर्मा पोटियागला दुर्गले आपो संजय साहू सुजाता साहू शशांक सिंह साहू और सीमा साहू बाजार पारा बेमित्रा ले आपो भरतलाल सिन्हा लव कुमार सिन्हा और लकी सिन्हा करी बदलले पुरुषोत्तम निर्मलकर श्रद्धा गिन्नी देवेंद्र कुमार निर्मलकर महामाया पारा ग्राम दरचूरा ले आपो फिरंता साहू दुलोरिन साहू कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू शिक्षक नगर दुर्गले राकेश वर्मा सचिन वर्मा और वाणी वर्मा हथपान ले आपो रतनलाल यादव शांतिबाई अजय कुमार कोटा ले अरुण वर्मा अनिल वर्मा ईश्वर वर्मा और दिनेश सेन डगनिया पाटन ले आपो सूर्या और मेघा कश्यप नर्मदा धाम सुरसुरी ले आपो कैलाश यादव सुरेश यादव डिकेंद्र यादव और योगेश यादव गेंदलाल मिश्रा चंद्रकांति धनंजय अर्चना मिश्रा आप मन हो धवलपुर गरियाबंद ले शंकरनगर दुर्ग ले आपो मानिक सी बैस कावेरी राहुल बैस बिनीता और लखमणी बैस शीतलानगर दुर्ग ले आपो शिव चंद्राकर भगवान चंद्राकर कोरदा ले आपो कल्ली राम यादव छतराम यादव शिवनगर शिव मंदिर खैरागढ़ ल्यापो रविंद्र अग्रवाल पुष्पलता झरना प्रेरणा दीक्षा और शिक्षा महासमुंद ल्यापो सुभाष वर्मा छाया वर्मा भीषम दास मानिकपुरी और गोवर्धन यादव हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा ले आपो रमेश कुमार यादव माया यादव रिंकू सन्नी कोमल यादव और आओ बंगला मटिया बालोद ले आपो शिव कुमार अंगारे अंजनी त्रंबिका लीना अंशुमाला आशुतोष अंगारे तो संगीओ ले वो सुनो आप मन के पद आप सबके पसंद माँ सोम कुमार ठाकुर और साथी मन के गाए एक गीत ला।

सोम कुमार ठाकुर और साथी मन के गाए गीत के बाद आवो अब सुने जाए मोतीदास मानिकपुरी और साथी मन के गाए गीत ला जिला सुनवाए बर फरमाइश आप मन के है आपो भाटा पराले बचकमल मोतीलाल यादव पसंद भिगु विनय ठाकुर सोनडीले आपो सुब्रत चौधरी नवांगढ़ कटेले आपो नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा सारदा दामिनी वर्मा अरमरी खुर्द पाटन ले आपो जैनी वाड़दे नेहा वाड़दे तिविसा वाड़दे रमजान खान सिकंदर अशरफ खान नासिर खान अयाज अल्फेज खान महजबीत बानो आपमनो शांतिनगर भाटापारा ले पावर हाउस भिलाई जामुन ले आपो विकास वर्मा खुशी औ ग्रंथ वर्मा परमिलागंज अलोट जिला रतलाम ले आपो बलवंत कुमार वर्मा राजू बाई माया सीमा राहुल ज्योति अतुल पायल प्रियांश और ऋषि वर्मा ग्राम बुड़गहन ले आपो राम दुलारी प्रजापति राम शरण प्रजापति चंद्रेश कुमार चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति भिलाई ले आपो वीणा अंजू औ दीक्षा वर्मा नेहरू वार्ड भाटापारा ले आपो प्रेमलाल साहू भूपेंद्र साहू दुष्यंत औ राघवेंद्र साहू पावर हाउस भिलाई ले आपो विकास खुशी वर्मा सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव ले आपो मिथिलेश देवांगन मधु देवांगत हिमांशु औ अंकित देवांगन मदनपुर कवर्धा ले आपो श्रवण कुमार साहू योगेश साहू राहुल साहू भाटापारा ले दानसी रावत दानू पद्मिनी रावत नीरज रावत शुभम सौरभ रावत पेंशनबाड़ा ले आपो सोमनाथ यादव वंदना यादव शीला यादव सूर्यप्रकाश कनक गुनगुन तन्मय यादव बेमित्रा ले सुरेश कुमार सारथी पूर्णिमा हेमलता सारथी कमलकांत सारथी वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी ग्राम दरचूरा ले आपो ददुआ साहू भूरी साहू रेखा औ मोतीलाल साहू छत्रपति संभाजीनगर ले आपो राजेश सांबले पाटिल राजदीप सारे राजेश राजेश राशि राजेश शीतल राजेश शानीचर बाजार भिलाई ले आपो सुशील जैन कल्पना जैन सौरभ जैन औ शुभम औ शौर्य जैन ग्राम करी बदल ले जीवनलाल देवांगन कचरीबाई देवांगन और दीपक देवांगन कोयलारी कामन बोर्ड ले आपो निरपत साहू भरद्वाज साहू गुड़ूर साहू औ सीमा साहू तो आवो आप सबके फरमाइश मां सुनथन मोती दास मानिकपुरी औ साथी मन के गाए ए गीत ला।

मोती दास मानिकपुरी और साथी मन के गाय गीत के बाद आवो अब सुने जाए भरत लाल हरिंदर और साथी मन के गाय गीत ला जेला सुनवाए भर फरमाइश भेजे हो आप मन आप हो भिलाई ले दिनेश देवांगन भाग्यश्री पुष्कर वंशिका देवांगन कटोरा तालाब ले मोहनलाल देवांगन प्रभा भूपेश तुषार देवांगन और बहुरानी सुभाष वार्ड भाटापारा ले आपो एम एल यादव अजय कुमार यादव अमित अमीन यादव गिरीश कुमार यादव जेड रोड रायगढ़ ले आपो उमा अरविंद जानवी निवेश परमिला रुचि प्रभा और अजीता ठाकुर मोती गार्डन भाटापारा ले आपो मोतीलाल झेरिया कल्पना झेरिया बिट्टू कुमार झेरिया चिंटू झेरिया युग कुमार झेरिया राजकोट ले आहो प्रकाश और परमिला शर्मा महादेव घाट ले कृष्णा कुमार वीना कुमार और डॉली जेल रोड मधुबनी ले आपो फारिया खान उमा खान और अनुश्री खान मगर लोड ले आपो भागवत साहू कचरी कुमारी बाई साहू भानबेड़ा मुंगवा ले आपो रूप नारायण हुपिंडी कमला चिमरी बाई हुपिंडी रानन गांव ले आपो आत्मा राम यादव सुखदेवी विदेशी होमेश्वर मनेश्वर साक्षी तुलसी यादव बेमित्रा ले विश्व विभू

भरतलाल हरिंद्र और साथी मन के गाए एक गीत के बाद कार्यक्रम के आखिर में आओ सुने जाए नवलदास मानिकपुरी अनुसुईया मानिकपुरी और साथी मन के गाए गीतला जेला सुनवाए बर फरमाइश आप मन के है। आप हो बाटा पारले साम रतन मुंदड़ा रचनाकार मुंदड़ा लच्छनपुर ले रामजी साहू जीवन लाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू बीर शहले आपो प्रकाश पगारिया पराग पगारिया प्रदीप पगारिया केशव और सरला प्रकाश कवर चौक भाटा पारले आपो रमजान खान सिकंदन अशरफ खान नासिर खान अयाज और अल्फेज खान भाटा पारले आपो राम कुमार राउत अमरीका गणेश राउत कार्तिक और युवराज राउत बाजार पार बेमित्रा लियापो सनत कुमार यादव बरातू यादव और आदित्य यादव दत्तरेंगी लियापो भागवत वर्मा गुलाब दास हेमकेश्वर और के आर साहू पटेल नगर मलोट पंजाब लियापो रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया।

0: गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया, बिलासपुर ल्यापो सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश और आशीष देवांगन, अकलतरा ल्यापो मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या साहू और डीकेश कुमार साहू, मेनपाट ल्यापो सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और अदीबा थापा, भिलाई नगर पदुम नगर भिलाई ल्यापो नौसाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, जीसान अहमद सिद्दीकी, सहनवाज अहमद सिद्दीकी, आप सबके फरमाइश में आवो सुने जाए नवलदास मानिकपुरी, अनुसुईया मानिकपुरी आओ साथी मन के गाए गीतला।
1: करिया करिया बादर घपटे चले पवन पुरवैया।

नवलदास मानिकपुरी, अनुसुईया मानिकपुरी और साथी मन के गाय गीतला अब होत है कार्यक्रम आप मन के गीत ले विदा लेके बेरा जाए के पहले आप मनला बता देवन एक कार्यक्रम मा गीतला जोड़े रहन वीर बहान साहू। तो अब देवो विदा और स्वीकारो पिंकी दुलानी के जय जोहार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। शेख हमद ने क्षेत्रीय परंपरा को तोड़ते हुए 2013 में स्वेच्छा से अपने पुत्र को सत्ता सौंपने से पहले 18 वर्षों तक कतर पर शासन किया। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोवक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला ड्राबोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। इसके साथ ही

0: यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत गुलाम फिल्म से, कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें हैं, समीर के बोल, जतिन ललित का संगीत।

अलका याग्निक, हरिहरन और एआर रहमान की आवाज़ों में ये था गुरु फिल्म का गीत। गुलजार के लिखे इस गीत के लिए संगीत एआर रहमान का था। चित्रपट संगीत का अगला गीत आइए अब सुनते हैं, हद कर दी आपने इस फिल्म से। जसपिंदर नरूला की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल हैं, आनंद राज आनंद का संगीत।

0: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
1: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
0: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
1: रियली?

जसपिंदर नरूला की आवाज़ में अभी आपने सुना हद कर दी आपने फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत के लिए संगीत आनंद राज आनंद का था। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप हमारी इसी सभा में दिन में 2 बजे फिर सुन सकेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आइए अब आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

रात 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। रात 10 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा के कार्यक्रम में सुनिएगा कुमार मर्दुर का गायन। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम बिंदिया में आज की बात का विषय होगा कुछ न कुछ सीखने की आदत। सुनिएगा वार्ता बड़े बुजुर्गों का आदर करें। वार्ताकार होंगी नूर पैकर। साथ ही सुनिएगा क्रम कुछ बातें कुछ गीत। दीदी की सलाह में सुनिएगा फलों और सब्जियों के लाभकारी गुण। समय याद रखिएगा 8:30 पर। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी सुनिएगा 5:10 पर। आजकल का विषय होगा उम्मीद का दामन ना छोड़े। सुनिएगा राग नंदिनी, आलेख और संपादन बीरभान साहू का। इसके साथ ही सुनिएगा क्रम सवालों के आईने में और फिल्म संगीत। जिले की चिट्ठी में 6:05 पर सुनिएगा बस्तर जिले की चिट्ठी, आलेख संतोष वर्मा का होगा। कानून की बात में 6:30 पर सुनिएगा स्थायी लोक अदालत जन उपयोगी सेवा के प्रभावी संचालन तथा उनकी सुलह करने व निर्णय की भूमिका पर जिला न्यायालय दुर्ग के अधिवक्ता श्री गौरव सतपंथी द्वारा दी गई जानकारी। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इस कार्यक्रम में आज दिन में 2:30 पर सुनिएगा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल से बातचीत। किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल 7:21 पर। आज की बात केंद्रित होगी खरपतवार नाशी रसायनों के उपयोग में सावधानी इस विषय पर। क्रम आज की सलाह में सुनिएगा नए फल उद्यान की स्थापना हेतु नियोजन एवं प्रबंधन इस विषय पर डॉक्टर कुंतल सारकर सहायक प्राध्यापक फल विज्ञान कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र गरियाबंद द्वारा दी गई सलाह। साथ ही सुनिएगा छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत। हमर हाथी हमर गोट ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा आज 5:00। चित्रपट संगीत का समय आपको बता दें दिन में 2:00, 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर।

श्रोताओं, आपको एक बार फिर याद दिला दें, आज शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी में सुनिएगा बस्तर जिले की चिट्ठी, आलेख संतोष वर्मा का होगा। कानून की बात में शाम 6:30 पर सुनिएगा स्थायी लोक अदालत जन उपयोगी सेवा के प्रभावी संचालन तथा उनकी सुलह करने व निर्णय की भूमिका पर जिला न्यायालय दुर्ग के अधिवक्ता श्री गौरव सतपंथी द्वारा दी गई जानकारी। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इस कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर सुनेगा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल से बातचीत। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया।

खत्म हुई आपकी प्रतीक्षा, खत्म हुआ इंतजार, आप सभी को आकांक्षा दुबे का प्यार भरा नमस्कार। जानती हो बहनों, मेरे दादा दादी की जो जोड़ी थी ना, वो बहुत कमाल की थी। दादी एकदम हसमुख और बातूनी और दादाजी बहुत ही शांत स्वभाव के थे। दादी की नाराजगी दादाजी से सिर्फ इस बात को लेकर होती कि उनका ज्यादा वक्त किताबों और डायरी में बीतता रिटायरमेंट के बाद से। दादाजी की इस दुनिया से जाने के बाद दादी जी ने उनकी डायरियां खोली। एक डायरी में उनका सारा हिसाब किताब का ब्यौरा था, कहाँ क्या संपत्ति किसके लिए उन्होंने रखी है ताकि किसी को इधर उधर भटकना ना पड़े। एक डायरी उन्होंने खोली जिसमें लिखा था हमारे पूर्वज हमारे रिश्तेदार। इसमें उन्होंने सबके फोन नंबर और सबके पते लिख रखे थे। एक डायरी और थी जिसमें उन्होंने लिखा था मेरी प्रिय मैना। दादी का नाम था मैना। दादी को लेकर जो भी उनके मन में भाव थे वो उन्होंने उस डायरी में लिख रखे थे। उस दिन दादी के पास दादाजी के एक एक शब्द थे जिससे उन्हें उनके पास होने की अनुभूति हो रही थी। उस दिन मुझे ये आभास हुआ कि अक्सर दादाजी हमें कुछ लिखकर बैठकर लिखने को क्यों कहते थे। वो हमें बैठाकर इमला लिखाया करते थे क्योंकि वो हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ लिखने के लिए कहते। अक्सर वो ये कहते कि हमारे जो शब्द हैं ना वो अमर रहते हैं। उस दिन मुझे ये आभास हुआ कि उनके जाने के बाद भी उनके शब्द हमारे साथ थे। इसलिए तो रचनाकार अपनी रचना के जरिए हमेशा अमर रह जाते हैं और हमारे बीच रहते हैं। कुछ न कुछ लिखने की जो आदत होती है ना, अक्सर मैंने अपने पिता को भी इस आदत में शामिल देखा। एक दिन मैंने उनसे ऐसे ही कह दिया कि आप क्यों रोज लिखते हैं, क्या आपको अब भी अपनी लेखनी सुधारनी है, आपकी लेखनी तो कंप्यूटर के अक्षरों जैसी है। तब पिताजी ने मुझे समझाया था कि लिखने से सिर्फ हस्तलेखन या व्याकरण की त्रुटि नहीं सुधरती बल्कि याददाश्त भी तेज होती है। लिखने में मन शांत होता है। अपनी भावनाओं को लिखकर हम सिर्फ अपने विचार व्यक्त नहीं करते बल्कि उन लिखे हुए शब्दों को पढ़कर हमें उन बातों पर दोबारा विचार करने का अवसर मिलता है। अपने लक्ष्य को यदि हम कहीं लिख लेते हैं ना, तो हमें वो लिखे हुए शब्द बार बार अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध करते हैं। लिखने से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। बच्चा यदि लिखकर बातें याद करता है तो उसकी भावनाएं उससे जुड़ जाती हैं, उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठने लगती हैं और उसकी याददाश्त तेज होती है। जानकारियों को लिखकर रखने से उनके पास एक दस्तावेज बन जाता है। जानकारियों का इतने सारे फायदे हम लिखकर अगर कर सकते हैं तो सोचो कितना फायदा होगा इस लिखाई से। कुछ ना कुछ लिखने की आदत हम सब में होनी चाहिए। उस दिन से मैंने भी कुछ ना कुछ लिखने की आदत बना ली। बहनों, क्या आप भी कुछ लिखती हैं? नहीं लिखती तो लिखने की आदत डाल लें। कुछ बातें, कुछ गीत जो आपको पसंद हो, उसके जरिए आप अपने मन की बात हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी पसंद के गीत भी सुन सकते हैं। आपसे बातें तो अभी कुछ ही हुई हैं, कुछ बातें और होंगी, पर पहले सुनते हैं ये गीत।

0: मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाज में फिल्म हम का गीत अभी आपने सुना। बोल आनंद बख्शी के थे और इसे संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। घर में बड़े बुजुर्गों का होना सिर्फ हमें सुरक्षा नहीं देता, बल्कि उनकी उपस्थिति, उनके अनुभव से हमें जीवन जीने का एक नया नजरिया भी मिलता है। आइए सुनते हैं इसी विषय पर वार्ता, बड़े बुजुर्गों का करे सम्मान। वार्ताकार हैं नूर पैंकर।
1: बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार की नींव है, इनका होना किसी आशीर्वाद से कम नहीं। बड़ों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा करने से हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। बुजुर्गों का सम्मान करना यह हमारी संस्कृति भी है, यह हमारे घर समाज की बुनियाद है। बुजुर्गों के सम्मान करने का मतलब है कि हमें उनकी बातों को सुनना, उनके विचारों को महत्व देना, उनकी सभी छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करना। हमारे बुजुर्गों के पास जीवन की छोटी बड़ी कठिनाइयों, संघर्षों का अनुभव होता है। वे हमें सही मार्गदर्शन देंगे, हमें आगे बढ़ने के लिए सही दिशा बताएंगे। जब हम अपने घरों में अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों के साथ बैठकर कुछ समय बिताते हैं तो आपस में प्रेम, आदर, संस्कृति का निर्माण होता है। हमारे बच्चों में मानसिक विकास होता है, उनमें अच्छे संस्कार, आदर्श, अच्छे गुणों का विकास होता है। वह भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम अपने बुजुर्गों के साथ करते आए हैं। बच्चे हमें देखकर ही सब कुछ सीखते हैं। अपने घरों में बड़ों की अच्छे से देखभाल करें, उन्हें कभी हीन भावनाओं से ना देखें, उन्हें हमेशा अपने करीब रखें, अकेलेपन का एहसास उन्हें ना होने दें। हमारे माता पिता वृद्ध अवस्था में हमसे ज़्यादा ही अपेक्षा करते हैं, अब उनको लाठी की नहीं हमारे सहारे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनको समझना है, उनका सहारा बनना है, उनका हाथ थाम के उन्हें मजबूत होने का हमें एहसास दिलाना है। ऐसा करने से उनके चेहरे में एक अलग सी मुस्कान आप देख सकते हैं। हमारी छोटी सी कोशिश उनमें बदलाव ला देती है, वह इस पल को खुशी खुशी जीते हैं। हमारा अच्छा व्यवहार हमारे बच्चे भी अपनाएंगे। अभी की युवा पीढ़ी को अपने परिवार को सम्मान करना, महत्व देना और उनके अनुभव से खुद को ढालना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। ऐसा करने से हमारा काम भी सवर जाता है। बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान हमारी प्राचीन संस्कृति भी है। पहले घर के मुखिया ने जो कहा वह हम सबके लिए अनिवार्य हो जाता, कोई अपनी राय ना देता, ये सम्मान ही होता है। इससे घर में, परिवार में, रिश्तों में एकता, मजबूती बनी रहती है, गांव समाज में प्रतिष्ठा बनी रहती है, लोग हमारी मिसाल देते हैं, हमें इससे गर्व भी महसूस होता है। बदलते समय के साथ लोगों के विचारों में बदलाव आने लगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त तो कर ली लेकिन संस्कारों में कमी होने लगी। इसका कारण बुजुर्गों और बच्चों के बीच की दूरी, आपस में कोई बातचीत नहीं, बुजुर्गों की बातें सुनना पसंद नहीं, ना ही उनके साथ उठना बैठना। कहाँ से युवा पीढ़ी में तजुर्बा आएगा, कहाँ से जीवन में सीख लेंगे, कैसे अपने जीवन को सवारेंगे। बिना बड़ों के कोई भी काम करने से जीवन में कठिनाइयों का सामना ही करना पड़ता है। हमारे माता पिता हमें दुनिया के सभी संकटों से हमें बचाए रखते हैं। हमारी अच्छी परवरिश के लिए हमें पढ़ा लिखा कर अपने कदमों में खड़े कराकर उनकी सेहत और अच्छे से रहन सहन, खान पान का हमें ध्यान रखते हैं। बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, कमाने लगे, अपने जीवन का आनंद लेने लगे, सुबह जाते शाम को घर आते, उन्हें बड़ा करते करते ना जाने कब हम उम्र के इस पड़ाव में आ गए, हमें पता भी ना चला। हमारी भी जवानी थी, हमारे भी शौक थे, सब पीछे रह गए। अब बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, ये अब हम मान लेते हैं। हमें अपने बच्चों के सहारे की ज़रूरत है। हमारी आँखों में धुंधलापन है, हमारे कदम लड़खड़ाने लगे हैं, हाथों में कंपन है, वृद्ध अवस्था में हमें ज़्यादा ज़रूरतें होने लगती है। ऐसे में बच्चों को अपने माता पिता का ध्यान देना होगा, उनका हाथ थामे रखना होगा, उनके साथ अच्छा समय बिताना होगा, उनकी साफ सफाई दवाइयों का ध्यान रखना, समय समय पर थोड़ी सैर कराए, उन्हें कभी अकेलेपन का एहसास ना दिलाए, उनकी सेवा करते करते उन्हें कभी भी ये एहसास न दिलाए कि हम उनसे या उनके काम से परेशान हो गए, ऐसा कभी भी आप होने ना दें। सभी के विचार एक जैसे नहीं होते, सभी का व्यवहार प्रेम का एक जैसा नहीं होता। बच्चों के बदलते स्वभाव, माता पिता के प्रति चिड़चिड़ापन, उनकी बातें ना सुनना, उन्हें हर समय ताने देना, उनके घरों में उनसे नौकरों की तरह व्यवहार करना, ये भी जीवन का एक पहलू है जो कि सच है। आज बुज़ुर्गों की हालत बहुत ही दयनीय हो गई है, लोग उन्हें बोझ समझने लगे हैं, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, वृद्ध अवस्था में कुछ करने लायक नहीं रहते, उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक माँ को बच्चे की ज़रूरत। तभी परिवार के सदस्यों के द्वारा वृद्ध माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ा जाता है। अपने आपसी घरेलू विवाद में माता पिता को दोषी ठहराया जाता है, उन्हें विवाद का कारण समझा जाता है। ऐसे में माता पिता दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, उन्हें अपने बच्चों का बचपन याद आने लगता कि मेरे बच्चे ही मेरे सब कुछ थे, आज हम उनके लिए कुछ भी नहीं। ऐसे में उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगती है, आज रिश्तों की डोर कमज़ोर होने लगी, माँ बाप को कोई अपने साथ नहीं रखना चाहते, सब अपने जीवन में आज़ादी चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हम भी एक दिन इसी अवस्था में होंगे। हम जैसे जैसे भागदौड़ी भरी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे, काम में दिन प्रतिदिन उलझे रहने लगे, घर परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है, तो आधुनिक समाज आधुनिक दुनिया में तकनीकी विकास भी हुआ, हमें उसका फ़ायदा लेना होगा। हम दूर रहकर भी अपने घर परिवार अपने माता पिता का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, उन्हें अकेलेपन का भी एहसास नहीं होने लगेगा, हमें आधुनिक तकनीकों से काम में आसानी होती है, हमारे माता पिता हमसे बात कर सकते हैं और मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं। बुज़ुर्गों का जीवन लौटकर नहीं आता, एक बार जो घर से चले गए दोबारा कभी नहीं आते, उम्र के आखिरी मोड़ पर हमें उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को संकल्प लेना चाहिए कि अपने व्यवहार में बदलाव लाए, अपनों का सम्मान करे, उन्हें खुश रखने की कोशिश करे, तभी एक सुरक्षित समाज का निर्माण होता है, हमारी परंपरा हमारी संस्कृति भी जीवित रहती है। हम बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करके एक आदर्श समाज का निर्माण करते हैं, हमारी धरोहर है बुज़ुर्ग, हमारा अभिमान है, हमें हर हाल में अपने बड़े बुज़ुर्गों की कदर करनी चाहिए, दूसरों को भी उनके प्रति आदर सम्मान करने की सीख देना चाहिए।
0: बड़े बुज़ुर्गों का करें सम्मान, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे वार्ता, वार्ताकार थी नूर पैकर। बहनों, अक्सर मन को सुकून मिले ये सोचकर तो हम कुछ अपने मन की करते ही हैं, पर कभी कभी यात्रा पर निकल जाते हैं। यात्रा के लिए यदि आप निकल रही हैं तो पैसों के साथ साथ ज़रूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, परिचय पत्र और गाड़ी के ज़रूरी कागजात हमेशा अपने साथ लेकर चलें, खास तौर पर लाइसेंस। वैसे सेहत के हिसाब से ज़रूरी दवाएं और फर्स्ट एड बॉक्स, जिसे हम सुरक्षा के लिए रखते हैं ताकि किसी और की मदद कर सकें, अपने पास रखना चाहिए। जिस स्थान में हम जा रहे हैं कोशिश कीजिए कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप इकट्ठा कर सकें कि वहाँ पर किस तरह से भाषा बोली जाती है, किस तरह के पैसों का इस्तेमाल होता है, किस तरह का वहाँ का बाजार है और किस तरह का खान पान वहाँ आपको मिलने वाला है। इस तरह की यदि आप जानकारियाँ एकत्रित कर लेती हैं तो यकीन मानिए यात्रा सुखद भी होगी और यादगार भी, और ऐसे में कोई साथी साथ हो तो निश्चित रूप से वो यात्रा और भी सुखद हो जाती है। चलिए सुनते हैं ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म हिम्मतवार का गीत। बाबुल सुप्रियो और साधना सरगम की आवाज में नदीम श्रवण का संगीत था। मैनो घर सिर्फ चार दीवारी से बना मकान नहीं होता, वो स्थान होता है जहां हमारे सपने पलते हैं, जहां बच्चों का बचपन होता है हर एक कोने में, और जहां आशीर्वाद होता है बड़ों का हमारे लिए। इसलिए घर की छोटी बड़ी हर बात हमारी अपनी होती है। घर की दहलीज से जब घर की बातें बाहर जाती हैं तो उसका असर हमारे मान सम्मान सब पर पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि घर की बात घर तक ही सीमित रहे, क्योंकि नींव जितनी मजबूत होती है मकान उतना ही मजबूत होता है। ऐसे ही जब अपनों में प्यार जितना मजबूत होता है रिश्ते भी उतने मजबूत होते हैं। चलिए सुनते हैं ये गीत।

श्रेया घोषाल को अभी आपने सुना इस गीत में, और ये गीत हमने लिया था फिल्म सुपर नानी से। संजीव के लिखे बोल थे और इसे संगीतबद्ध किया था हर्षित सक्सेना ने। बहनों, बिंदिया में आपके पत्रों का हमें रहेगा इंतजार। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक, बिंदिया अनुभाग, आकाशवाणी केंद्र रायपुर, छत्तीसगढ़। हमारा पिन कोड है 492001। तो आपके पत्र का हमें रहेगा इंतजार। कीजिए अगली बिंदिया का इंतजार। आप सभी को आकांक्षा का नमस्कार।

महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, आइए सुने चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत पत्थर की फूल फिल्म से लता मंगेशकर, SP बालसुब्रमण्यम की आवाजें हैं, रविंद्र रावल की बोल, राम लक्ष्मण का संगीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: चित्रपट संगीत के अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, आगामी मंगलवार यानी 14 जुलाई को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम का इस बार का विषय होगा नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे मनीषा खापरडे, विषय वस्तु विशेषज्ञ मत्स्यकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 400-3482, 400-3483, 400-3484। रायपुर का SD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 14 जुलाई यानी इस मंगलवार को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण उसी दिन यानी मंगलवार को शाम 7:30 बजे किया जाएगा। तो हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। इस सूचना के बाद चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए 100 डेज फिल्म का गीत। लता मंगेशकर, SP बालसुब्रमण्यम की आवाज़ें हैं, दिलीप ताहिर के बोल राम लक्ष्मण का संगीत।

0: 100 डेज इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान

0: तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की
1: रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
4: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
6: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
7: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की ग्वो हन्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना लादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, 1 लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इस कार्यक्रम में आइए सुने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल से बातचीत।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में आशीष जी। सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं, सस्टेनेबिलिटी माइंडफुल कंजम्पशन अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग। ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सकें जो हमारे श्रोता सभी समझ पाए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है।
3: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहां वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी। और हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी, हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे, तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे
2: जी।
3: जिसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
2: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही अधूरी है आपके पूरे जो मुहिम की, उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
3: तो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेस वांट जो बोलते हैं
2: जी,
3: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी ही है, लेकिन कई बार हमारी चाहतें होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो। और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
2: तो आपने जो नीड्स और वांट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
3: बिल्कुल,
2: ये नीड और वांट का जो अंतर है, क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
3: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, कब वो जरूरत वांट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वांट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूँ, मुझे वहाँ 5x तक पहुँचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहाँ पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूँ कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूँ कि मुझे 5x तक पहुँचना है, क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या XYZ इन माई फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती है, पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं एक्स से 3x तक पहुंचा, तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, तुम उतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं, उस भड़ास को दबाने के लिए। किसी का वो भड़ास, फ्रस्ट्रेशन, वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं x से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब तुम 6 फिगर सैलरी कमा रहे हो तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशन होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूँ बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर। और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।
2: जी, तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है, आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
3: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होते हैं दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग। तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का इमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का इमिशन हो रहा है तो वहाँ अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में है तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह 1 कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं, तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम इंटू 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल हैं वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
2: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हरेक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था, जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं।
3: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5R का यूज करूंगा, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल। तो 5R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी देह है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता है ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें, तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है, तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती हैं। और वही वो प्लास्टिक भी जैसा हम लोग बोलते हैं ना, सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है, तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से, जो हमारे घर में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है, तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा। लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का, अगर इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
2: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न है उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा? तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने के ओर?
3: थोड़ा चैलेंजिंग होता है बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट जहां पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है जिसको अब अपर मिडिल क्लास बोलते हैं उसके ऊपर जो इलीट क्लास एफ्लुएंट क्लास होता है। तो आज के डेट में जितने भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इंप्रूव होगी। और आपकी अगर वेलबींग इंप्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
2: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरनमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जांपल्स देके?
3: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत मोटिवेटेड है, बहुत ब्लेस्ड भी है। और हमने देखा है कि दे वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है वे तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जींस बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जीन्स के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं?
2: So, आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
3: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया प्रोजेक्ट 333, जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
2: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते
3: हैं, जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रैवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज अगर, अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पॉर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीजें या 55 चीजें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सकें। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो दो तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
4: जी।
3: और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो वन टाइम प्लास्टिक, वन टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
2: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
3: तो इसमें दो तीन प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं, तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमिडिएटली, अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है उससे आपको इमिडिएटली पता चल जाए कि ये रियल में नीड है या वांट है। तो एक बार नीड वर्सेस वांट की चीज हो गई, तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वांट है, और फिर नीड है कि वांट है फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूं या खरीदती हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, तो 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशंस इनडायरेक्टली बचे।
2: जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था वही वांट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कम्पीट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वांट के, जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं, तो उससे हमें बचना है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है, और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है। जो पहले मैंने एक बार शेयर किया एक्स से 3x और 5x की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवास पे जिस चीज की जहाँ जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग,
2: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे। और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
3: बिल्कुल
2: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है?
3: 100% मैम। तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड, लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहाँ के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है। तो बोलते हैं ना मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
2: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है जिसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच, सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या है मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
3: तो जब भी हम लोग माइंडफुल और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आम तौर पे धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा
2: जी।
3: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे 1 पे छोटे छोटे एक्शंस लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना कई बार होता है कि डे 1 पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है। तो देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो। ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
2: जी,
3: कि वो सैकड़ों चीजें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहां वो किस चीज को

0: रेगुलेट कर सकता है और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस, क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
1: हमारे जो श्रोता हैं जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ

0: यूज़ कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रैवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रैवल। तो 12 एयर ट्रैवल करने से कम करके अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रैवल का बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
1: यस
0: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे
1: जी
0: वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही हैं, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा इमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं हमारे मेल्स में, हम लोग बहुत सारे लोग को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलती हैं वहां अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम इमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे इमिशंस बच सकते हैं।
1: जी
0: तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशंस हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रेवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और
0: हाँ,
1: एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे आईआईटी बॉम्बे के एक सर हैं सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं। तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का इमिशंस बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में इमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ, हाँ, तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की,
1: जी
0: लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जाम्पल के लिए, तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो इमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो, वो करने की जरूरत है। और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है वो।
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है
0: बिल्कुल,
1: कि हम योगदान दें, जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं।
0: सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है। क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो एनवायरनमेंट से अलाइंड होने चाहिए। ई एनवायरनमेंट, एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस, तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उस पर बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनीज पे फोकस कर रही है कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होता है ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं।
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहें कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डीक्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डीक्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो एक बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में?
0: तो इम्पॉर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते। या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है, इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन

0: की जरूरत है। किस मायने में कर सकते हैं? तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे, मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपनी अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इम्प्रूव करने की जरूरत है, उस चीज को इम्प्रूव करें। जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा। किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा। किसी को लगता है कि उसको बहुत इम्पल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की। तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है, और उसका जज वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है। जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बीइंग द चेंज वाला कॉम्पोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो हम लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है।
1: आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था स्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है। तो इट इज अ कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स। तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए। लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो है, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे। वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2 वीक 4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं। तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया। तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहाँ 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, सोशल चेंज मेकर, सब से ये समझने की कोशिश की कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा। तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज। तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला, कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा। और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया, और इस पे फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी। तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए। तो यहां से शुरुआत की, और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है। तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके।
1: आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए, और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें, ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे है हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा में 5 बजे आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: में ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अंकिता आप्टे।
2: नमस्कार, मैं अंकिता आप्टे और आज हमारे साथ है विख्यात तमाशा कलाकार रघुवीर खेड़कर। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। रघुवीर जी, तमाशा की विरासत जो है आपकी, वो अपने परिवार से आपको मिली है, अपने माता पिता दोनों ही तमाशा कलाकार थे, तो इस परंपरा के बारे में हमें बताइए और आपके बचपन के बारे में भी बताइए।
3: वैसा तो मेरा जन्म तमाशे में ही हुआ है। बम्बई का न्यू हनुमान थिएटर लालबाग, यहाँ 1961 में मेरा जन्म हुआ और दूसरे दिन मेरे को थिएटर में लाया गया। तो पांचवा दिन जो था वो हमारे मराठी में उसको पांचवी बोलते हैं, बालाची पांचवी, वो मेरा पांचवा दिन था। उसी दिन मेरे पिताजी के दोस्त माधवराव नगरकर, इनका तमाशा था, उनका वगनाट्य नाग प्रसन्न रघुवीर, इसका ओपनिंग था। तो ओपनिंग में उन्होंने वो जो बच्चा बनाते थे डॉल का, वो बच्चा लिए बगैर मेरे को जो लेके गए स्टेज पे, जन्म के पांचवी दिन मैं स्टेज पे गया। ये मेरा बचपन का पहला एंट्री था। बाद में 1964 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद माँ अकेली गिर गई। हम चार बच्चे थे, उसके माँ बाप थे, उसका भाई था, उसकी बहन थी, इनको सबको पोषना उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने तमाशा निकाला, जो मेरे शिक्षण के लिए मेरे पिताजी ने पैसे रखे थे 10,000 रुपए, वो 10,000 निकाल के तुकाराम खेड़कर यांचे चिरंजीव रघुवीर खेड़कर सर कांताबाई सातारकर तमाशा मंडल संगमनेर में ये तमाशे का उद्घाटन हुआ और मैं 9 साल का लड़का पे आया। वो मेरी दूसरी और पहली एंट्री।
2: तो आपकी पहली एंट्री के बारे में तो आपने बताया कि जन्म के बाद पांचवे दिन आप स्टेज पे थे, और ये जो दूसरी एंट्री थी जब आपने स्टेज पे पहली बार कदम रखा, तो वो अनुभव आपको याद है?
3: हाँ, मेरी माँ का बहुत बुरा हाल था, पैसे नहीं थे और हम चार बच्चों को पोसना माँ के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो माँ ने एक साल दूसरे तमाशे में नौकरी की, जो आनंद लोकनाट्य करके है वो तमाशे में, और फिर पैसे मिलने के बाद ये तमाशा निकाला। तो हमने सोचा, हम चारों बहन, की माँ को साथ देना चाहिए। तो मेरी बड़ी बहन अनीता ताई ये स्टेज पे नाचने लगी, दूसरी बहन अलका ताई ये स्टेज पे गाने लगी, फिर मैं भी स्टेज पे नाचने लगा। और हमारी छोटी बहन थी मंदा, वो बहुत ही छोटी थी, 4 साल की थी, वो कुछ कर नहीं पाती थी, तो उसको लेके हम साथ में घूमने के, और पहले ऐसा था सब कुटुम्ब साथ में रहने का तमाशे में, पहले ऐसे घर भीर नहीं थे हमारे, सिखाने पढ़ाने को जगह नहीं थी, तो हम सब साथ में, हमारे सबकी चौथी हो गई है।
2: रघुवीर जी, आपने सोंगाड़िया ये पात्र अपने खुद के लिए क्यों चुना? आपके इसके पीछे क्या सोच थी?
3: इसके पीछे ऐसी सोच थी, सोंगाड़िया तो मेरे पिताजी थे वो हीरो थे, मेरी माँ हीरोइन, और उनका जो स्टेज पे लगातार उनके जो प्रोग्राम होते थे, तो दर्शक जब प्रोग्राम छूटने के बाद उनको मिलने को आते थे, वाह बेहतरीन काम किया आज आपने, बहुत बेहतरीन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो मैं सुनने का, तो मैंने बड़ा होके मैं अगर हीरो का काम करूं तो भी लोग बोलेंगे करता है काम अच्छा मगर बाप के सरीका नहीं, इसलिए मैंने वो काम छोड़ के एक कॉमेडी पसंद की और मैं सोंगाड़िया बन गया।
2: रघुवीर जी, ये जो आप सारे पात्रों के बारे में हमें बता रहे हैं, सोंगाड़िया, हीरो, हीरोइन, ये सब तमाशा में कैसा दिखता है ये हमें बताइए ना।
3: बहुत भारी, तमाशा में वगनाट्य होता है, वगनाट्य बोले तो नाटक, नाटक में संगीत नहीं रहता, गाने नहीं रहते, और वगनाट्य में संगीत गाने रहते हैं, ये फर्क है नाटक में और वगनाट्य में। तो वगनाट्य में ऐसी स्टोरी होने की, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी होने की, राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी होने की, नवनाथ महाराज की स्टोरी होने की, सत्यवान सावित्री वो स्टोरी होने की, आई चकाली बोले तो माँ का कलेजा ये स्टोरी होने की, तो बहुत भारी था वो। और वो अभिनय ऐसे थे पुराने जमाने के लोगों की, सिनेमा में जैसे लोग देखते वैसा ही अभिनय स्टेज पे होता था, और मैं खुद वो देख के रोता था, ऐसा उनका अभिनय था।
2: रघुवीर जी, आपने अपना पूरा जीवन एक तमाशा कलाकार के रूप में रंगमंच पे बिताया है, तो ये सफर कैसा रहा बचपन से लेके अब तक सोंगाड़िया के पात्र को निभाना भी, और उसके इर्द गिर्द जो तमाशा आपने देखा रंगमंच से देखा, वो कैसा है?
3: रंगमंच में मैंने तो तमाशे के चार रूप बदलते हुए देखे हैं। पहला तमाशा जो पौराणिक वगनाट्य पे चलता था, दूसरा तमाशा ऐतिहासिक वगनाट्य पे चला, तीसरा तमाशा राजवाड़ी वगनाट्य पे चला, चौथा तमाशा सामाजिक वगनाट्य पे चला। तो ऐसे चार रूप मैंने तमाशे के देखे। मेरा जो दौर रहा तमाशे का वो बहुत अच्छा दौर था। मुझे बचपन से ही पब्लिक ने चुना था, मेरे कॉमेडी को बहुत पब्लिक हंसती थी। अगर मैं गंभीर भूमिका करूं फिर भी लोग हंसते थे, तो वो दौर बहुत अच्छा था।
2: रघुवीर जी, अभी आपने जिक्र किया कि सामाजिक कथाएं, सामाजिक मुद्दे तमाशा के रंगमंच से उठाना, ये भी एक दौर आपने देखा। और हाँ, ये आपने भी किया कि जो मुद्दे, हाँ, सामाजिक मुद्दे आपको लगा कि इनकी बातें होनी चाहिए, वो आपने आपके तमाशे के माध्यम से भी दिखाई। तो ये क्यों लगा आपको कि तमाशा जैसे माध्यम का उपयोग इन मुद्दों को उठाने के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए?
3: तमाशा बोले तो प्रबोधन का काम है। जब शिवाजी महाराज गनी में कावा करते थे, उसमें शायरी होती थी और शायरी के पेट में से ही तमाशा निकला। तो पहले से ही, यानी कि स्वतंत्र पूर्व काल से ही तमाशा प्रबोधन करते आया है। तमाशा ने सिखाया है, ऐसी बात मत करो जो तुम्हारे जान पे उठेगी, ऐसी बात करो कि जो 10 जाने बचाएंगी। ये तमाशे का उद्देश्य था। तमाशा पढ़ाने वाला था, अनपढ़ लोगों को तमाचा सिखाने का। तुम सीखो, प्रौढ़ शिक्षण चालू है, प्रौढ़ शिक्षण सीखो तो अक्षर तुमको आने चाहिए, ऐसा तमाशा ने सिखा है। और ये सामाजिक मुद्दे इसलिए तेज पे आए कि भाई ये लोगों ने जैसे गलत बात करी है, ये गलत बात तुमसे ना होना, क्योंकि तुम समाज के घटक हो, समाज सुधारक हो, तो समाज सुधारने होना और पूरे पृथ्वी पे महाराष्ट्र का और भारत का नाम रोशन होने होना, इसलिए हम सामाजिक वगनाट्य करते थे।
2: और रघुवीर जी, ये जो सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग आपने किए, तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसे होती थी? क्योंकि तमाशा का हमारे मन में जो चित्र होता है उससे ये थोड़ा सा हटके है, तो लोगों ने इसे कैसे लिया?
3: तमाशा लोगों की जान था। जब सिनेमा नहीं था, जब नाटक नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब टीवी नहीं था, जब तमाशा ही तमाशा था, तो लोग जिस दिन तमाशा आने वाला है उस दिन से दिन भर तमाशा का रास्ता देखते वो ग्राउंड पे खड़े रहते थे। तमाशा कब आएगा, तमाशा कब आएगा। और उनकी कर्मणु कोई थी, वो किसान लोग जो थे, जो अपन किसान बोलते हैं, किसानों का कला का जो चाहता प्रकार है वो तमाशा है।
2: तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग भी थे, वो भी लोगों ने उतने ही अप्रिशिएट किए जितना वो और तरीके के तमाशा वगनाट्य को करते थे?
3: हाँ।
2: आपने अभी जिक्र किया रघुवीर जी कि इंटरनेट है, टीवी है, ओटीटी है, और ये दौर ही इन सभी चीजों का है। और हम देखते हैं कि तमाशा जैसी लोक कलाएं जो है उनका महत्व कम हो रहा है, तो आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है?
3: देखिए, अभी शहरों के जो लोग हैं उनको ग्रामीण में क्या हो रहा है ये मालूम नहीं है, क्योंकि टीवी और मोबाइल में वो पूरे जा चुके हैं अंदर, और टीवी में जा चुके हैं, मोबाइल में जा चुके हैं, उनको बाहर देखने को टाइम नहीं है। तो आज भी तमाशे को पब्लिक उतना ही चाहती है जो 50 साल पहले चाहती। धूप रहती है, उसमें भी लोग सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक लोग तमाशा देते हैं। गाय इसी नहीं होता, फैन नहीं होता, खाली तंबू लगाया होता है छाव के लिए, और उस छाव में बैठकर लोग आज भी इनको तमाशा देखते हैं।
2: तमाशा का भविष्य आपको कैसे दिखता है?
3: तमाशा का भविष्य जो है, जैसे नाटक सुधर गया, जैसे सिनेमा सुधर गया है, वैसा तमाशा भी सुधरने लगा है। जब तक महाराष्ट्रीयन पब्लिक है, जब तक तमाशा जिंदा रहेगा, ये तो बात सूर्य नारायण जब तक है जब तक चलती ही रहेगी, खाली उसमें बदलाव आए।
2: कैसे बदलाव की आप बात कर रहे हैं रघुवीर जी, किस तरह के बदलाव?
3: इंटरनेट पे तमाशा जाएगा और आधुनिक यंत्र तमाशे में आएगी, आधुनिक वाद्य तमाशे में आएगा, आधुनिक गाना आएगा, ये सब जो अभी चल रहा है ये तमाशे में अभी आ चुका है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं। पहले इंस्ट्रूमेंट हाथ से बजाते थे, अब इंस्ट्रूमेंट बटन से बजाए जाते हैं। ऐसा सब बदलाव आ चुका है और आगे भी ऐसा बदलाव आएगा।
2: रघुवीर जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि तमाशा कलाकार को पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाला है, तो इस पहल से कौन कौन से सकारात्मक बदलाव तमाशा के क्षेत्र में आपको लगता है कि हो सकते हैं?
3: जब से ये पुकार हुई है 25 जनवरी को ये रघुवीर खेड़कर को पद्मश्री मिला है, जब से तमाचे में जो लोग आते हैं वो बहुत शांति से तमाचा सुन रहे हैं। मेरा तमाचा तो दो रोज लोग आते हैं तो बहुत शांति से सुन रहे हैं, बहुत शांति से देख रहे हैं, तालियां सिट्टियां बजाते हैं, जाते टाइम हाथवारे करते है, टाटा बाय बाय करते है, हमारी वीडियो निकालते है, हमारे साथ फोटो निकालते है, हमको धन्यवाद करते है। ये सब बदलाव आ चुका है 25 जनवरी के बाद।
2: रघुवीर जी, आपकी इस लंबी यात्रा को जब आप अब इस मकाम से पीछे मुड़ के देखते हैं, जो जिंदगी आपने जी, जो सोंगाड़िया के इतने सारे पात्र आपने निभाए इतने सारे वगनाट्यों में, तो क्या लगता है कैसी रही है ये जर्नी अब तक?
3: बहुत बेहतरीन रही है
2: रघुवीर जी। तमाशा कलाकारों को देखने का एक नजरिया थोड़ा सा अलग होता है।
3: आज अपन फिल्म देखते हैं, अपन रील देखते हैं, तो बच्चों के आंग पे पूरा बदन ढका हुआ नहीं होता है, फिर भी उनको लोग अभिनेत्री बोलते हैं। और ये जो तमाचे की नर्तिका रहती है ये नौवारी साड़ी में पूरी ढके रहती है, पूरी सजी रहती है, उसको लोग तमाचे वाली बोलते हैं। ये समाज है, अभी वो समाज जैसा चलेगा उसके पीछे जाना पड़ेगा।
2: तो इस फ्रंट पे भी आप कुछ बदलाव देख रहे हैं रघुवीर जी, कि अगर कुछ नजरिया बदल रहा है लोगों का या वो वही है?
3: नहीं नहीं बदला है, 1 महीने में पूरा नजरिया बदला है। मैंने हमारे साले सारे लोग जो है हमारे साथी तमाचे वाले उनको भी पूछा, मैं अपना ये पुरस्कार जाहिर होने के बाद तुम्हारे में क्या बदलाव आया, तुम्हारा प्रेक्षक क्या कर रहा है, तो बोल रहे बहुत अच्छे तमाचा देख रहे हैं, पहले सर के धींगाना बिंगाना बहुत करते नहीं, और भीड़ होती थी वो भीड़ में मारामारी होती थी और कुछ होता था वैसा कुछ करते नहीं, अभी बहुत अच्छा तमाचा देख रहे हैं, इतना बदलाव तो जरूर आया है ये पद्मश्री से।
2: रघुवीर जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है जो आपके क्षेत्र में आना चाहती है, या आप ही के क्षेत्र से उनके माँ बाप है और जो बच्चे हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, ये भी कभी कभी होता है, तो
3: होता है।
2: इस क्षेत्र में आना जो चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
3: जरूर आइए, क्योंकि ये अभी इसमें पद्मश्री मिल रहा है, अगर वो यहाँ आके करियर करे तो कुछ हो सकता है। अभी तमाचा कुछ ग्रामीण रहा नहीं, तमाचा भी बदल चुका है, पूरा तमाचा बदला हुआ है, तमाचे में रोजगार भी अच्छे मिलते हैं, पैसा रोजगार तमाचे में मिल रहा है और कला मिल रही है, सबसे ज्यादा तो कला मिल रही है। कला एक ऐसी चीज है मरे हुए आदमी को जिंदा रखती है, ऐसी कला है, कला के साथ अपनी उपजीविका भी वो याद कर सकते है और अपना नाम भी बहुत कर सकते हैं। यही मैं आने वाली नई जनरेशन को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जरूर तमाशे में भाग ले, इसका सुने ना, आप जरूर तमाशे में भाग ले, आप बड़े कलाकार हो जाए, बड़े बड़े पुरस्कारों के माननीय बन जाए, ऐसा मुझे लगता है।
2: रघुवीर जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अंकिता आप्टे। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
0: People's Padma on Akashvani।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती
1: और ये समय है प्रोग्राम रेडियो किड्स का। बच्चों की मुस्कान हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है और इसी खुशी को दुगना करने आए हैं आज हमारे साथ
2: रेडियो किड्स।
0: चलिए जानते हैं इन रेडियो किड्स के नाम।
3: मेरा नाम वंशिका है और मैं कक्षा छठी में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम दर्शिता है, मैं कक्षा थर्ड में हूँ।
5: मेरा नाम मोक्ष है, मैं कक्षा फोर्थ में हूँ।
1: आप सब कैसे हो?
6: हम सब ठीक है।
1: अब तो छुट्टियाँ खत्म हो गई और स्कूल भी खुल गए हैं। खुल गए हैं ना सबके स्कूल?
4: यस। हाँ हाँ जी दीदी, हमारे स्कूल खुल चुके हैं
1: और अब तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम्स भी आने वाले हैं। लेकिन सबके कुछ ना कुछ शौक होते हैं ना, तो चलो बताओ अपना अपना एक एक शौक। एक एक क्या, बहुत सारे शौक बताओ।
4: मेरा शौक तो चित्र बनाना, डांस करना और गाने गाने में है।
1: दर्शिता तुम भी बताओ।
7: मेरे शौक ये है कि मुझे स्विमिंग करना पसंद है, डांस करना पसंद है, पियानो बजाना पसंद है और हाइड एंड सीक खेलने में पसंद है।
1: और मोक्ष तुम क्यों चुप बैठे हो, तुम भी बता दो।
5: मेरे को रनिंग करना पसंद है, हाइड एंड सीक खेलना पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है।
7: दीदी मुझे तो स्विमिंग में ड्राइव मारनी भी आती है।
0: अब आप सब बताओ कि पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक पूरे करना क्यों जरूरी है?
7: पढ़ाई के साथ शौक भी बहुत जरूरी है। जब हम पढ़ाई करते करते बोर भी जाते हैं तो शौक भी तो बहुत जरूरी होते हैं।
4: दीदी।
0: हाँ वंशिका।
4: ज्यादा देर पढ़ाई करने से हमारा दिमाग थक जाता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे बाहर जाके खेलना चाहिए। उससे हमारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा और फिर हम और भी ज्यादा फोकस्ड पढ़ाई कर सकते हैं और ऐसा करने से हम जल्दी चीजें याद कर सकते हैं।
1: वंशिका ने तो बिल्कुल सही कहा। क्या लगता है मोक्ष, ऐसा करना चाहिए?
5: हाँ दीदी ऐसा करना चाहिए।
1: अच्छा, और खेलना और भी चीजों के लिए जरूरी है?
4: दीदी हमारी फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमें खेलना जरूरी है।
1: हाँ जब खेलेंगे तो क्या होंगे, हम फिजिकली
7: स्ट्रांग हो जाएंगे।
1: अरे दक्षिता को तो बहुत कुछ पता है।
7: मैं एक पोयम बोलना चाहती हूँ।
0: हाँ दक्षिता सुनाओ।
7: हे जगपालक हे भगवान, सबको दो सच्चा शुभ ज्ञान, हाथ जोड़ कर करे प्रणाम, करे तुम्हारा ही गुणगान, कभी किसी से झूठ न बोले, पहले सोचे फिर मुंह खोले, अपनी मीठी भाषा से हम कानों में भी रस घोले, दीन दुखी की मदद करे दिन, दो सबको ऐसा वरदान। थैंक यू।
1: अरे वाह दक्षिता, तुमने तो बहुत ही अच्छी सी कविता सुनाई।
0: अब एक प्यारा सा गीत सुन ले।
4: बिल्कुल।
1: अच्छा बताओ फिर कौन सा सुनोगी।

0: अच्छा, गीत कैसा लगा आप सबको?
1: बहुत ही अच्छा।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वंशिका बताओ, क्या पूछना चाहती हो तुम या क्या बताना चाहती हो तुम?
1: मैं तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर अचानक से हमारे सामने वाला बड़ा सा आम का पेड़ बोलने लग जाए तो हम उनसे क्या बातें करेंगे, और क्या तुम लोग भी उनसे बातें करना चाहते हो?
2: हाँ हाँ, बातें तो करेगी, लेकिन क्या बातें करेंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
0: अरे मोक्ष, कोई एकदम पेड़ बोलने लग जाएगा, तुम डरोगे नहीं?
2: नहीं दीदी, मैं नहीं डरूंगा।
0: वाह, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो।
2: अगर पेड़ बोलते और अगर हमें सुनते तो मैं उन्हें धन्यवाद देता, कहता शुक्रिया पेड़ भाई, जो तुम हमें साफ हवा और छाया देते हो और फल देते हो, और हमसे बदले में कुछ नहीं मांगते, माफी मांगता, सॉरी हम इंसानों ने तुम्हें काट कर घर बनाए, फैक्ट्री लगाई, अब हम गलती सुधारेंगे, हाल चाल पूछता, गर्मी में पानी मिल रहा है, कोई तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, कोई कीड़ा तो नहीं लगा, वादा करता आज से मैं हर साल कम से कम 2 पेड़ लगाऊंगा और दूसरों से भी लगवाऊंगा। उनकी कहानी सुनता, तुमने कितने मौसम देखे, कितने बच्चों को झूला झुलाया, बताओ ना पेड़ दादा।
0: मोक्ष, आप तो बहुत अच्छी बातें करोगे पेड़ के साथ। वंशिका तुम भी बताओ।
1: अगर हम पेड़ अचानक बातें करने लगा और हम उसके पास गए तो वो तो रो रहा ही होगा, क्योंकि इंसानों ने इतने पेड़ काटे हैं, उनको इतना दर्द दिया है, तो वो रोने लग जाते, तो फिर वो हमसे बोलते, ओ बच्चों तुम तो पेड़ लगाते हो पर कुछ मुझे काट देते हैं। मैं तो उनको बोलती कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पर मैं और मेरे 2 दोस्त मिलकर हर साल बहुत सारे पेड़ लगाएंगे।
0: वंशिका आपने तो बहुत अच्छी बातें बोली, तो हम अपने बर्थडे पर एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं, है ना? और पेड़ हमारी कितनी हेल्प करते हैं। अच्छा बताओ तो, पेड़ और वन हमें क्या क्या देते हैं?
2: पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं और छाया देते हैं धूप से बचाने के लिए।
0: और इतनी गर्मी में पेड़ों की छाया कितनी अच्छी लगती है ना?
1: हाँ, हमें बहुत ज्यादा ठंडी हवा मिलती है।
0: दक्षिता आप क्यों चुप हो, आप भी बताओ कुछ।
3: अगर मुझे पेड़ मिलेगा तो मैं उस पेड़ को बोलूंगी, शुक्रिया पेड़ कि तुम हमें इतनी अच्छी हवा देते हो, इतनी अच्छी छाया देते हो, हमें फल सब्जियां देते हो और हमें ऑक्सीजन देते हो, थैंक यू पेड़ हमें उन सारी चीजों के लिए।
0: दक्षिता आप एक कविता लाए हो ना?
3: हाँ,
0: सुना दो फिर।
3: मैं हूँ पेड़ मुझे मत काटो, टुकड़ों टुकड़ों में मत बांटो, दर्द मुझे भी होता है, मेरा मन भी रोता है।
0: बहुत अच्छी कविता थी दक्षिता तुम्हारी।
2: मैं भी कविता सुनाना चाहता हूँ दीदी। पेड़ हमारे साथी है, पेड़ हमारे साथी है, छाया हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, मीठे फल भी देते हैं, पेड़ कितने जरूरी है फिर भी बेचारे कटते हैं, हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे।
0: अच्छा ये तो बताओ, आज हम वन और पेड़ों की बातें क्यों कर रहे हैं?
1: मैं बताऊं?
0: हाँ बताओ वंशिका।
1: 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव था। हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। वन महोत्सव का उद्देश्य वनों के कटाव को रोकना, हरियाली बढ़ाना और नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना।
0: बातें तो हमने बहुत सारी कर ली, अब एक प्यारा सा गीत सुन ले।
1: हाँ, हमें बिल्कुल एक गाना सुनना है।

0: आप सबको गीत कैसा लगा?
1: बहुत ही अच्छा।
0: अच्छा बताओ, समर वेकेशन में आप सब कहाँ कहाँ गए थे?
1: मैं बताती हूँ, मैं अपने दादी नानी के घर घूमने गई थी। वहाँ मैंने अपनी दादी नानी से बहुत सारी बातें करी। मैंने अपनी दादी के साथ पेड़ लगाए थे।
0: वंशिका, तो बहुत इंजॉय करके आई अपनी समर वेकेशन में। दर्शिता, तुम क्यों चुप बैठी हो? तुम भी बताओ, तुम कहाँ गई थी?
2: मेरे पापा और मम्मा और मेरी दादी और दादू साथ में मेरे साथ वाटर पार्क गए।
0: मोक्ष, अपनी समर वेकेशन में कहाँ कहाँ गए थे?
3: मैं अपनी नानी के घर गया था।
0: और क्या सीखा आपने अपनी नानी से? नानी ने कहानियाँ तो सुनाई होंगी। सुनाई थी?
3: हाँ सुनाई थी।
0: तो बताओ, नानी और दादी की जो सीख होती है हमें क्या सिखाती है? पहले बताएगा मोक्ष।
3: सबर रखना, नानी कहती है जल्दी का काम शैतान का होता है। कोई भी काम आराम से सबर से करो तो अच्छा होता है। इज्जत करना, बड़ों के पैर छूना, थैंक यू प्लीज बोलना, किसी को बीच में ना टोकना, ये सारी मैनर्स नानी से सीखते हैं। नानी हमें सिखाती है सुबह जल्दी उठो, ताजी ताजी हवा में सैर करो, पूरा दिन अच्छा जाता है, बॉडी में फुर्ती रहती है।
0: मोक्ष, आप तो अपनी नानी के घर से बहुत अच्छी बातें सीख कर आए हो। वंशिका, आप भी बताओ।
1: मेरी दादी और नानी ने मुझे कहानियाँ सुनाई, जैसे राजा रानी, परियों और पंचतंत्र की कहानियों से हमें समझदारी और संस्कार मिलते हैं। उन्होंने एक चीज और सिखाई, रिश्तों को जोड़ के रखना, त्योहार पर सबको बुलाना, फोन करके हालचाल लेना, छोटे बड़े से प्यार से बात करना और सबका आदर करना।
0: अरे वाह वंशिका,
2: मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ।
0: सुनाओ दर्शिता।

0: कैसा लगा दर्शिता गीत?
1: बहुत ही अच्छा।
0: मोक्ष, तुम्हें कैसा लगा?
2: बहुत ही अच्छा।
3: अब समय हो गया है अपने श्रोताओं से अनुमति लेने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे,
0: तब तक के लिए
4: बाय।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो किड्स, और इस कार्यक्रम में जो भाग लेने वाले बच्चे थे वंशिका, मोक्ष और दर्शिता। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को अब तक सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मूज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान के ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मूज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके अंतर्गत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि फू क्वॉक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के 3रे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 177 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। उधर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिगर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कुछ फिल्मी नगमे और आपसे थोड़ी बहुत बातें। जी हाँ, पहला जो नगमा हमने लिया है फिल्म है आपकी कसम। ये फिल्म आई थी 1974 में और जो नगमा हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लीजिए सुनिए अगला नगमा फिल्म अनोखी अदा से, स्वर है किशोर कुमार का। सनम आपका।

0: जी हाँ, 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है और आप सुनेंगे 5:10 पर गाते गुनगुनाते यहीं मेरे साथ। जी हाँ, उसके बाद हम आप तक पहुंचाएंगे एक खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी 5:30 पर। लीजिए सुनिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार।
1: वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट न्यूज, योर अल्टीमेट गेटवे टू करियर सक्सेस। आई एम लूसी गैब्रियल एंड आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू द लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट अपडेट्स टू हेल्प यू नेविगेट द कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट। We begin with the National Sports University NSU Imphal under the Ministry of Youth Affairs and Sports has invited applications for various teaching and non-teaching posts. The vacancies include Professor, Associate Professor and Assistant Professor in Physical Education, Sports Medicine and Sports Coaching, Athletics. Non-teaching vacancies include Deputy Controller of Examination, Section Officer, Assistant Section Officer, Accountant, Assistant Librarian, Private Secretary, Library Assistant, Physiotherapist and Nursing Attendant. Eligible candidates must submit their applications along with supporting documents by 31st July 2026 to the Registrar, National Sports University, Imphal. Submission of the hard copy is mandatory, even if the application is sent by email. Detailed eligibility criteria and application forms available at the website, that is at www.nsu.ac.in. I repeat the website, it is www.nsu.ac.in. The ICAR, National Bureau of Plant Genetic Resources, New Delhi, has invited eligible candidates to attend a walk-in interview for one project assistant under a Department of Biotechnology DBT-funded project on wheat titled Germplasm Characterization and Trait Discovery in Wheat Using Genomics Approaches and Its Integration for Improving Climate Resilience, Productivity and Nutritional Quality. The project is valid up to 28th February 2027. The selected candidates will receive 20,000 rupees plus 27% of HRA with experience-based increments as per project norms. The walk-in interview will be held on 28th July 2026 at Division of Genomics Resources, Room G206, ICAR-NBPGR, Pusa Campus, New Delhi. The upper age limit is 50 years, with relaxations for reserved categories as per government rules. Rail coach factory Kapurthala has invited applications from eligible Indian citizens for recruitment against the sports quota for the year 2026-27. The recruitment includes one post in level 4-5 and seven posts in level 2. The last date for submission of applications is 14th July 2026. Detailed eligibility criteria, sports disciplines and application procedure is available on the RCF website. For details, do look up www.rcf.indianrailways.gov.in under the Staff Corner Recruitment section. Indian Institute of Management, IIM Shillong, has invited online applications for several administrative positions including Deputy General Manager, Knowledge Services, Deputy General Manager, Alumni Relations, Senior Manager, Audit, Manager, Academics, Manager, Accreditation, Assistant Manager, IT Infrastructure and Assistant Manager, Mechanical Infrastructure. Most positions are on a 5-year contractual tenure, renewable based on performance, with pay levels ranging from level 6 to level 12 as per the academic pay matrix. The last day to submit online applications is 20th July 2026. Detailed eligibility criteria, qualifications and application procedure is available on the institute's website. That is at www.iimshillong.ac.in. I repeat the website, it is www.iimshillong.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
2: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न तथा प्रमुख पेशेवर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जो अपने पंचकुला यूनिट के लिए इन पदों हेतु आवेदन आमंत्रित कर रही है। वरिष्ठ अभियंता, रिक्तियों की संख्या एक, वरिष्ठ सहायक अभियंता, भूतपूर्व सैनिक, रिक्तियों की संख्या पांच, वरिष्ठ सहायक अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक, पद एक, और परियोजना अभियंता रसायन शास्त्र, पदों की संख्या एक। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन के लिए देख सकते हैं वेबसाइट www.bel-india.in। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो प्रतिनियुक्ति के आधार पर इन पदों को भरना चाहता है और आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद हैं प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, रिक्तियों की संख्या एक, पुलिस अधीक्षक तीन रिक्तियां, सहायक निदेशक तीन रिक्तियां, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी प्रथम हथियार, रिक्तियों की संख्या एक, कनिष्ठ विश्लेषक, रिक्त पदों की संख्या एक, कंप्यूटर ऑपरेटर, रिक्तियों की संख्या एक, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, रिक्त पदों की संख्या एक, वरिष्ठ अन्वेषक, रिक्तियां एक, अनुसंधान सहायक तीन रिक्तियां, स्टेनोग्राफर ग्रेड वन पांच रिक्तियां, कनिष्ठ अन्वेषक दो रिक्तियां, जूनियर लेखाकार एक रिक्ति, उपनिरीक्षक एक रिक्ति और कांस्टेबल चार रिक्तियां। ये सभी रिक्तियां बीपीआर एवं डी नई दिल्ली के लिए हैं, जबकि सीएपीटी भोपाल के लिए इन रिक्तियों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षक रिक्त पदों की संख्या सात, ड्रिल प्रशिक्षक रिक्त पदों की संख्या छह, इंस्पेक्टर लाइंस एक पद, इंस्पेक्टर डेमो एक पद, प्रशिक्षण सहायक चार पद, कंप्यूटर ऑपरेटर एक पद, उपनिरीक्षक एक पद, स्टेनोग्राफर श्रेणी तृतीय पांच पद, हेड कांस्टेबल दस पद, ट्रेड्समैन दस पद, कांस्टेबल बारह रिक्तियां और डाटा एंट्री ऑपरेटर दो रिक्तियां। इसके अतिरिक्त चालक ग्यारह रिक्तियां, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी छह रिक्तियां और कांस्टेबल डेमो प्लाटून दो रिक्तियां। CDTI कोलकाता के लिए रिक्तियां हैं पुलिस निरीक्षक दो रिक्तियां और कांस्टेबल छह रिक्तियां। CDTI जयपुर के लिए निदेशक एक रिक्ति, उप पुलिस अधीक्षक इंस्ट्रक्टर दो रिक्तियां, इंस्पेक्टर चार रिक्तियां, डिस्पैच राइडर एक रिक्ति, कांस्टेबल आठ रिक्तियां। CDTI गाजियाबाद के लिए उप पुलिस निरीक्षक तीन रिक्तियां, इंस्पेक्टर तीन रिक्तियां और कांस्टेबल पंद्रह रिक्तियां। CDTI हैदराबाद के लिए उप प्रधानाचार्य एक रिक्ति, आशुलिपिक ग्रेड वन एक रिक्ति, UDC एक रिक्ति और कांस्टेबल तीन रिक्तियां। CDTI चंडीगढ़ के लिए उप पुलिस अधीक्षक एक रिक्ति और इंस्पेक्टर एक रिक्ति। प्रत्येक पद के लिए पात्रता मानदंड का विवरण पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.bprd.nic.in। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ईमेल का पता भी आप नोट कर सकते हैं, ईमेल है ad.estab@bprd.nic.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी उत्तर प्रदेश आमंत्रित कर रहा है विमान अनुरक्षण अभियंता के एक पद के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट igrua.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
3: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार।
4: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
5: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। हर दिन की तरह आज भी हम आपको कराएंगे देश दुनिया की परिक्रमा। बात होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की, खेल जगत की हलचलों की और उन विशिष्ट हस्तियों की जिनकी आज जयंती, पुण्यतिथि या जन्मदिन है। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शगुन चोपड़ा। श्रोताओं, कहा जाता है कि उम्मीद ही वह ताकत है जो हर नई शुरुआत का आधार बनती है। यही उम्मीद इंसान को चुनौतियों से लड़ने का साहस देती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। आज जब दुनिया अंतर्राष्ट्रीय उम्मीद दिवस मना रही है, तो शगुन आइए हम भी सकारात्मक सोच और नए विश्वास के साथ आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं।
6: Well, how true is that? Namaskar to you, Vaishnavi, and to our listeners. Namaskar. Good day, everybody. This is Parikrama on Akashvani Gold on 100.1 megahertz. Well, as the world slows into the calm of the evening, we bring you a thoughtful journey through the day's most important developments in today's edition of Parikrama. We begin with the top headlines, followed by insightful discussions that explore the issues beyond the news. And you told about one of the topics, International Day of Hope. And we'll bring you ground reports and special capsules also. They offer fresh perspectives. And as always, we pause to remember and celebrate remarkable personalities whose lives and contributions have left a lasting imprint on our society and on our minds. With that, there shouldn't be further delay. Let's start with the headlines first.
5: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता व्यक्त की।
6: Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand.
5: गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
6: Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating private provident fund trust to regularize their status.
5: Wimbledon tennis में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव होंगे आमने सामने।
6: In FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. Let's begin our segment. Discussion segment, Dateline India. The first topic itself, let's start with it. Gagan, navigating India's skies with precision, and the other topic will follow. So Gagan, or GPS-aided geo augmented navigation, is India's indigenous satellite-based augmentation system developed by the Indian Space Research Organization, ISRO, and the Airports Authority of India. So Vaishnavi, it enhances GPS accuracy, it provides integrity, information for safer aircraft navigation as well. And well, it is certified to international standards. So Gagan supports satellite-based landing. It serves sectors beyond aviation. And this is how it does it. It does it by strengthening indigenous navigation capabilities. Gagan reinforces India's vision of technological self-reliance and global leadership in satellite navigation.
5: जी, और शगुन, अगर हम नेविगेशन के बारे में देखें तो हवाई यात्रा में नेविगेशन की सटीकता बेहद अहम होती है, क्योंकि विमान की स्थिति बताने में जरा सी भी चूक उड़ान की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। हालांकि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी GPS विमान की लोकेशन बताने में मदद करता है, लेकिन मौसम और अन्य तकनीकी कारणों से इसके सिग्नल कभी कभी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में तेजी से बढ़ते भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता थी जो नेविगेशन को और अधिक सटीक, सुरक्षित और भरोसेमंद बना सके।
6: And Vaishnavi, to address this particular need, the Indian Space Research Organization and the Airports Authority of India, they jointly developed the GPS-aided geo-augmentation navigation. This is Gagan system. This is the satellite-based augmentation system, a technology that improves GPS by providing real-time correction and integrity information. Integrity information, it alerts pilots if a GPS signal is unsuitable for navigation. How important. Mm-hmm. And the Gagan project, if we add more there, it has been fully operational since the year 2015 and it's 2026 now. It has placed India among a select group of countries with an operational this satellite-based augmentation system alongside United States, Europe and Japan. And today, Gagan supports safer aircraft operations across Indian airspace. And listeners, it has applications beyond aviation. It strengthens India's navigation capability, advances the country's vision of Atmanirbhar Bharat. And since its launch, if we talk about this particular point as well, let's elaborate. Gagan has steadily evolved into a globally recognized navigational satellite. And over the years, it has achieved key certifications and operational milestones. So its latest achievement came in June 2026, when the Directorate General of Civil Aviation, the DGCA, successfully conducted India's first satellite-based landing system approach on a commercial jet aircraft using Gagan.
7: शगुन अगर व्यापक स्तर पे अगर हम गगन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो यहाँ बताना चाहूंगी कि जमीनी स्टेशनों संचार प्रणाली और जियो स्टेशनरी उपग्रहों के एक समन्वित नेटवर्क के माध्यम से गगन काम करता है ये नेटवर्क लगातार जीपीएस सिग्नलों की निगरानी करता है उनमें आवश्यक सुधार करता है और बेहतर नेविगेशन संबंधी जानकारी सीधे विमानों तक पहुंचाता है इससे उड़ानें अधिक सुरक्षित और सटीक बनती है साथ ही उपग्रह आधारित विमानन सेवाओं में भारत की तकनीकी क्षमता भी और मजबूत होती है
6: That is true.
7: और श्रोताओं गगन भारत के व्यापक सैटेलाइट नेविगेशन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसके साथ ही भारत ने अपना स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम नाविक भी विकसित किया है जहां नाविक पोजीशनिंग नेविगेशन और समय संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराता है वहीं गगन जीपीएस सिग्नलों को और अधिक सटीक बनाकर विमानों की सुरक्षित नेविगेशन और लैंडिंग सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है
6: एंड इन दिस वे Gagan will continue to strengthen India's satellite navigation ecosystem by supporting safer air navigation and improving air traffic management. Third one being expanding satellite-based navigation services across the country. And you were talking about NAVIC. So alongside NAVIC, it will play an important role in advancing indigenous navigation technologies and thereby reducing dependence on foreign systems. We were talking about Atmanirbhar Bharat as well, with growing applications in transportation, disaster management, surveying and other sectors. Gagan is poised to remain a key pillar of India's journey towards a connected, self-reliant and technology-driven future. True?
7: Gee.
6: Now we may proceed. It's also International Day of Hope. Vaishnavi was telling us about it in the beginning. So, let us begin with the growing unrest. The world is facing growing, there is unrest in the world, widening social divisions as well, persistent economic and environmental challenges. So, the global community continues to seek values that unite rather than divide. And among these, hope stands out as a deeply powerful and universally resonant force. So recognizing this, the United Nations General Assembly has designated 12th of July as the...
7: साथ ही सामाजिक सद्भाव, आपसी सम्मान और सतत विकास में उम्मीद की अहम भूमिका को भी रेखांकित करता है। अब शगुन, मेरा तो ऐसा मानना है कि जिंदगी में ऐसे पल हर किसी के सामने आते हैं जब आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत किसी सहारे से नहीं होती बल्कि उम्मीद से मिलती है
6: जी।
7: और वैसे ही कुछ मनोवैज्ञानिक सीयर स्नाइडर भी कहते हैं उनके अनुसार उम्मीद केवल एक भावना नहीं बल्कि दो बातों का मेल है पहला अपने लक्ष्य तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प और उसे पाने के रास्ते तलाशने की क्षमता वहीं वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि उम्मीद हमारे मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करती है जो सकारात्मक सोच और प्रेरणा से जुड़े होते हैं यही वजह है श्रोताओं की उम्मीद को मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है
6: एंड डोंट यू थिंक होप इज अ रिमाइंडर दैट इवन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी Hope remains one of humanity's, hope is actually one of humanity's greatest strengths. Don't you think so?
7: Bilkul.
6: It resonates with me a lot. And affirming that hope is not, it is not merely an emotion. I don't think so. It is a powerful catalyst for positive change. The World Health Organization defined mental health as the ability to manage stress, work productively, and contribute to one's community. Research consistently shows that higher levels of hope are associated with lower rates of depression, anxiety, and trauma-related stress as well. So hope plays a vital role in advancing the Sustainable Development Goals. So the UN Declaration, let's coming back on it, of the International Day of Hope is more than symbolic. It is a global invitation to act. It calls on member states, regional and international bodies, civil society and individuals to cultivate environments where hope can thrive. And these efforts, they may include public education, they may include the awareness campaigns, if community outreach programs, acts of kindness and the promotion of forgiveness and reconciliation. By embracing these values, societies, they can foster inclusion, they can foster empathy and resilience. Right?
7: आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय उम्मीद दिवस हमें ये याद दिलाता है शगुन कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है. यही उम्मीद लोगों को जोड़ती है, समाज को मजबूत बनाती है और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का विश्वास देती है. इसलिए ये दिन हम सभी को एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है जिसकी नींव विश्वास, सहयोग और इंसानियत पर टिकी हो. क्यों शगुन?
6: Well, I think so. And in simple words, if I define hope, it is the confidence that tomorrow will be better than today.
7: बिल्कुल, इससे ही इससे अच्छा कोई definition नहीं होगा मेरे ख्याल से.
6: And even if I make it even more simple for our listeners, I think the last 5 minutes can be better than the last 5 minutes that passed away. I think the coming 5 minutes will be better than those 5 minutes. This is how I define, and this is how I function, right? So these psychological benefits, they are mirrored in physical health. Cancer patients with

0: higher hope they report better survival rates and stronger adherence to treatment. Hope in early adulthood is associated with healthier long-term outcomes, and sustained hope correlates with fewer emergency room visits, right? This is what we want. Fewer emergency room visits and reduced short-term mortality. Hope is a powerful force for both personal recovery and collective resilience. It fosters social trust, encourages civic participation, and these qualities are, they support inclusion, peace, sustainable progress, core aspects of the public good, and central to sustainable development goals, which are peace, justice, and strong institutions. The International Day of Hope reminds us that hope is not only a personal virtue, it is actually a collective responsibility. Don't you think so? It's a collective responsibility.
1: Jee.
0: There is no peace without hope, no development Bilkul. Without trust, and no future without belief in one.
2: श्रोताओ, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या खास है.
0: So Vaishnavi, we'll first head to Andhra Pradesh. So the Andhra Pradesh government has taken a major step towards modernizing its tourism sector with an ambitious initiative to make the state the country's first artificial intelligence-powered tourism destination. This initiative is aimed at improving the travel experience through advanced digital technology while making information on the state's rich heritage easily accessible to visitors from across India and abroad. We have a detailed report on this from our correspondent. Let's listen in.
3: Andhra Pradesh Tourism Authority has entered into a 3-year strategic partnership with travel technology company Explurger to roll out the Nevu AI platform across the state. Under the initiative, QR codes will be installed in faces at more than 100 prominent tourist and pilgrimage destinations. By scanning the QR codes, visitors will be able to interact with the AI platform through voice or text and receive information on the history, culture, and significance of each destination in more than 130 languages. The service will be provided free of cost and will not require users to download a separate mobile application. State Tourism Minister Kandula Durges said a pilot project at the Mangaligiri Lakshmi Narasimha Swami Temple has received a positive response from devotees. He added that the platform will also provide real-time analytics to help the government understand visitor preferences and strengthen tourism planning. Describing the initiative as a key step towards the Swarnandhra Vision 2047, he said it would help position Andhra Pradesh as a technology-driven and globally competitive टूरिज्म डेस्टिनेशन. अल्लू मुरली, आकाशवाणी न्यूज, विजयवाड़ा.
2: अब रुक करते हैं महाराष्ट्र के ओर, जहां पे महाराष्ट्र सहित पूरे देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR यानी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया फिलहाल जारी है. महाराष्ट्र में ये प्रक्रिया 30 जून से शुरू हो चुकी है, जिसके अंतर्गत 29 जुलाई तक बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और उनसे फॉर्म भरवाएंगे. इसी बीच कोंकण के एक छोटे से गांव मोजे टेरेव बुद्रुक ने ये प्रक्रिया 100% पूरी कर ली है. अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारी मुंबई संवाददाता के पास.
4: रत्नागिरी जिले की चिपळूण तहसील का मौजे टेरव बुद्रुक गांव SIR की प्रक्रिया पूरी करने वाला महाराष्ट्र का पहला गांव बन चुका है. इस गांव में कुल 195 मतदाता है, जिसमें 93 महिलाएं और 102 पुरुष है. बूथ लेवल ऑफिसरों ने हर घर जाकर डिजिटल प्रणाली का उपयोग करते हुए सटीकता के साथ निर्धारित समय से पहले ही SIR प्रक्रिया पूरी कर ली है. इसके बारे में हमें बता रहे हैं चिपळूण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी आकाश लिगाड़े.
5: ये लोग को इस प्रोसेस में क्या तकलीफ आ जाती है, ये जानने के लिए हमने एक गांव का SIR की प्रक्रिया पूरा करने का निश्चय किया. उसमें हमने 265 चिपळूण असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 13 बुद्रुक को सिलेक्ट किया. ये सिलेक्ट करने का मकसद ये था कि वहाँ पे 195 वोटर्स थे और 195 वोटर में से 192 का मैपिंग PSIR एक्टिविटी में हो चुका था. ये गांव सिलेक्ट करने के बाद हमारे BLO पटवारी है वो और आंगनबाड़ी सेविका इनके माध्यम
6: बीच में कभी कभी आया करो ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा.
2: इसी के साथ SIR प्रक्रिया के तहत मौजे
4: टेरव बुद्रुक की मतदाता सूची पूरी तरह से दोषमुक्त और अद्यतन कर दी गई है। इस उपलब्धि के लिए इस गांव के साथ ही पूरी चुनावी मशीनरी की भी सराहना हो रही है। परिक्रमा के लिए रत्नागिरी से अनिकेत कोनकर के साथ मुंबई से मैं अंकिता आप्टे।
1: From Mumbai, we proceed. We'll go down south. Kerala Institute for Research, Training and Development Studies of Scheduled Caste and Scheduled Tribes has been awarded the best tribal research center in the country. Well, we have a detailed report from our correspondent.
7: The national award by the Ministry of Tribal Affairs given to the tribal research centers in the country has been awarded to Kozhikode Kirthad. The Union Ministry of Tribal Affairs selected Kirthad in Kerala as the best institution among the tribal research centers in various states based on its performance in the last 3 years. This year's projects, policy, interventions, research and training activities, development studies and comprehensive interventions related to tribal welfare. The institution, which started its operations in 1972 as a tribal research and training center, was recognized as Kirthad in 1979. Today, Kirthad is a special directorate that works for research, development studies, training and academic support required for policy formulation for the scheduled castes and scheduled tribes. One of the most important social research institutes of the government of Kerala, Kirthad has various departments including research studies, development studies, training programs, evaluation studies, support for doctoral research, language studies, statistical analysis, cartography and a tribal heritage museum. Kirthad has a rich collection of books in the field of social sciences. An extensive library is one of the main features of the institution. Kirthad also has a museum and open-air theatre. Adjacent to this, the Tribal Studies Museum has an exhibition of weapons and tools used by tribals in ancient times and a wide range of books and other materials written in anthropology and social sciences. Kirthad provides training through the Adigala Kendra to bring tribal arts and traditional dances to the new generation. Kirthad's director, Dr. Bindu S., received the national recognition from Ranjana Chopra, Secretary, Ministry of Tribal Affairs at the National Tribal Research Center's workshop in Bhubaneswar, Odisha. The Union Ministry, assessing that the activities being carried out by Kirthad in Kerala can serve as a model for other tribal research centers in the country, has declared Kerala as a Mentor Tribal Research Center. This achievement is proof that Kerala's academic excellence, research capacity and commitment to tribal development have been once again recognized at the national level. Suresh VK for Parikrama, Akashvani News, Kozhikode.
8: शगुन अब श्रोताओं को लेकर चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहाँ की ताजा हलचल।
9: So, Vaishnavi, let's begin with FIFA World Cup.
8: Jee.
9: So, England booked their semi-final berth with a 2-1 extra time win over Norway, while Argentina entered semi-final, defeating Switzerland 3-1 this morning. So, in the first semi-final, France and Spain will face off on Wednesday. The match will kick off at 12:30 a.m. IST. France reached the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the quarter-finals, while Spain advanced with a hard-fought 2-1 victory over Belgium.
8: और टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। वहीं महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मलोगनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोव्स्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। बात उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जो आज ही के दिन इस दुनिया में

0: and A Song of Despair in 1924. So he also occupied many diplomatic positions in various countries during his lifetime and served a term as a senator of the Chilean Communist Party as well. And, well, he has been there in the poetic scene from a very long time, and I was telling you about Pablo Neruda.
1: श्रद्धा क्या आपको याद है हिंदी सिनेमा का वो अभिनेता जिसने खलनायकी को एक नई पहचान दी और बाद में अपने सशक्त चरित्र अभिनय से भी दर्शकों का भरपूर प्यार पाया जी हाँ हम बात कर रहे हैं महान अभिनेता प्राण की
0: वाओ यस
1: ऐसे तो प्राण का पूरा नाम था प्राण कृष्ण सिकंद उन्होंने अपने फिल्मी सफर में लगभग 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और खलनायक की परिभाषा ही बदल दी
0: जी
1: बाद के वर्षों में उन्होंने सकारात्मक और चरित्र भूमिकाओं में भी उतनी ही लोकप्रियता हासिल की उनके यादगार फिल्मों में उपकार जंजीर पूरब और पश्चिम राम और श्याम डॉन अमर अकबर एंथनी और विक्टोरिया नंबर 203 शामिल है उपकार के मलंग चाचा के रूप में प्राण साहब ने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी थी आइए अब उसी फिल्म का एक ऐसा गीत सुनते हैं जिसके बोल आज भी उतने ही अर्थपूर्ण और प्रासंगिक लगते हैं पेश है कस्मे वादे प्यार वफा

0: आज हम दारा सिंह को भी याद कर रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे विश्व विख्यात पहलवान, अभिनेता और राजनेता थे। कुश्ती की दुनिया में उन्होंने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया और लंबे समय तक अपराजित रहे। उन्होंने किंग कॉन्ग, मेरा नाम जोकर, आनंद, धर्म करम और कई अन्य फिल्मों में भी अभिनय किया था, लेकिन उन्हें घर घर में सबसे अधिक लोकप्रियता रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में हनुमान की भूमिका से मिली थी। और श्रोता, क्या आप जानते हैं हिंदी सिनेमा में जुबली कुमार के नाम से किस अभिनेता को जाना जाता था? जरा सोचिए थोड़ा पहले, फिर बताते हैं। श्रोता, ये सम्मान मिला था सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार को।
1: यस,
0: वे हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। 1960 के दशक में उनकी फिल्मों की लगातार सफलता ने उन्हें जुबली कुमार का खिताब दिलाया था। उनकी चर्चित फिल्मों में मदर इंडिया, दिल एक मंदिर, संगम, आरजू, झुक गया आसमान, सूरज और तलाश शामिल है। अपनी सहज अदाकारी और भावपूर्ण अभिनय के कारण वे लाखों दर्शकों के लोकप्रिय बने रहे थे। आइए अब उनकी एक यादगार फिल्म का आपको एक मधुर गीत सुनाते हैं।

भारतीय सिनेमा में कुछ निर्देशकों ने केवल फिल्में नहीं बनाई बल्कि समाज की सच्चाइयों को पर्दे पर इस तरह उतारा कि वे हमेशा के लिए अमर हो गई। ऐसे महान फिल्मकार थे बिमल राय। आज ही के दिन 1909 में जन्मे बिमल राय हिंदी और बांग्ला सिनेमा के महान निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक थे। शगुन, अब इनकी बात हो ही रही है तो आइए आपको कौन सा नगमा सुनाता हूं मैं, आइए सुनते हैं।

कुछ कलाकार अपनी आवाज से दिल जीते हैं तो कुछ अपने अभिनय से, और ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं सुलक्षणा पंडित। आइए आपको सुनाते हैं उनकी आवाज में सजा एक खूबसूरत गीत।

0: श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो वैष्णवी और शगुन को अनुमति दे दीजिए, परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
2: मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में ही। ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोर, केसर, छतौली, इंजानी, बोरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये मकनपुर, नवाडी, पोड़िपा, पेंडारी, सिंघरा, भरदा, गौरा, मदन नगर, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 9 है। ये अखोरा, कुंडीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, चिनिया, कनक पुर, डकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 9 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड़, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, बोरिमा, कुदारीडी, केसरा, सरभंजा, ललिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के दुलदुला, तपकरा, पत्थलगांव, कासाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये धूरी अंबा, करडेगा, केंदापानी, मधुटोली, सेमरताल, साजबहार, बामनमारा, जमुना, खड़ामाचा, हरदी झरिया, पीठा आमा, महेशपुर, चेटबा, मड़िया झरिया, सोनाजोरी, झिक्की, परसाडाण, कुरडेग, सामरबार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 92 है। ये महाराजगंज, बंगरसूता, कुड़ेकेला, बोजिया, सिंघीछा, बनहर, लोटान, कंचीरा, पोटिया, आमगांव, झगरपुर, सागर पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कटकोना और जिलगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। कटघोरा वन मंडल के केंदई, एतमानगर और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कुदवारी, भूड़ूपानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सिमरहा, बोकरा मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 56 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, तालदादर, पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार, ताराझर, कुरवा पानी, खोला पारा, छिंदौला, लूठा पारा, फरसरा, बोडापाला, जारन डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

आयोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण। आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। स्वर धरोहर कार्यक्रम होगा रात 8:15 पर। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:30 पर। अखिल भारतीय रविवार स्तरीय संगीत सभा के कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा कुमार मरदूर का ख्याल गायन। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। आपसे थोड़ी ही देर बाद 5:10 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी आज हिंदी में। इसमें आजकल में आज होगी चर्चा उम्मीद का दामन न छोड़े। साथ ही होगा क्रम राग नंदनी। आलेख और संपादन होगा पीर भानसा होगा। साथ ही होंगे क्रम सवालों के आईने में और सुनेंगे फिल्म संगीत। जिले की चिट्ठी में शाम 6:05 पर सुनिएगा बस्तर जिले की चिट्ठी। कानून की बात कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनेंगे स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवा के प्रभावी संचालन तथा उनकी सुलह करने व निर्णय की भूमिका विषय पर अधिवक्ता जिला न्यायालय दुर्ग श्री गौरव सतपथी द्वारा दी गई जानकारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति होगी। किसानों का कार्यक्रम चौपाल प्रसारित होगा शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात होगी खरपतवार नाशी रसायनों के उपयोग में सावधानी और क्रम आज की सलाह में नए फल उद्यान की स्थापना हेतु नियोजन एवं प्रबंधन विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर कुंतल खाटकर सहायक प्राध्यापक फल विज्ञान कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र गरियाबंद। अब जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम होगा कल रात 8:30 पर और पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 8:30 पर सुनिएगा परिचर्चा आज का आदमी क्यों हो रहा है स्वार्थी। प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर उषा दुबे श्रीमती सरोज मिश्रा श्री अनुराग झा। संचालन होगा डॉक्टर हनुमंत यादव का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगी पुष्पा हंस। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 10:00 सुनिएगा पंडित कार्तिक कुमार का सितार पर बजाया राग तोड़ी। इसी कार्यक्रम में कल रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित डी के दातार का वायलिन पर बजाया राग यमन। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी कल शाम 5:10 पर छत्तीसगढ़ी में। इसमें आजकल में होगी चर्चा वर्तमान में जीना सीखें। साथ ही होंगे क्रम हेलो युवाणी और दृष्टिकोण। किसानों का कार्यक्रम चौपाल प्रसारित होगा शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात होगी जुन्ना तालाब के रखरखाव और संरक्षण पर। साथ ही नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का फसलों पर उपयोग विधि एवं लाभ विषय पर जानकारी देंगे श्री राजेश कुमार गोले उप महाप्रबंधक विपणन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युवा

0: वो साथ रहे तो कोई मंजिल दूर नहीं लगती। रेजगाड़ी हर कदम पर संग नहीं रहती।
1: कि रोजमर्रा जिंदगी में आते हैं कई तूफान, पर उम्मीद का दामन साथ हो तो कोई मंजिल दूर नहीं लगती। साथियों, स्वागत है आज के युववाणी में। मेरा यानी सृष्टि
0: और मैं संस्कार जैन का आप सभी को प्यार भरा
1: नमस्कार। वाह संस्कार, क्या लिखा है, पर अब समझा भी दो।
0: अरे अरे धन्यवाद, पर जैसा कि आज का विषय है, हमें उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और ये पंक्तियाँ भी यही साझा कर रही हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन संस्कार, उम्मीद ना खोना ये कहना आसान है, लेकिन जब सब कुछ हाथ से निकलता दिखे तब उम्मीद पकड़े रहना वो असली चैलेंज है ना।
0: ये बात तो है। मेरा ना एक दोस्त था जिसे कॉलेज के बाद लगातार 2 साल तक जॉब नहीं मिली। हर इंटरव्यू के बाद वही लाइन, वी विल गेट बैक टू यू वाला ईमेल ही आते रहते थे।
1: अरे ये लाइन तो हम सबने जी ली है।
0: हाँ, और उस वक्त सबसे मुश्किल चीज यही होती है कि खुद पे भरोसा बनाए रखें। पर एक दिन ना उसको उसकी नानी ने कहा, बेटा अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, सुबह होना तो तय है।
1: वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बात है।
0: और सच में 3 महीने बाद उसे वो मौका मिला जिसका वो इंतजार कर रहा था। वैसे तुम्हारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ है?
1: मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। मेरी ना एक बहुत करीबी दोस्त थी, उसकी शादी के 2 साल बाद उसका डिवोर्स हो गया। उसने मुझसे कहा था कि मुझे लगता है सृष्टि, मेरी लाइफ यहीं खत्म हो जाएगी, और मैं उस वक्त उसे कुछ बोल नहीं पाई थी, बस उसका हाथ पकड़ कर बैठी रही।
0: फिर क्या हुआ?
1: फिर संस्कार, आज वो अपना खुद का बुटीक चलाती है अपने दम पर, और जब भी हम मिलते हैं ना तो वो कहती है कि उस वक्त जब सब कुछ टूट रहा था उसी समय ने मुझे बनाया।
0: वाह वाह, क्या लाइन है, उस टूटने ने ही मुझे बनाया।
1: मुझे एक शेर याद आ रहा है, कहो तो सुनाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि टूट कर बिखर गए तो क्या हुआ, हर बिखरे हुए जर्रे में भी एक चमक होती है।
0: वाह वाह, बहुत खूब।
1: पता है संस्कार, मेरे गाँव में ना रोहित नाम का एक लड़का है, वो एक एथलीट है, पर उसका ना एक बार एक्सीडेंट हो गया था। और डॉक्टर्स ने कहा था कि वो दोबारा कभी नहीं दौड़ पाएंगे।
0: फिर क्या हुआ?
1: फिर 2 साल की कंटिन्यू फिजियोथेरेपी के बाद रोहित ने पिछले महीने एक मैराथन कंप्लीट की। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे पैर टूटे थे, हौसला नहीं।
0: वाह वाह, मेरे पैर टूटे थे, हौसला नहीं, क्या बात है सिस्टी, आज तो एक से बढ़कर एक लाइंस बता रही है।
1: सच में संस्कार, असल में ये किस्से ही हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, इंसान का हौसला और उम्मीद उससे कहीं बड़ी होती है।
0: सिस्टी एक बात बताओ, साइंस के हिसाब से क्या ये उम्मीद रखना सच है कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद है?
1: अरे बिल्कुल फायदेमंद है। इनफैक्ट साइकोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं संस्कार कि होप यानी कि उम्मीद सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे हम डेवलप कर सकते हैं। अच्छा संस्कार, कोई वाकया है क्या तुम्हारे पास जिसमें उम्मीद ने कुछ कमाल ही कर दिया हो?
0: वाकया तो है। मेरे एक कजिन ने ना एक बार लॉटरी के लिए हर हफ्ते टिकट खरीदना शुरू किया।
1: अच्छा,
0: पूरे 2 साल तक।
1: हाँ,
0: सब उसे चिढ़ाते थे, और आखिरकार जब उसे छोटा सा प्राइज मिला तो उसने कहा, देखा मैंने कहा था ना।
1: ये तो थोड़ी अलग टाइप की उम्मीद हो गई, पर हाँ चलो, पॉइंट वही है कि कभी हार मत मानो।
0: बिल्कुल सही, चाहे बड़ा सपना हो या छोटी सी उम्मीद, इसे जिंदा रखना ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, कभी हंसी होगी कभी आंसू, लेकिन जब उम्मीद का दामन आपके हाथ में है, आपके साथ में है, तब तक कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती।
0: और साथियों याद रखिए, उम्मीद रखना कमजोरी नहीं सबसे बड़ी ताकत है, तो चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो हमेशा चलते रहिए।

0: दर
1: बेटा
0: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
2: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ
2: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
0: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
4: आंखों के सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
5: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
4: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
5: 47 सालों से निरंतर सेवा में
4: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, पीली बांधा, रायपुर।

0: साथी हुए आप सुन रहे थे गीत आज का ये दिन फिल्म नास्तिक से।
1: इसमें स्वर दिया था किशोर कुमार ने, गीत आनंद बख्शी का और संगीत कल्याण आनंद जी का। साथियों, संगीत संस्कृति की आत्मा है। साधारण शब्दों में सुर ताल और लय के सुंदर मेल को संगीत कहते हैं। इसी लय में बढ़ते हुए आज क्रम राग नंदिनी में लीजिए सुनिए राग मधुवंती का परिचय, उससे संबंधित फिल्मी गीत और सितार सम्राट पंडित रविशंकर एक परिचय। आलेख और संपादन बीरबान साहू का है।

संगीत एक चिकित्सा है। डर, तनाव, आतंक एवं मानसिक दुर्बलता के निवारण हेतु संगीत बहुत बड़ी दवा है। महान संगीतज्ञ संगीत नायक स्वर्गीय दरगाहे जी ने संगीत द्वारा कई रोगियों को स्वस्थ करने में सफलता पाई थी। संगीत मार्तंड पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने इटली के तत्कालिक शासक मुसोलिनी को अपने गायन द्वारा अनिद्रा की बीमारी से मुक्त कराया था। पाश्चात्य देशों में प्रायः सभी सांगीतिक ध्वनियों का प्रयोग किया जाने लगा है। सुरीले संगीत द्वारा उनके मानसिक उन्माद को घटाकर उनकी स्थिति में सुधार किया जाता है। संगीत के इस चिकित्सीय प्रशंसा के साथ स्वीकारे अभिवादन, नमस्कार। साथियों, राग नंदिनी के इस अंक को हमने सजाया है राग मधुवंती के परिचय और इस राग पर तैयार फिल्मी गीतों से। साथ ही परिचय प्राप्त करेंगे संगीत के पर्याय पंडित रविशंकर का। आइए कार्यक्रम का आरंभ करें राग मधुवंती के परिचय के साथ। राग चंद्रिका सार में राग मधुवंती का काव्यात्मक परिचय इस प्रकार से किया गया है। गा कोमल मा तीव्र है, चढ़ते रिधना सुहाए, पासा वादी संवादी सो गुणी मधुवंती गाए।

आपने सुना यह प्यारा सा गीत। श्रोता साथियों, राग मधुवंती को कुछ संगीतकार अंबिका अथवा मधुमालती भी कहते हैं और इसमें कोमल निषाद का भी प्रयोग करते हैं। रागिनी मधुवंती मधुर मृदुल गांधार मातिवर पासा नृप मंत्री सम्मत आरोही रिद बर्जत दिन तृतीय प्रहर गावत। राग मधुवंती में रे नी ध प स्वर समूह लेने से कल्याण राग की छाया आने लगती है, किंतु उनके साथ म ग रे सा कोमल गांधार का प्रयोग करने से वह दूर हो जाती है। मधुवंती में कल्याण, पीलू, मुल्तानी और प्रदीप इन चारों रागों का मधुर तिरोभाव दृष्टिगोचर होता है। राग मधुवंती का गायन वादन का समय दिन का तृतीय प्रहर होता है। और आइए अब आपको राग मधुवंती पर तैयार एक और गीत सुनवाते हैं।

अभी हमने सुना फिल्म बावरे नयन का यह प्यारा सा गीत। ये तो था राग मधुवंती का संक्षिप्त परिचय और इस राग पर तैयार कुछ गीत। और आइए अब हम परिचय प्राप्त करें सितार का पर्याय पंडित रविशंकर जी का।

रमन मैग्सेसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय और अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों सम्मानों से सम्मानित भारत रत्न पंडित रविशंकर का नाम लेते ही सितार और सितार का नाम लेते ही पंडित रविशंकर याद आ जाते हैं, मानो दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। रविशंकर जी के सितार वादन की प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने पश्चिमी संगीत से जुड़कर यहूदी मनुद्दीन, जुबीन मेहता तथा ऑनट्री प्रोवीन के साथ युगलबंदी की। पश्चिमी संगीत के साथ उन्होंने नए नए प्रयोग किए, पश्चिमी संगीतकार विटाम्स को अपना शिष्य बनाया, किंतु भारतीय संगीत के शुद्ध शास्त्रीय तथा पारंपरिक रूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। वे शुद्धतम पारंपरिक भारतीय संगीत के ही साधक थे।

बनारस के संस्कृत के प्रकांड विद्वान श्याम सुंदर जी के घर 7 अप्रैल 1920 को जन्मे पंडित रविशंकर 18 वर्ष की उम्र तक अपने बड़े भाई विश्व विख्यात नर्तक उदय शंकर की नृत्य मंडली में एक नर्तक के रूप में विश्व भ्रमण करते रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात उस्ताद अलाउद्दीन खां से हुई, जो रविशंकर जी के नृत्य कौशल से प्रभावित होकर गायन और सितार की शिक्षा देने लगे। रविशंकर जी बाबा के साथ मैहर आ गए और विधिवत शिक्षा ग्रहण की। रविशंकर जी की सितार वादन की शैली उनकी अपनी शैली थी, उसमें मौलिकता थी। सितार पर बिन अंग का आलाप, दो दो तीन तीन सुरों की छोटी बड़ी मेड़ों के साथ मिजराज का प्रयोग, विलंबित से अति द्रुत लय में उनके दोनों हाथों की उंगलियों का अद्भुत तालमेल उनके सितार वादन की अन्यतम विशेषता है। सितार वादन के क्रम में वे राग विशेष के मार्मिक तत्वों को उभारते थे और उन तत्वों को लय ताल के कलात्मक संयोजन में पिरोते थे। यह दुर्लभतम विशेषता कहीं और नहीं।

पंडित रविशंकर जी ने सितार वादन शिक्षण के लिए स्वर लिपि का विकास किया। कृंतन, जमाजमा, मीर और गमक की जो संकेत पद्धति उन्होंने विकसित की उसका एक विशेष महत्व है। बहुआयामी प्रतिभा संपन्न पंडित रविशंकर ने धरती के लाल, नाचनागर, अनुराधा, गोदाम, मीरा जैसी हिंदी फिल्मों में तथा बंगला फिल्म पाथेर पंचाली और काबुलीवाला तथा अंग्रेजी फिल्म द चैरिटेबल द फ्लूट एटेनबरो की फिल्म गांधी में अविस्मरणीय संगीत दिए।

पंडित रविशंकर जी ने राग परमेश्वरी, गोदावरी आदि रागों की रचना की। भारत रत्न पंडित रविशंकर जी अपने जीवन में ऐसे अमर कृतियों की रचना की जो सदा सदा के लिए अमर हो गए। प्रकृति के नियमों से बंधे पंडित रविशंकर जी 11 दिसंबर 2012 को 92 वर्ष की उम्र में इस नश्वर संसार को छोड़ परम तत्व में विलीन हो गए और छोड़ गए सितार का अमूल्य संसार।

राग नंदनी के इस अंक से हम अनुमति चाहते हैं। वाचन पायल विशाल, आलेख एवं संपादन बीर भानसाहू, प्रस्तुति सुमिता रॉय बर्मन। नमस्कार।

0: विक्रमराग नंदिनी में आप ही आप सुन रहे थे राग मधुवंती का परिचय, उससे संबंधित फिल्मी गीत और सितार सम्राट पंडित रविशंकर का परिचय। वाचन स्वर पायल विशाल का था, आलेख और संपादन वीरभान साहू का था।
1: साथियों, अब समय हो चला है क्रम सवालों के आईने का। पहले जानते हैं पिछले अंक में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर। सृष्टि, हमारे पिछले अंक 104 का पहला सवाल क्या था?
0: हमारा पहला सवाल था, सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? सही उत्तर है विजय भटकन। दोस्तों, परम भारत में विकसित सुपर कंप्यूटरों की एक प्रमुख श्रृंखला है। इसे पुणे स्थित सीडेक द्वारा डिजाइन और असेंबल किया गया है।
1: दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल था, नोबेल पुरस्कार किस देश से शुरू हुए? सही उत्तर है स्वीडन। इस पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में की गई थी।
0: दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल था, भारत का पहला जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? सही उत्तर है नीलगिरी। दोस्तों, नीलगिरी यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि यूनेस्को के द्वारा निर्मित एक विशेष संरक्षित क्षेत्र है, जिनका उद्देश्य है प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना।
1: श्रोताओं, हमारा चौथा सवाल था, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? सही उत्तर है बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा और सूर्य से पांचवा ग्रह है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक गैस का दानव गैस जायंट है।
0: हमारा पांचवा सवाल था, सुल्तान ऑफ स्विंग क्रिकेटर किसे कहा जाता है? सही उत्तर है वसीम अकरम। वह गेंद को दोनों तरफ अंदर और बाहर बेहद तेज गति से स्विंग कराने में माहिर थे।
1: श्रोताओ, हमारा छठवां सवाल था, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? सही उत्तर है आर्गन। आर्गन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक AR और परमाणु क्रमांक 18 है। यह एक रंगहीन, गंधहीन और पूरी तरह से अक्रिय उत्कृष्ट गैस है।
0: साथियों, सही जवाब देने वाले श्रोताओं का नाम बताने से पहले नोट कीजिए हमारे नए सवाल। अंक 105 के लिए नए सवाल हैं।
1: पहला सवाल, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है?
0: पहला सवाल फिर से, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है?
1: दूसरा सवाल, किस महापुरुष की 125वीं जयंती 6 जुलाई 2026 को मनाई गई है?
0: दूसरा सवाल फिर से, किस महापुरुष की 125वीं जयंती 6 जुलाई 2026 को मनाई गई है?
1: तीसरा सवाल, IPL के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं?
0: तीसरा सवाल फिर से, IPL के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं?
1: चौथा सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
0: चौथा सवाल फिर से, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
1: पांचवा सवाल, किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी रात में कम दिखने की बीमारी होती है?
0: पांचवा सवाल फिर से, किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी रात में कम दिखने की बीमारी होती है?
1: छठवां और आखिरी सवाल, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है?
0: छठवां और आखिरी सवाल फिर से, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? साथियों, आप अपने जवाब हमें ईमेल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है airyouth9@gmail.com, कोड है Y12।
1: फिर एक बार सुनिएगा दोस्तों, हमारी ईमेल आईडी है airyouth9@gmail.com, कोड है Y12। तो दोस्तों, अब जानते हैं पिछले अंक में सही जवाब देने वाले श्रोताओं के नाम।
0: पिछले अंक में 6 सही जवाब देने वाले श्रोताओं के नाम है, खैरागढ़ से मोतीलाल भीमटे, सुशीला, मेघा, नेहा, यीशु भीमटे, कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद, पूर्णेंद्र, साहिल चंद्राकर, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र, प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार,
1: बैसमुड़ी से पूजा, तुलेंद्र साहू, पूर्वशी, भागवत कुमारी, भूनेरा से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभव विभूति, मदनपुर से श्रवण कुमार, योगेश राहुल साहू, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी वर्मा,
0: बरौदा बाजार से नंद कुमार ठाकुर, प्रमीला, खुशबू, ज्योति ठाकुर, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभैये, राधिका, बेबी, अनुष्का और तन्मय गजभैये, बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष अंगारे, धमतरी से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा, शुभम, सजल साहू,
1: पलारी से नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, लखनलाल देवांगन, महासमुंद से जेतु ध्रुव, किरण, दिव्यांशी, खेमुद, खुमर से सतीश गिरी, गोस्वामी, श्यान, शिवा, एकांशी गोस्वामी, बागबारा से पन्नालाल खेन, खुशबू तारा, कुशल सेन,
0: पथरिया से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नूमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल, मेघापारा से राम कुशल पटेल, संतोषी, दीपांशु, दिव्या, दीपांजलि, दीपक, टेकलाल पटेल, कांकेर संबलपुर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, कुमा खान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन,
1: भीम खोज, तारपुंगी से संतोष गुप्ता, हितेश होमेश लक्ष्मी प्रतिभा शीतल गुप्ता, आवरा डाबरी से श्यामलाल साहू, मोगरा संगीता केसरी चिंकी,
0: चिरमिरी कुरसरिया से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ सिंह, सहोदर राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद कालिंद्री लहरे, बसना से हीरालाल जगत, देवेश ब्रजेश जगत, एकता लावण्या कश्यप,
1: महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री, गटारानी से योगेश्वर, डुमेश्वरी यामिनी मुस्कान, हर्षिता साहू, पलारी से श्यामलाल साहू, युवराज साहू, दुर्ग से आरसी कामले, करुणा मीणा, अश्विनी विपुल कामले,
0: भाटापारा से बचकमल मोतीलाल यादव, डॉ

0: सबरसन भृगु विनय ठाकुर चुवाराम वर्मा माटापारा से प्रमोद साहू देव कुमार नवीन कुमार युवराज साहू महासमुंद से भीष्म दास मानिकपुरी हीरमानी दीपक लक्षदास लक्षणपुर से रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू।
1: तो दोस्तों अब जानते हैं पिछले अंक में सही जवाब देने वाले श्रोताओं के नाम। पिछले अंक में 5 सही जवाब देने वाले श्रोताओं के नाम हैं रायपुर से लता देवी चौहान, रिंगनी से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा।
0: श्रोताओं पिछले अंक में 4 सही जवाब देने वाले श्रोताओं के नाम हैं रायपुर से छन्नूलाल यादव, पुष्पलता, अर्पिता, अभिनव, बलदेव, राजेश्वरी, आस्था, अनुराग, अभिषेक, डुग्गू, कान्हा यादव।
1: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयां। हमें इंतजार रहेगा आपके जवाबों का और आपके ईमेल्स का। इसी के साथ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्रम की ओर।
0: तो दोस्तों अब वक्त हो चला है क्रम फिल्म संगीत का। किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि दुनिया में सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसकी जेब भारी हो, बल्कि वो है जिसके लिए किसी के दिल से सच्ची दुआ निकलती है।
1: हाँ दोस्तों, निस्वार्थ प्यार, पॉजिटिविटी और दुआ हर समस्या का सॉल्यूशन निकल ही लेती है।
0: उसी पॉजिटिविटी के साथ सुनते हैं क्रम फिल्म संगीत का हमारा ये गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कुर्बान फिल्म का यह गाना दुआ, जिसमें स्वर थे कैलाश खेर और सुखविंदर सिंह के।
1: गीत दिया था निरंजन आयंगर ने और संगीत था सलीम सुलेमान का।
0: सृष्टि, कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है ना कि लहरें बहुत ऊंची हैं और हमारी नाव बहुत छोटी।
1: ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है और हमारी किस्मत की गाड़ी, या यूं कहें कि हमारी नाव, उल्टी दिशा में बह रही है।
0: लेकिन एक बात बोलो सृष्टि, भगवान से डर कर जो हार मान ले, काहे का फिर जोर है तेरा।
1: बिल्कुल, मुश्किल तो हर उस इंसान के रास्ते में आएंगी ना जो भीड़ से अलग हटकर कुछ करने की सोचेगा। वैसे इसी उत्साह के साथ सुनते हैं दोस्तों हमारे आज के क्रम का ये अंतिम गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे गीत नाव फिल्म उड़ान से, स्वर थे मोहन कनन के, गीत अनुराग कश्यप अमिताभ भट्टाचार्य का और संगीत अमित त्रिवेदी का।
1: साथियों, आज का ये सफर, ये बातें और ये प्यार भरा साथ यहीं तक था। जाने से पहले सुन लीजिए कल के कार्यक्रम। कल है हेलो युववाणी, जिसमें आपसे बात करेंगे आरजी अग्रवाल। साथ ही होगा क्रम दृष्टिकोण, जिसका विषय होगा बढ़ती जनसंख्या का समाज पर प्रभाव।
0: तो दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाजत। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए
1: और स्वीकार कीजिए मेरा यानी सृष्टि
0: और मेरा यानी संस्कार का
1: नमस्कार।

0: युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रखा है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्य व्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
2: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 250 रन बना लिए गए। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल्स में चीन की गुआ खानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना मेल्डोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील के लुइसा स्टेफनी से जारी है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। जिले की चिट्ठी, इसमें सुनिए बस्तर जिले की चिट्ठी। आलेख है संतोष वर्मा का। श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं बस्तर जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, प्रदेश में अगले वर्ष से नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र भेजकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत देश के अन्य प्रमुख शिक्षा बोर्डों और मंडलों के समान ही अब छत्तीसगढ़ में भी नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा 31 मार्च तक चलेगा। हालांकि छात्रों को मिलने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश में कोई कटौती नहीं की गई है। प्रदेश में 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पहले की तरह ही यथावत रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा पहले में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। ये नई व्यवस्था सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगी। श्रोताओं, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीते 9 जुलाई को जगदलपुर के डिमरापाल में स्थापित कॉन्टिनेंटल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बस्तर संभाग की पहली और छत्तीसगढ़ की दूसरी अत्याधुनिक कैथ लैब का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने से बस्तर सहित प्रदेश के हृदय रोगियों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और अन्य आधुनिक उपचार अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे। अब मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना होगा, साथ ही उन्हें समय पर उपचार भी मिल सकेगा। श्रोताओं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय PIB रायपुर द्वारा बीते 27 जून को जगदलपुर में वार्तालाप मीडिया संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और उपलब्धियों का लेखा जोखा साझा किया। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की कल्याणकारी नीतियों से बस्तर नक्सलवाद के अंधेरे से निकलकर विकास और विश्वास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। श्रोताओं, महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राही महिलाओं के EKYC के पंजीयन की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। बस्तर जिले के महिला और बाल विकास अधिकारी मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में लगभग 90% हितग्राही महिलाओं ने EKYC करा लिया है। उन्होंने छूटी हुई हितग्राही महिलाओं से निर्धारित समय में EKYC कराने की अपील की है। श्रोताओं, जिले के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में 141 बैंक सखियां गांव-गांव बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रही हैं। माइक्रो ATM और आधार आधारित भुगतान प्रणाली के जरिए ग्रामीणों को नगद निकासी, जमा, बैलेंस जांच और धन अंतरण जैसी सुविधाएं गांव में ही मिल रही हैं। इसके साथ ही वे ग्रामीणों को डिजिटल भुगतान, सुरक्षित बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता के प्रति भी जागरूक कर रही हैं, जिससे गांव में डिजिटल वित्तीय लेन देन को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। जून महीने में बैंक सखियों ने पेंशन, महतारी वंदन, मनरेगा और अन्य योजनाओं के साथ ही VBG रामजी योजना के तहत हितग्राहियों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया। इससे ग्रामीणों, खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। श्रोताओं, बारिश के मौसम में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि बिजली के खंभों, टूटे तारों, ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युत उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा इनमें किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। यदि कहीं बिजली के तार या उपकरण क्षतिग्रस्त दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत टोल फ्री नंबर 1912 बिजली ऐप या निकटतम वितरण केंद्र को दें। श्रोताओं, जिले के बकावंड विकास खंड के अंतर्गत जैतगिरी, सरगीपाल, गिरोला, डुरका वेड़ा और बदलावंड गांव में पिछले दिनों जल अर्पण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने जल संरक्षण और पानी बचाओ अभियान को सफल बनाने के लिए सहभागिता का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जल जीवन मिशन की IEC ज्योत्सना सोना ने ग्रामीणों को जल के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने, जल संसाधनों की सुरक्षा करने, सोखता गड्ढों और किचन गार्डन की उपयोगिता तथा स्थानीय स्तर पर पौधरोपण करने की बात कही। श्रोताओं, जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग ने अब तक 7,25,00,000 से अधिक मत्स्य बीज का उत्पादन किया है। मत्स्य पालन विभाग के उपसंचालक मोहन राणा ने बताया कि जिले में इस वर्ष 9,50,00,000 मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
3: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रहे थे
0: बस्तर जिले की चिट्ठी। लेख था संतोष वर्मा का। यह आकाशवाणी रायपुर है। अब सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
4: ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग सोहेल खानी अस्तानी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। देश भर में आज चलाएगी इस पौधारोपण अभियान दिल्ली में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कल ही शुरू हुई छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5 दिन के मानसून सत्र और दंतेवाड़ा और कांकेर जिला में कार्रवाई करत सुरक्षा बल बरामद करी हथियार और माओवादी जिनिस। अब समाचार विस्तार ले। देश भर में आज पौधारोपण के बड़का अभियान चलाएगी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। हकीन की सरलक भविष्य सुनिश्चित करे खातिर और पर्यावरण संरक्षण खातिर पौधा लगाए जाना जरूरी हवे। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान हकीन की आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के तापमान बढ़े ले चिंता में हवे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5 दिन के मानसून सत्र काली बिहनी 11 बजे ले शुरू होगी। यह सत्र 17 जुलाई तक चलेगी। इस सत्र के दौरान कुल 5 दिन बैठक आयोजित करी जाएगी। सत्र के दौरान प्रश्नकाल और वित्तीय काम के संगे संग 8 से ज्यादा संशोधन विधेयक मन ऊपर चर्चा और विचार करी जाएगी। यही बीच मानसून सत्र के तैयारी लल्ले के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत की अध्यक्षता में आज रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक चलत हवे। प्रदेश में मोर गांव मोर पानी अभियान के जरिया जल संरक्षण ला जन आंदोलन बनाए जावत है। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत जम्मू जिला मन में रोजगार जल संरक्षण और हरित विकास के काम तेजी से करे जावत है। यही कड़ी में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के ग्राम पंचायत बरदल में जन सम्मेलन एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण और जन भागीदारी कार्यक्रम के आयोजन करेगी। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हा पौधारोपण करीन और कंटूर ट्रेंच के खुदाई कर जल संरक्षण के संदेश दी। जानवर के मुताबिक ग्राम पंचायत बरदर मा 52 एकड़ क्षेत्र मा समेकित जल संरक्षण और हरित विकास मॉडल विकसित करे जावत है। यहाँ जल संरक्षण के संगे संग तकरीबन 2000 पौधा लगाए जावत है। मोरगांव मोर पानी अभियान के तहत करे गए काम ले ये क्षेत्र मा तकरीबन 200,00,000 मीटर भू जल रिचार्ज क्षमता विकसित हुए हवे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO हा माफी योजना 2026 शुरू करीन हवे। एकर तहत छूट मिले भविष्य निधि ट्रस्ट चलैया प्रतिष्ठान मनला अपन स्थिति नियमित करे के एक मुफ्त मौका दे गए हवे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय हा बताइन कि ये योजना 6 महीने तक चलही। एकर लाभ ऐसन प्रतिष्ठान ला मिली जौन आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट के संचालन करत हवे। ऐसन ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि के प्रबंधन सीधा EPFO के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपन निजी ट्रस्ट के जरिए ले करते। राजधानी रायपुर के माना कैंप के शूटिंग रेंज में काली 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग मीट के शुभारंभ करेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन डहाले आयोजित ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर के निशानेबाज मन हिस्सा ले बता में। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला शामिल हुए। विशेष अतिथि के रूप में विंग कमांडर विवेक कुमार साहू शामिल हुए। राज्य शूटिंग मीट में मनखे और माइलोगिन वर्ग के संगे संग आने आने आयु समूह के मुकाबला आयोजित करे जावत हवे। नगरीय प्रशासन विभाग हा प्रदेश के नगरी निकाय नगर निगम नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत ला वित्तीय आवंटन जारी करे है। एकर तहत वित्तीय बच्चर 2026-27 खातिर महापौर अध्यक्ष निधि के संगे संग पार्षद निधि के पहली किस्त के रूप में 50% राशि हस्तांतरित करे के आदेश जारी किए गए हवे। दोनों मदला मिला के कुल 104,54,25,000 रुपया के राशि बैंक के जरिया ले सीधा निकाय मन के खाता में भेजे जावत है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हव।
3: छत्तीसगढ़ के खबर लिए आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता लिए हमारे वास्ता आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हवे। हमारे फेसबुक पेज है छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा था छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
4: आओ अब आगे बढ़ते बाचे समाचार कोती। दंतेवाड़ा जिला में सुरक्षा बल मनहा नक्सली मन डहर ले लुका के रखे गए हथियार और विस्फोटक जिनिस बरामद करीन हवे। ये कार्रवाई हालच में आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटीन माओवादी मन के निशानदेही में बारसूर थाना क्षेत्र के तोड़मा जंगल में करेगी। सर्च अभियान में तकरीबन 16,00,000 रुपया कीमत के 160 ग्राम सोना के बिस्किट 2,00,000 रुपया नगद इंसास राइफल मैगजीन कारतूस बंदूक टिफिन बम पाइप बम हैंड ग्रेनेड वर्दी और आने आने जिनिस ला बरामद करेगी। उन्हें कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र के ग्राम आलपरस और गुमचूर के बीच जंगल पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बल नक्सली मन ले लुका के रखे गए डंप बरामद करीन हवे। पुलिस के मुताबिक कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र 11 जुलाई ले DRG BSF और BDS के मिले जुले टीम ढाल ले सघन सर्चिंग अभियान चलाए जावत है। यह दौरान जमीन के भीतर लुका के रखे गए हथियार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नक्सली जिनिस बरामद हुए है। इनमें 2 303 राइफल 32 राउंड कारतूस 1 लैपटॉप 1 टेबलेट 3 वायरलेस बैटरी रेडियो और नक्सली साहित्य शामिल हवे। महुआ मानपुर जिला में आज कोरकुट्टी मदनवाड़ा नक्सल हमला के 17वीं बरसीमा शहीद मनला श्रद्धांजलि देगी। जिला के पुलिस रक्षित केंद्र महुआ में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कलेक्टर पुलिस अधीक्षक IT BP के अधिकारी जनप्रतिनिधि और मनखे मन हा शहीद मनला श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जिला के आने आने थाना और गाँव में घलो श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेगी। ये मौका में महुआ और औंधी में रक्तदान शिविर घलो लगाएगी। गौरतलब है कि 12 जुलाई 2009 के मदनवाड़ा क्षेत्र में हुए नक्सल हमला में ओबेरा के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे समेत 29 जिन जवान शहीद हो गए रहीं। जसपुर में तपकरा थाना क्षेत्र के उड़ीसा कुंकुरी मार्ग में लावा केरा के तीर में काली एक

0: कि तेज रफ्तार हाईवा अवकार के बीच जोरदार हर टक्कर हो गईस। टक्कर अतका भयंकर रहीस कि कार हा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईस और उमा बैठे दूसरे लोगन मन के मौकच मा मौत हो गईस। उते सरगुजा जिला के मैनपाटमा काली दो ठीन मोटरसाइकिल के हुई के बीच हुई इस टक्कर मा 3 मनखे मन के मौत हो गईस। उन्हें एक ठीन आने हादसा मा अंबिकापुर सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 मा सेदम के तीर मोटरसाइकिल ले जावत रहीस एक ठीन दंपत्ति ले ट्रक हा बाजू पाछू ले टक्कर मार दीस जेखर ले महिला के मौत हो गईस और ओकर पति हा गंभीर रूप ले घायल हुईस हवय। उन्हें जांजगीर चांपा जिला के बुछहरदी गांव में दो ठीन मोटरसाइकिल के बीच हुए टक्कर में एक मनखे के मौत हो गए हवय। ये दुर्घटना में दो लड़का समेत 4 आने मनखे मन के घायल हो गए जिन्हें बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया हवय। अब थोड़क समाचार सार में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग डहार ले सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर के भर्ती खातिर प्रारंभिक परीक्षा आज बिहनिया 10 ले मंझनिया 12 तक आयोजित करेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में भिलाई और भिलाई नगर के बीच कुर्सी पार रेलवे संपार फाटक में मरम्मत काम करे जाही। एकर चलत 14 के बिहनिया 8 ले 24 के रतिहार 8 तक ये फाटक में सड़क यातायात पूरा बंद रही और जसपुर जिला के 4 वन परिक्षेत्र मन में ए बेरा लगभग 32 हाथी मन के दल ह किंजरत हवय। हाथी मन के गतिविधि ल देखत वन विभाग ह निगरानी बढ़ा दे गे हवय। वन विभाग ह गांव वाला मनखे मन ले अपील करिन हे कि ओमन हाथी के किंजरिय क्षेत्र में झन जावय। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। देश भर में आज चलाए गए पौधारोपण अभियान दिल्ली में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। काली ले शुरू हुई छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5 के मानसून सत्र और दंतेवाड़ा और कांकेर जिला में कार्रवाई करत हुए सुरक्षा बल बरामद करीन हथियार और माओवादी जिनिस। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिलावत है। जय जोहार।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंता प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। ओमान देशस्य तटे वाणिज्यिक नौकायानस्य GFS गैलेक्सी इत्यस्य उपरि आक्रमणस्य भारतं निन्दाम् अकरोत्। 10 भारतीयाः रक्षिताः, एकस्य लुप्तोऽस्ति इति सूच्यते। भारतदेशः अस्मिन् क्षेत्रे वाणिज्यिक नौकायानस्य उपरि निरन्तर आक्रमणानां विषये चिन्तां प्राकटयत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशानां परिभ्रमण काले अनेकाः संधीः समाप्य नवदेहलीं प्रत्यागतवान्। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद नगरे अनेकासां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च अकरोत्। कर्मचारी भविष्य निधि संघटनं स्वायत्त भविष्य निधि न्यासं संचाल्यमानानां प्रतिष्ठानेभ्यः तेषां स्थितिं नियमितं कर्तुं षण्मासस्य एमनेस्टीति योजना प्रवर्तयति। विंबल्डन क्रीडायां यानिस सिनर इत्येषः अद्य सायंकाले अलेक्जेंडर ज्वेरेव इत्यनेन सह पुरुष एकल उपाधिं प्राप्तुं संघर्षं करिष्यति। अपि च फीफा विश्व चषक क्रीडायां इंग्लैंड देशः अर्जेंटीना देशस्य उपांत्य चक्रं प्रविशतः। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य पूर्वं ओमान देशस्य तटे GFS गैलेक्सी इति वाणिज्य नौकायां कृताक्रमणस्य भारतं निन्दाम् अकरोत्। विदेश मंत्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये सूचितं यत् नौकायां स्थितानां 11 भारतीय नागरिकेः 10 जनाः रक्षिताः, एकः भारतीयः नागरिकः लुप्तः इति कथ्यते। सः अवदत् यत् ओमान देशे भारतीय दूतावासः परिस्थितिं निकटतया निरीक्षमाणः अस्ति। साम्प्रतिके च अन्वेषणोद्धारकार्ये ओमान अधिकारिभिः सह सक्रियतया समन्वयं कुर्वन्नस्ति इति। भारतेन क्षेत्रेस्मिन् वाणिज्य नौकायानानाम् उपरि निरन्तरतया कृताक्रमणानां विषये चिन्ता प्रकटिता अस्ति। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् अस्मिन् क्षेत्रे वाणिज्यिक नौवहनस्य नागरिकमूलसौकर्याणां च लक्ष्यकरणं समाप्तं भवेत्, तथा च अन्ताराष्ट्रियविधिम्

0: श्रोताओं नमस्कार। कानून की बात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत में कानून व्यवस्था अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और कानून की व्यवस्था बनाए रखना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके लिए हमें अदालतों या कानून के सेवकों के पास जाना पड़ता है और इसके निराकरण के लिए भी हमें एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से भी ज्यादा है और ऐसी स्थिति में हमारे भारत में न्यायालयों की संख्या सीमित है और इन सीमित संख्या में ही हमें न्याय की उम्मीद रहती है। न्यायालय से न्याय मिलता है लेकिन इसमें कभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देरी भी होती है और देरी होने की वजह से मामले लंबित हो जाते हैं। इन्हीं लंबित मामलों के निपटान के लिए स्थायी और अस्थायी लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है। स्थायी लोक अदालत की बैठकें की जाती हैं और इनमें लंबित मामलों के निपटान की कोशिश की जाती है जिससे अदालतों का भार कम हो, लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। इसके लिए लोगों को समय समय पर इसकी सूचनाएं दी जाती हैं और ऐसे लंबित मामलों के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है इसके निपटारे के लिए। तो श्रोताओं, कानून की बात कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे स्थायी लोक अदालत के बारे में। स्थायी लोक अदालतें क्या होती हैं, इनका स्वरूप कैसा होता है और इन स्थायी लोक अदालतों में किन मामलों का निपटारा किया जाता है। स्थायी लोक अदालत, इसका प्रभावी संचालन और सुलह करने और निर्णय की भूमिका में स्थायी लोक अदालतों का क्या महत्व होता है, बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है गौरव सतपति जी जो अधिवक्ता है जिला न्यायालय दुर्ग में। तो गौरव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।

0: आज ऐसा कार्यक्रम में हमने बताया कि स्थायी लोक अदालत ये क्या होते हैं और इसकी भूमिका इसके इतिहास के बारे में हमें बताएं।
1: जी सर, सर स्थायी लोक अदालत का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के अंतर्गत किया गया था। इसका उद्देश्य जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का शीघ्र समाधान करना है। यह विषय केवल कानून के विद्यार्थियों या अधिवक्ताओं तक सीमित नहीं है बल्कि आम नागरिक के न्याय पाने के अधिकार से भी सीधे जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं हमारे देश की अदालतों में लाखों मामले वर्षों से लंबित हैं। कई बार न्याय प्राप्त करने में इतना समय लग जाता है कि व्यक्ति न्याय मिलने से पहले ही निराश हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों को सस्ता, सरल और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थानीय लोक अदालत की व्यवस्था की गई।
0: जी, तो सरपंच जी, जैसा आपने बताया जनोपयोगी सेवा, तो जनोपयोगी सेवाओं से आपका क्या तात्पर्य है?
1: जी, जनोपयोगी सेवाएं क्या होती हैं? इसके बारे में अगर हम जाने तो इसमें आम जनता प्रतिदिन जिन विषयों को लेकर प्रभावित होती है, जैसे कि बिजली, पानी, परिवहन, डाक, दूरसंचार, अस्पताल तथा बीमा आदि, इन सेवाओं से जुड़े विवादों का समाधान स्थानीय लोक अदालत में किया जा सकता है।
0: गौरव सरपति जी, हम बात कर रहे हैं स्थानीय लोक अदालत के बारे में। एक साधारण लोक अदालत होता है, एक स्थानीय लोक अदालत, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है?
1: जी, स्थानीय लोक अदालत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह केवल समझौता कराने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पक्षकारों के बीच समझौते का प्रयास किया जाता है। यदि समझौता हो जाता है तो विवाद समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि समझौता नहीं हो पाता तो कानून के अनुसार स्थानीय लोक अदालत स्वयं मामले का निर्णय दे सकती है। यही इसे सामान्य लोक अदालत से अलग बनाती है। सामान्य लोक अदालत में यदि दो पक्षकारों के बीच का कोई विवाद है तो वो आपसी राजीनामे के तहत निपटारा किया जा सकता है। उक्त प्राधिकरण आपके पक्ष में कोई निर्णय नहीं दे सकती, परंतु स्थानीय लोक अदालत में यदि दो पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा नहीं होता तो स्थानीय लोक अदालत एज अ कोर्ट एक कोर्ट की भूमिका में आके वो किसी एक के पक्ष में दस्तावेजों और गवाहों के मार्ग को मद्देनजर रखते हुए वो फैसला भी दे सकती है। वो एज अ कोर्ट काम करती है, ना कि सिर्फ राजीनामा करने का प्राधिकरण है।
0: जी गौरव सरपति जी, क्या स्थानीय लोक अदालत में हर प्रकार के मामलों का निराकरण किया जा सकता है? हम ये जानना चाहते हैं कि स्थानीय लोक अदालत में किन किन मामलों का निपटारा किया जा सकता है, कौन कौन से मामले इसमें शामिल हो सकते हैं?
1: जी, स्थानीय लोक अदालत की भी कुछ सीमाएं, यहाँ सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई नहीं होती, केवल जन उपयोगी सेवाएं से संबंधित विवाद ही इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। गंभीर आपराधिक मामले, जमीन से जुड़े मामले, चेक से जुड़े मामले, ऐसे सब मामलों का निराकरण केवल न्यायालय के थ्रू ही हो सकता है। स्थानीय लोक अदालत में सिर्फ जो जन उपयोगी सेवाएं हैं, जैसे बिजली, पानी, दूरसंचार, बीमा, इसी से संबंधित सेवाओं का यहाँ पर निराकरण किया जा सकता है।
0: जी गौरव सरपति जी, तो गुरु जी, स्थानीय लोक अदालत में अधिवक्ताओं की क्या भूमिका होती है?
1: स्थानीय लोक अदालत में सिर्फ अधिवक्ताओं के दृष्टिकोण से देखें तो स्थानीय लोक अदालत न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह केवल मामलों की संख्या कम नहीं करती बल्कि न्याय तक लोगों की पहुंच को भी आसान बनाती है। आज जब न्यायालयों पर लंबित मामलों का भारी बोझ है तब ऐसी संस्थाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को न्याय का अधिकार देता है, लेकिन न्याय तभी सार्थक है जब वो समय पर कम खर्च में और प्रभावी रूप से उपलब्ध हो। स्थानीय लोक अदालत इसी संवैधानिक भावनाओं को साकार करने का एक प्रभावी माध्यम है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, विवादों का समाधान संघर्ष से नहीं संवाद से होना चाहिए। स्थानीय लोक अदालत भी इसी विचार को आगे बढ़ाती है। यहाँ मुकदमेबाजी से पहले समझौते का अवसर दिया जाता है और आवश्यकता होने पर विधि के अनुसार निर्णय भी प्रदान किया जाता है।
0: गुरु जी, हम स्थानीय लोक अदालत की बात कर रहे हैं तो इनके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या होते हैं?
1: इनके सर, जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी सुविधाएं हैं, जो जन उपयोगी सुविधाएं हैं, जिनके लिए आम जनमानस रोज के प्रतिदिन के रोजमर्रा में जो वो फेस करता है, जिस समस्या का उसे सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की समस्या हो गई, जैसे रोड की समस्या हो गई, जैसे विद्युत की समस्या हो गई, जैसे बीमा की समस्या हो गई, स्थानीय लोक अदालत में इन सारे मामलों का निराकरण बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, बिना किसी उल्लंघन के यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। स्थानीय लोक अदालत हर जिले के जिला न्यायालय में और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में इनकी एक शाखाएं होती है, जिनमें अगर व्यक्ति जाए तो बहुत ही साधारण और सरल तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पे किया जा सकता है।
0: जी, और गौरव जी, अगर हम बात करते हैं यदि आर्थिक तौर पर कोई विवाद हो तो स्थानीय लोक अदालत का क्षेत्र कितना है कि कितने तक के आर्थिक मामलों की सुनवाई यहाँ की जा सकती है?
1: आर्थिक रूप से जो परेशानियां लोगों को सामना करना पड़ता है उसमें अगर वो जो उनका प्रॉब्लम है, जो उनकी समस्या है, वो अगर जन उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत आएंगे तभी वो स्थानीय लोक अदालत के क्षेत्राधिकार में आएगा, अन्यथा जैसे चेक से संबंधित मामले, जमीन से संबंधित मामले, रकम का लेन देन का मामला है, इन सारे मामलों के लिए उनको जिला न्यायालय या फिर अपने संबंधित प्राधिकरण में ही अपनी उपस्थिति देनी होगी। स्थानीय लोक अदालत की जो सीमाएं हैं वो सिर्फ जन उपयोगी सेवाओं तक ही सीमित है।
0: जी जी, और गौरव जी, यदि स्थानीय लोक अदालत में दो पक्ष हैं, दोनों पर निर्णय नहीं बन पाती है, दोनों के बीच कोई सुलह नहीं हो पाती, इस स्थिति में क्या किया जाए?
1: स्थानीय लोक अदालत आम लोक अदालत से इसीलिए अलग है कि अगर दो पक्षकारों के बीच में कोई सुलह की स्थिति नहीं बनती है तो स्थानीय लोक अदालत एक कोर्ट के जैसे पक्षकारों को सुनकर, उनके दस्तावेजों को देखकर, उनके साक्ष्य को देखकर निर्णय भी दे सकती है जो दोनों पक्षकारों के ऊपर बंधनकारी होगा।
0: और गुरु जी, अगर हम जानना चाहें कि स्थायी लोक अदालत में सुनवाई की शक्ति या पावर जो होता है वो किस प्रकार परिभाषित किया गया है, मतलब ये अधिकार किसको दिया गया है?
1: जिले में एक जिला न्यायाधीश होते हैं, उनके अधीनस्थ बहुत सारे एडिशनल जिला न्यायाधीश होते हैं जिनको हम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश बोलते हैं। एक अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ही स्थायी लोक अदालत का प्रतिनिधित्व अधिकारी होता है। स्थायी लोक अदालत आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी सुविधा का संचालन है। मैंने उच्चतम न्यायालय द्वारा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR के तहत इसका संचालन किया जाता है, जिसमें निम्न न्यायालय का एक अलग दृष्टिकोण है कि आम जनमानस को ज्यादा परेशानियों से, ज्यादा आंदोलन से न गुजरना पड़े और उनका न्याय उनको तुरंत मिले। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, अगर किसी व्यक्ति का बैंक से संबंधित कोई अगर मामला है जिसमें उसने अपने ऋण की राशि का भुगतान कर दिया है, परंतु बैंक उसे फिर भी और राशि के भुगतान के लिए उसे नोटिस भेज रही है, समन भेज रही है, तो वो भी स्थानीय लोक अदालत में जाकर अपना आवेदन दे सकता है, जिसमें स्थानीय लोक अदालत के द्वारा बैंक को नोटिस जारी किया जाएगी, बैंक से उनका पक्ष पूछा जाएगा और जो परिवादी है उससे ये पूछा जाएगा कि आपने कितने पैसे बैंक में जमा किए हैं, अगर वो पैसे उसके ऋण की राशि के बराबर जमा किए गए हों तो मामले का वही निपटारा करके उस व्यक्ति को, उस परिवादी को वहां से न्याय मिलने की उम्मीद रहती है। परंतु अगर वही व्यक्ति अगर न्यायालय जाए तो उसे अधिवक्ता का शुल्क देना होगा, उसे कोर्ट फीस देनी होगी, उसे मामले का विवरण सहना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी अदालतें हैं उसमें आज की डेट में भी इतने सारे मामले लंबित हैं कि आप जानते ही हैं कि उसमें बहुत ज्यादा समय लगने की संभावना रहती है। स्थानीय लोक अदालत एक आपके पास वैकल्पिक ऑप्शन है जिसके द्वारा आप अपने मामलों का त्वरित निपटारा कर सकते हैं।
0: तो गुरु जी, जब स्थानीय लोक अदालत की बात कर रहे हैं तो इसमें आपने बताया कि कोई शुल्क देय नहीं होता है।
1: जी जी।
0: और इसमें जो है मामले को त्वरित और लचीले तरीके से निपटारा किया जा सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास कोई प्रकरण है या जो कोई परिवादी है तो वो जाता है कोर्ट में, तो वहाँ उसे किसके दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी स्थानीय लोक अदालत में आवेदन करते समय?
1: जिस व्यक्ति के पास कोई समस्या अगर आ रही है तो वो स्थानीय लोक अदालत जाकर अपने प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों को लेकर अपने आवेदन के साथ वो स्थानीय लोक अदालत में संपर्क कर सकता है। अगर उसे वहां भी किसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उसके मदद के लिए तत्पर रहती है। वहाँ के जो पैरालीगल वॉलंटियर्स रहते हैं या वहाँ के जो डिफेंस काउंसिल रहते हैं वो भी उसे मदद करने के लिए वहाँ पे तैनात रहते हैं।
0: तो गुरु जी, कार्यक्रम में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्थायी लोक अदालतें हैं ये किसी मामले के निपटारा करने या किसी प्रकरण को हल करने के लिए कितनी प्रतिबद्ध होती हैं?
1: जी, स्थायी लोक अदालत के तीन सदस्य होते हैं, इनका तीन लोगों का कोरम होता है जिसमें एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जिसको हम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के नाम से जानते हैं, इसके अलावा दो सदस्यों का इसमें चयन किया जाता है जो कि राज्य सरकार करती है। इसमें जो भी व्यक्ति अपने परिवार या अपना प्रकरण लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है उसके प्रकरण के समस्त दस्तावेज, समस्त साक्ष्य और सारे विधिक मामलों की जांच करने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा उसमें अपना आदेश पारित किया जाता है।
0: सत्यपति जी, कानून की बात कार्यक्रम से चलते चलते हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को स्थायी लोक अदालत के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दें।
1: स्थायी लोक अदालत एक परमानेंट लोक अदालत के जैसे एक कोर्ट है जिसमें आप अपनी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिए आप यहाँ पर अपने आवेदन के साथ उपस्थित हो सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोक अदालत हर 3 महीने में देशव्यापी लगाया जा रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक 18/7/2026 को भी लोक अदालत पूरे देश में लगाए जाएंगे, जिसमें 138 चेक बाउंस के मामलों से संबंधित समस्त मामलों का निराकरण किया जाएगा। यदि कोई का सलाह लेना चाहता है या अपने किसी शतरंज से संबंधित गणित विमर्श लेना चाहता है तो नासा के टेलीफोन नंबर 1500 पर संबंधित जानकारी ले सकता है। किसी भी प्रकार के विधिक परामर्श या विधि संबंधी परेशानी के निराकरण हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क करने के लिए आमजन आ सकते हैं।
0: श्रोताओं, कानून की बात कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे गौरव सतपति जी से, जो अधिवक्ता है जिला न्यायालय दुर्ग में, और बात कर रहे थे स्थानीय लोक अदालत के प्रभावी संचालन और उनकी सुलह करने के निर्णय की भूमिका पर। गौरव सतपति जी, कानून की बात कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: कानून की बात कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

कानून की बात। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रही थी स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवा के प्रभावी संचालन तथा उनके सुलह करने व निर्णय की भूमिका विषय पर अधिवक्ता जिला न्यायालय दुर्ग श्री गौरव सतपथी से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थी रमा शंकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: से हाँ यार पत्रकार जो हूँ तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर मुझे एक ऐसे 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी तरह की स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम पता फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है। बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
2: अरे गोपाल जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है दिन भर बैठकर मक्खी मारता।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब।

0: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश भर में आज चलाया गया व्यापक पौधारोपण अभियान। नई दिल्ली में आयोजित वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों को जारी किया वित्तीय आवंटन। और दंतेवाड़ा और कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे गए हथियार और विस्फोटक बरामद किए। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
1: वर्तमान वर्ष अगर ग्रीन गैस का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: राज्य में मानसून के दौरान औद्योगिक इकाइयों द्वारा संचालित वृक्षारोपण कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए आज रायपुर में पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने 31 जुलाई तक वृक्षारोपण के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। श्री चौधरी ने कहा कि वृक्षारोपण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाए तथा पोर्टल पर समयबद्ध प्रविष्टि अनिवार्य की जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र कल सुबह 11 बजे से शुरू होगा। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र के दौरान प्रश्नकाल तथा वित्तीय कार्यों के साथ ही 8 से अधिक संशोधन विधेयकों पर चर्चा और विचार किया जाएगा। इस बीच मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की अध्यक्षता में आज रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर दिया गया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को वित्तीय आवंटन जारी किया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए महापौर अध्यक्ष निधि के साथ ही पार्षद निधि की पहली किश्त के रूप में 50% राशि हस्तांतरित करने का आदेश जारी किया गया है। दोनों मदों को मिलाकर कुल 104,54,25,000 रुपए की राशि बैंकों के माध्यम से सीधे निकायों के खातों में भेजी जा रही है। प्रदेश में मोर गांव मोर पानी अभियान के जरिए जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जा रहा है। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत सभी जिलों में रोजगार, जल संरक्षण और हरित विकास के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के ग्राम पंचायत बर्दर में जन सम्मेलन, एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण और जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पौधारोपण किया और कंटूर ट्रेंच की खुदाई कर जल संरक्षण का संदेश दिया। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत बर्दर में 52 एकड़ क्षेत्र में समेकित जल संरक्षण और हरित विकास मॉडल विकसित किया जा रहा है। यहां जल संरक्षण के साथ ही करीब 2000 पौधे लगाए जा रहे हैं। मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत किए गए कार्यों से इस क्षेत्र में लगभग 200 लाख लीटर भू जल रिचार्ज क्षमता विकसित हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम

हाल ही में आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटे माओवादियों की निशानदेही पर बारसूर थाना क्षेत्र के तोरमा जंगल में की गई। सर्च अभियान में लगभग 16 लाख रुपए मूल्य के 116 ग्राम सोने के बिस्किट, 2 लाख रुपए नगद, इंसास राइफल, मैगजीन, कारतूस, बंदूकें, टिफिन बम, पाइप बम, हैंड ग्रेनेड, वर्दी और अन्य सामग्री बरामद की गई। वहीं कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र के ग्राम आलपरस और गुंचूर के बीच जंगल पहाड़ी क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया डंप बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में डीआरजी, बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम द्वारा सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जमीन के भीतर छिपाकर रखे गए हथियार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नक्सली सामग्री बरामद हुई है। इनमें 2 .303 राइफल, 32 राउंड कारतूस, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 3 वायरलेस बैटरियां, रेडियो और नक्सली साहित्य शामिल है। मोहला मानपुर जिले में आज कोरकोटी मदनवाड़ा नक्सल हमले की 17वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जिले के पुलिस रक्षित केंद्र मोहला में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आईटीबीपी के अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिले के विभिन्न थानों और गाँव में भी श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गयी। इस अवसर पर मोहला और औंधी में रक्तदान शिविर भी लगाए गए। गौरतलब है कि 12 जुलाई 2009 को मदनवाड़ा क्षेत्र में हुए नक्सल हमले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित 29 जवान शहीद हो गए थे। जशपुर में तपकरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा कुनकुरी मार्ग पर लवाकेरा के पास कल एक तेज रफ्तार हाईवा और कार के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उधर सरगुजा जिले के मैनपाट में कल 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने से हुई टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य हादसे में अंबिकापुर सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में सेदम के पास मोटरसाइकिल से जा रहे एक दंपत्ति को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जांजगीर चांपा जिले के बुचहरदी गांव में 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में 2 बच्चों सहित 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन विभाग की टीम ने जांजगीर चांपा जिले में वन्य जीवों के अवैध शिकार और तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बमनीडी ब्लॉक के गोविंदा गांव निवासी इन लोगों पर संरक्षित वन्य जीव गो का शिकार कर उसके नाखून निकालकर अवैध रूप से बेचने का आरोप है। सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो की जांच के दौरान जब वन विभाग की टीम गांव पहुंची तो शिवराम गोंड नामक आरोपी के घर संरक्षित वन्यजीव गो बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गो के नाखून निकालकर उसे ऊंचे दाम में बेचने की तैयारी थी। आरोपी के निशानदेही पर उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जांजगीर कोर्ट में पेश किया गया है, जहाँ से उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। राजधानी रायपुर के माना कैंप स्थित शूटिंग रेंज में कल 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग मीट का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर के निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में विंग कमांडर विवेक कुमार साहू शामिल हुए। इस राज्य शूटिंग मीट में पुरुष और महिला वर्ग के साथ अलग अलग आयु समूहों में मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग और प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में भिलाई नगर के बीच स्थित कुर्सीपार रेलवे संपार फाटक पर मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके चलते 14 जुलाई की सुबह 8 बजे से 24 जुलाई की रात 8 बजे तक इस फाटक पर सड़क यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की पुलिस ने 8.65 करोड़ रुपए से अधिक की ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले में भिलाई के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। और जशपुर जिले के 4 वन परिक्षेत्रों में इन दिनों लगभग 32 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे हाथियों के विचरण वाले क्षेत्रों में न जाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभर में आज चलाया गया व्यापक पौधारोपण अभियान। नई दिल्ली में आयोजित वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान,

कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों को जारी किया वित्तीय आवंटन और दंतेवाड़ा और कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक बरामद किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: मेरे दूसरे खाते में रखे थे?
1: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
2: तो बैंक जाके वीडियो के बाद

यह आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं। अब पेश है चित्रपट संगीत।

निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में ये था पीयूष मिश्रा का लिखा गीत। संगीत सलीम सुलेमान का था। फिल्म थी आ जा नचले। और लीजिए अब सुनिए एक सूचना। श्रोताओं, आगामी मंगलवार 14 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय होगा नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारी स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे मनीषा खापड़े, विषय वस्तु विशेषज्ञ मत्स्यकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 14 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। चित्रपट संगीत का अगला गीत श्रीराम और शिल्पा राव की आवाजों में। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार प्रीतम। फिल्म है ये जवानी है दीवानी।

रेडी फिल्म का ये गीत था, तुलसी कुमार और केके की आवाजों में। नीलेश मिश्रा के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया प्रीतम ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत तुम मिले फिल्म से, आवाज नीरज श्रीधर की, गीत कुमार का, संगीत है प्रीतम का।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसानों का कार्यक्रम चौपाल।

0: सबो रुख लगाबो धरती दाई के मान बढ़ाबो हरियाली रहे सदा हमर संग सुख समृद्धि भरे हमर जम्मू खुशी के रंग यही गोट से नीतू शर्मा
1: और मोनिका जैन के
0: मोनिका जैन गोट तो बड़ पोट करे सिर तो मरे की बरस गए बदरिया चारों मुड़ा हरियर हरियर बड़ सुघर लुगरा उड़े हमर धरती दाई है अतका सुंदर दिखा थे कि प्रकृति के बीच में रह रहे ऐसे लागत है अब अभी तो देखता ना कि सब जन घूमे घूमे बरता को जावा था
1: हाँ। ये बेरा तो होते नहीं तो जी देख का होते ना कि ये बेरा माँ एक तो का लैका मन के स्कूल की उतना काम पता नहीं रहा है तो लैका मन के घूमना भी हो जाते है संगे संग हम बड़े मनखे मन के घूमे का भी एक जन बेरा होते ना वो ये होते काबर के गर्मी के दिन में कहूँ जाबे तो गर्मी परेशान हो जाए जाड़ा के दिन में जाबे तो जाड़ा पर तैयारी करके जाए
0: चिंता न रहे तो ऐसे है कि जब पर्यावरण के बीच में रहबे ना तब बड़ मन हा खुशी अंतस में भर जाते
1: माने बाहर हरियर हरियर रहते तो हमरो मन में हरियाली आ जाते
0: फिर हरियाली रहे बर का करना है मालूम है ऐसे की बताएं कि अब बड़ा कन उद्यम करे बर पड़ते हम अंत करते नहीं हम अब जिन किसान संगवारी है वहू मन हा बड़ा कन उद्यम करते है नहीं
1: भाई ऐसे है कि अब जिन हमारे किसान संगवारी मन की बात करत है तो ये मन बहुत छोटे बड़े बात के ध्यान रखते खेत खातिर मैंने देख खेत में जब मन बोई करते तो घर पहले बीज उपचार माटी के जांच करवाते फिर उखर बाद अब बीजल बोना है तो उखर बार नवा तकनीक ला अपना थे कतकुन बखत ऐसे है कि अगर खरपतवार आ गए तो ओला जिला मनिंदा के थे ओला निकाले खातिर सरी उदिम ला करते मैंने कह जाए कि हर छोटे छोटे बात ला ध्यान में रखा तो खेती किसानी के काम बता ला करते और इसने एक काम होते कीड़ा बीमारी ला भगाए खातिर कीटनाशक के उपयोग करेगी
0: ये तो बात सिर तो नहीं कि कीटनाशक के जो उपयोग करथन ना तो देखथन तो दो प्रकार ले करथन एक तो रासायनिक रहते तो जैविक रहते तो विशेषज्ञ सलाह देते कि जब भी हम कीटनाशक या खरपतवार नाशक के उपयोग करन तो विशेष कर से हाथ मात लेने निकालन है ना और जब जरूरत पड़े अब्बड़ बाढ़ गए तभी हम कीटनाशक के उपयोग करन वैसे तो जिन जैविक कीटनाशक या खरपतवार नाशक हमें कहे जाते कि नुकसान बहुत कमती होते हैं समस्या भी बहुत कमती होती है नहीं के बराबर होते लेकिन जब रासायनिक कीटनाशक या खरपतवार नाशक के उपयोग करता ना तो उखर बेरा बहुत अकन बात के ध्यान तको रखना चाहिए ऐसे विशेषज्ञ
1: और एक बात ये होते कि विशेषज्ञ मन ना विशेष करके एक सलाह देते कि भाई आप मन दवाई ला तभी उपयोग करो जब उखर बहुत ज्यादा जरूरत है मैंने ये कहा जाए कि आप मन एक सही मात्रा जैसे हम ही मन कभी बीमार पड़ गए या कोई चीज की दवाई ले रहे तो ऐसे कि नहीं कि एक ही साथ दर्द दवाई खा लो भाई उखर एक निश्चित मात्रा होते हैं तो वही स्नेह जब हम खेत में एक तरह से देखे जाए तो उखर उपचार करे खातिर ही हमारे कीटनाशक की दवाई उपयोग करा था तो उखर एक निश्चित मात्रा रही थी कि भाई इतना बेरा में डालना है इतना बेरा के एक मात्रा लेना है ये सब बात ला ध्यान रख के ही हमला वो खर उपयोग करना चाहिए
0: संगे संग उनका अलग अलग खरपतवार बार या अलग अलग कीट जो है खर बार अलग अलग दवाई आती है तो उला उपयोग करे के पहले हमारे किसान भाई मल्ला चाहिए कि हमें जन लिखा रहे थे डब्बा खरीदने या पाकिट खरीदा हमें लिखा रहे थे हमें बहुत अकन बात लिखा रहे थे हमें दिशा निर्देश दे रहे थे कि कैसे उपयोग करना है कब का उपयोग करना है कब तक उपयोग करना है जब वो बात लिखा रहे थे तो ये जो निर्देश वाला बहुत अकन बात ला हमला अच्छा से ध्यान से पढ़ के उपयोग करना चाहिए
1: कतकुन वक्त ऐसे होते हैं कि हमारे कतकुन सिंगवारी संगवारी मन नहीं पढ़ पाए तो ये है कि दूसरे ले सलाह ले सकते हैं जिन्हें खुद उपयोग करा थे अब ये है कि जैसे हवा चलते ना तो हवा के मतलब कहें कि विपरीत दिशा में होके मतलब वो दवाई के छिड़काव करना चाहिए ऐसे ऐसा हुआ है कि हम उन्हें डाल रहे हैं हवा के संगे संग हमरो आंखी कान में घुस जाते तो ये सब बात के ध्यान रखना चाहिए
0: अब जैसे बात करी इसमें दवाई के छिड़काव के वो बेरा में यह बात के ध्यान रखना चाहिए कि बने असन हाथ ला मुंह ला आंखी में चश्मा लगा ले हाथ में दस्ताना पहने बने असन मुंह ला बने ढांप ले और बाद दवाई के छिड़काव करें
1: मैंने शरीर जिन एक तरह से सुरक्षित जितना हम अपन आप ला बना सकते हैं वो कामला करें फिर ये बात भी है कि भाई दवाई जैसे बांच गए पूरा का दवाई तो उपयोग हो नहीं पाए कतकुन बखत बांच जाते तो उला रखे की भी एक व्यवस्था होते जिला हमला करना होते सबसे पहली बात तो ये थी ना कि लैका मन के हाथ में झनावा है काबर की आजकल लैका मन बड़ होते ही होते
0: बड़ा कुछ में रखना चाहिए
1: तो कहीं भी देख ले पता चले इसकी उखर रंग बिरंगा डिब्बा है तो उला खेत में उपयोग कर ले तो ये बात के ध्यान रखन या तो फिर लैका मन ले वो बात के शुरू से मन ले समझावन की देखो ये सही चीज है फिर हमारे मन की खेले की चीज नहीं है और दूसरी बात ये कि जब इला रखा था तो जैसे मर पशुधन वाले जिन पशुपालक संगवारी मन है तो वो मन ये बात के ध्यान रखे कि ओखर आस पास ये झंडा रहे भाई कभी भी ऐसे हो सकते कोनो कारण ले लुढ़क गए तो फिर ओखर जिन विषैला जनिक रसायन है वो तो हवा में आबिच करी कहूँ पानी में चल गए
0: संजय सर पानी के जो स्रोत है ना अभी तो बरसात के महीना कोनो था चूहे तक को घर है ना पानी के स्रोत में भी हो सकते कि कभी थोड़ा बहुत अगर ढकला गए चाहिए या खुल गए तो पानी के स्रोत में अगर चल दिस तो यह नुकसान के
1: बहुत
0: तो पानी के स्रोत के जगह में हमला नहीं रखना चाहिए। संगे संग अगर खाली डिब्बा है तो पानी के स्रोत में जैसे नदियां तरिया फेंक देते ना तो वैसे तको नहीं करना चाहिए।
1: और एक ठीन बात और ध्यान रखो संगवारी हो कि जो डब्बा होते है वहाँ अलग अलग एक रंग के बिंदु बने होते मैंने ये बताते है कि वो कितना ज्यादा मतलब जैविक हवा या कितना ज्यादा कम रसायन वाले हवा जैसे हरियर है तो भाई ये तो साफ पता चला थे कि वहाँ ज्यादा नुकसान पहुंचाइए दवाई नहीं है फिर अगर वो लाल है तो वो मैं ज्यादा नुकसान पहुंचाइए दवाई है तो ये घर मन की मात्रा के विशेष ध्यान रखना हमारे मन की बहुत जरूरी काज है।
0: संगे संग दवाई छिड़के के बाद अगर मुंह हाथ में थोड़ा चल दी नहीं तो जलन वलन हुआ थे खजवावा थे तो वो बेरा तो पहले तो बने असन हाथ मोला बने साबुन से बने असन धो लेना चाहिए और जरूरत पड़े तो डॉक्टर के सलाह तक लेना चाहिए। मोनिका ये रकम ले सही तरीका ले खरपतवार नाशक या कीटनाशक के उपयोग करे ले फसल सुरक्षित रहते पर्यावरण के नुकसान कम होते और किसान के स्वास्थ्य घलो बने रहते है नहीं।

नीतू दी, हमें पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के सुरक्षा, खेत खलिहान के सुरक्षा, फसल की गुणवत्ता और हमारे स्वास्थ्य की बात करें। संगे संग हमारे किसान संगवारी मन जब कीटनाशी के उपयोग करते तो का सावधानी बरतना चाहिए यू गोट करें। फिर देखो हमारे गोट ले जुड़े सुगर एक गीत सुनता और संगवारी मल्ला घला सुनवा था, जिला गाय है पंचराम मिर्जा।

0: ये सुघर गीत में अपन स्वर दे रही ने पंचरा मिर्जा ओखर संगवारी
1: कितना सुघर गीत रही से कि भाई अभी बेरा बखत है तो बने पौधा लगाना चाहिए पहले जब पेड़ बनते रिकम के फल फलारी देख देते तो हमारे स्वाद और स्वास्थ्य दोनों बार लाभ के होते भाई आज जिन हमारे क्रम है आज की सलाह एवं हम यही लगभग विषय ले जुड़े हमारे विषय ले को ये कि नवा जिन फल बाग होते उखर स्थापना खातिर हम नियोजन उखर प्रबंधन कौन ढंग कर सकते हैं और ये खातिर विशेषज्ञ ही डॉक्टर कुंतल साटकर जी हैं। आप मन सहायक प्राध्यापक हैं फल विज्ञान विभाग कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र गरियाबंद में और आप सब गुड बात करे हैं मन नीतू दीदी तो सुनथन क्रम आज की सलाह आप मन लगे विशेष जानकारी जिन्हें लाभ की जानकारी है सुना था
0: बरसात आ गए है और बेरा है पेड़ लगाए के तब पेड़ जब लगाए के गोट होते तब फलदार पेड़ लगाना हम किसान भाई मन बर या कोई भी मनखे उखर मन बर बड़ फायदा के होते आम जाम अनार केला पपीता जैसे जम्मो पेड़ हमला साल भर आमदनी देते और जब आमदनी अच्छा होते ना संगवारी हो तब कथे कि जीवन तक बने होते लेकिन जब हर किसान भाई मन को मनखे अगर फलदार उद्यान लगाना चाहते या फल के उद्यान लगाना चाहते तो उनला उखर बार का क्या करना चाहिए ये बात ला जानना बहुत जरूरी होते तो यही बात ला ध्यान में रखत हुए तब आज की सलाह में हम यहाँ जानकारी लेता बड़ा फल उद्यान की स्थापना बर नियोजन और प्रबंधन ये विषय में जानकारी दे बर हमारे बीच है डॉक्टर कुंतल साटकर ये हमारे सहायक प्राध्यापक फल विज्ञान विभाग कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र गरियाबंद ले राम राम डॉक्टर कुंतल जी
2: नमस्कार मैम
0: सबले पहली तो हमारे संगवारी मल्ला ये बताते हो आप मन हाँ कि अगर हमारे संगवारी मन हाँ फल उद्यान लगाना चाहते तो उखर बर सही बेरा कौन से है
2: जिन किसान भाइयों को नया फल उद्यान लगाने की इच्छा प्रबल है तो उनके लिए यह समय सर्वोत्तम है चूँकि फल उद्यान एक लंबी अवधि है तो इस समय जब आप नया फल बाग लगाना शुरुआत करेंगे तो उसका नियोजन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बारिश के दिन नजदीक आ रहे हैं वर्षा ऋतु शुरू हो रही है तो यह समय नए फल उद्यान लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा
0: तो मतलब अभी बरसात के दिन मौसम है अगर हमारे संगवारी मन फल उद्यान लगाना चाहते तो ये बेरा कर सका थे हमारे संगवारी मन बेरा तो जान गए कि कौन समय लगाना है पर ये बताते कि ओ मन फल उद्यान अगर लगाना है तो हर बार जगह के चुनाव को रकम लेकर है
2: फल बाग लगाने के लिए किसान भाइयों सबसे जरूरी है कि आप कौन सी जगह ले रहे हैं वह जो बाग लगाने की जगह है वह पक्की सड़क के पास होना चाहिए ताकि हम जो उपज प्राप्त करेंगे उसका ट्रांसपोर्टेशन उसका लाना ले जाना उसको कोई एक अच्छा मार्केट मिल सके और खेत के चुनाव में खेत में 2 मीटर तक किसी प्रकार की सख्त सतह ना हो स्थान का चुनाव करने के पश्चात वहाँ के झाड़ीदार पौधों को निकाल देंगे 3 से 4 गहरी जुताई करके पाटा लगा देंगे और फिर फसल का चुनाव भूमि और पानी की जांच के आधार पर ही करेंगे
0: अब हमारे संगवारी मल्ला आगू बताते हो डॉक्टर कुंतल जी कि नवा फल बाग लगाए के पहले उमल्ला कौन कौन से बात के ध्यान रखना चाहिए
2: जब भी किसान भाई नया फल लगाने की शुरुआत करना चाहते हैं कोई एक बाग स्थापित करना चाहते हैं उसके पहले सबसे उन्हें मिट्टी की जाँच करनी पड़ेगी जिसके लिए मृदा परीक्षण बहुत ही अनिवार्य है इसके बाद उन्हें इस बात का ध्यान रखना है वहाँ जल की अनुकूल व्यवस्था हो ताकि उनको बाग में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो लगाने जा रहे हैं वहाँ पहले किस तरह की फसल लगाई जाती थी इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए किसान भाई आगे बढ़ सकते हैं
0: तो ये तो बात हुई भाई ध्यान रखे वाली बात है ना फिर अब हमारे संगवारी मल्ला ये बताते हो कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से फल लगाने फल मंडल उपयुक्त हो ही
2: जी फल बाग लगाने के लिए जो जलवायु है उसको 3 तरीकों से गिना देखा जा सकता है एक उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु होती है जिसके अनुसार अगर उष्णकटिबंधीय जलवायु है तो उसमें आम अमरूद पपीता केला इस प्रकार के फल लिए जा सकते हैं उसी प्रकार अगर उपोष्ण जलवायु है तो उसमें नींबू अनार ये लिए जा सकते हैं एवं शीतोष्ण जलवायु में सेब नाशपाती आड़ू इस प्रकार के फल हमारे किसान भाई ले सकते हैं
0: अब उमन हाँ फल के चुनाव कर रही जगह के भी चुनाव कर रही आप ये बताते हो कि उमन हाँ खेत की तैयारी करना है तो उमन हाँ कैसे तैयारी करें
2: सबसे पहले तो जिस तरह से मैंने किसान भाइयों को बताया कि जो आप बागान के लिए जगह निर्धारित करेंगे वह
0: पक्की सड़क या किसी रास्ते के जो किसी मार्केट के पास जाती है उसके पास होना चाहिए। फिर उस स्थान का चुनाव के पश्चात उस खेत को पूरी तरह से वहां से झाड़ीदार पौधों को निकाल देंगे। उसके बाद 3 से 4 गहरी जुताई करके पाटा लगा देंगे। फसल का चुनाव भूमि एवं पानी की जांच के अनुसार वह फिर फसल को चुन सकते हैं।
2: अब ये बताते हो हमारे किसान भाई मन्ना कि हम खेत की तैयारी कर रही, माटी परीक्षण भी कर रही है ना, और फल के चयन भी कर रही। अब बात आते फल के जो पौधा है ओला कहाँ से ले जाए, तो हमारे संगवारी मतलब बढ़िया विस्तार ले बताते हो कि उमन हाँ फल के पौधा ला कौन मेरे लिए बिसावे या कहाँ से लेवाए।
0: अभी के जो समय है इस तरह ऐसा है कि बहुत से नए नए फल आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे आम में बहुत सी वैरायटीज, बहुत सी नई नई किस्में किसान भाइयों को मिल जाती हैं, तो वो उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं और नए किस्मों की तरफ पहले बढ़ जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ पहले से ही बहुत सी अच्छी किस्में उपलब्ध हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने आम महोत्सव में देखे होंगे हजारों प्रकार की किस्में वहाँ पे उपलब्ध हैं। बस किसी भी तरह से चूंकि वो मार्केट में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है तो हम उसकी तरफ बढ़ जा रहे हैं, उस किस्म को अपनाने के लिए चले जा रहे हैं। फिर जो पौधा, अब जब हम पौधा जब लेकर आते हैं तब हमें समझ नहीं आता कि वह किस किस्म का, किस वैरायटी का पौधा है। जब उसमें फल आते हैं तब हमें समझ आने लग जाता है। तो कई बार किसान भाई उस माया के भ्रम में मैं कहूंगी कि गलत पौधों का चुनाव कर लेते हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगी कि जब भी वह पौधे लेकर आए तो हमेशा किसी अधिकृत नर्सरी, सर्टिफाइड नर्सरी से, या फिर आप हमारे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में भी हमारे यहाँ नर्सरी है वहाँ से भी आप पौधे ले सकते हैं। वह एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड नर्सरी से ही होना चाहिए, तब वह एक सही आपको वैरायटी मिली है, सही किस्म आपको मिला हुआ, इस बात की निश्चितता आपको होगी।
2: एक हम शब्द सुने पर मिलते हैं ट्रेनिंग या प्रूनिंग, ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग का है और कब करना चाहिए?
0: ट्रेनिंग और प्रूनिंग नाम बहुत प्रचलित है मैम कि

0: कटाई,
1: हाँ
0: जब उसके बारे में बात करते हैं तो लोग कटाई छटाई करेंगे इस तरह से बोलते हैं और वह सब एक ही तरीके से कर देते हैं, पौधा लेते हैं काट देते हैं। पर मैं आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहूंगी कि ये कटाई और छटाई, ट्रिमिंग और प्रूनिंग जैसा आपने कहा, ये एक तरीका है कि हमारे फल जो पौधा है उसमें किस तरह से ज्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। ट्रिमिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें पौधों को कटाई की जाती है और उनको एक आकार दिया जाता है, एक शेप दिया जाता है, जिससे कि पूरी तरह से अंदर तक सूर्य की किरणें हर एक शाखा तक पहुंच सके। जब सूर्य की किरणें अंदर तक पहुंचेंगी तो उस तरह से बीमारी होने की चांसेस कम हो जाते हैं, बीमारियां नहीं होती हैं। अंदर तक अगर सूर्य की किरणें जाती हैं तो पूरी तरह से फल जो है उसकी उत्पादकता, पौधे की जो उत्पादकता है वह बढ़ जाती है। फिर आता है प्रूनिंग। प्रूनिंग में है कि जब उसको शेप देने के साथ साथ उसको यील्ड को, उसकी उपज को बढ़ाने के लिए भी हमारा पूरा ध्यान होता है, जिसमें शाखाएं होती हैं उसको हटा दिया जाता है, कुछ अगर ऐसे तने होते हैं जिसमें बीमारियां होती हैं उसको हटा दिया जाता है। इस तरह से हम अपने पौधे को पूरी तरह से एक अच्छा, एक ज्यादा उपज देने वाले पौधे के रूप में तैयार करते हैं।
1: जी जी, अब बात आते पौधा मा जल या सिंचाई दे के बात आते, तो जल के संरक्षण करना है हमला और सिंचाई भी बनेसन करना है, तो ऐसे में फल उद्यान में कौन रकम के सिंचाई पद्धति हमला करना चाहिए?
0: अगर मैम, आप लोगों ने बहुत से तरीके देखे होंगे, सुने होंगे कि खेत में किसान भाई, कई किसान भाई, मैं ही नहीं कहूंगी कि हर किसान भाई, कि पूरी तरह से पानी छोड़ देते हैं और वो बहुत मात्रा में पानी उस तरह से वेस्ट हो जाता है,
1: तो नाली बनाकर
0: छोड़ देते हैं। तो उसके लिए अभी सबसे अच्छा तरीका है टपक सिंचाई, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। टपक सिंचाई नाम ही कह रहा है, टपक टपक मतलब बूंद बूंद। तो उसमें ऐसा होता है कि जड़ के पास में ही टपक टपक करके बूंद बूंद में जितनी पौधे को आवश्यकता है उतनी पानी, उतना पानी उस पौधे को दिया जाता है। इससे पानी का बहुत ज्यादा नुकसान होने से बच जाता है और उसी तरह खर्चा भी कम लग जाता है हमारे किसान भाइयों को, और जितनी पौधे की आवश्यकता है उतना ही पानी उसे मिल पाता है और उससे उपज में भी हमें बहुत अंतर देखने को मिलता है।
1: मतलब टपक सिंचाई जो है वो फल उद्यान पर सबसे बढ़िया है।
0: सबसे बढ़िया है।
1: अब ये बताते हो कि अगर किसान भाई मन हा पौधा लेवा थे तो वायु रोधक पौधा कौन कौन से होते और ओला कौन प्रकार से मन हा लगा सकते?
0: वायु रोधक पौधे उस तरह के पौधे होते हैं जैसा नाम कह रहा है, वायु रोधक। वायु अत्यधिक अगर तेज वायु आ रही है, हवा की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उसको रोकने के लिए पौधे लगाए जाते हैं। अब हम कहेंगे कि वायु रोधक क्यों? क्योंकि अगर हमारे खेत में अगर बहुत तेज हवा आती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे पौधों में लगे हुए फल को नुकसान देती है। तो इसके लिए हमें पहले ही वो तैयारी कर लेनी है कि जब हम फलदार लगाएं तो उसके किनारों पर मोस्टली उत्तर पश्चिम दिशा में एक या दो लाइन, एक या दो कतार में आप वायु रोधी पौधे लगा दें। वायु रोधी पौधे होते क्या है? वो ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे खेत में पौधे लगे हुए हैं, फल बाग में जो फल के पौधे लगे हुए हैं उससे उनकी ऊंचाई ज्यादा होती है और उनको पानी की आवश्यकता भी कम होती है। तो आप अपने फल बाग के बाजू में एक या दो लाइन में वायुरोधी पौधे लगा सकते हैं, जिसमें कि मैं कुछ नाम बताना चाहूंगी, जामुन हो गया, शहतूत हो गया, कटहल हो गया, शीशम हो गया, खीरी, ये सारे पौधे लगा सकते हैं जिससे बहुत ज्यादा हवा हमारे खेत में नहीं आएगी और हमारे फल को, कई बार गर्म हवा से भी फल को नुकसान हो जाता है तो वह होने से बचेगा।
1: जी जी, अब जब हमारे संगवारी मन हा फल उद्यान लगा दिस तब उमल्ला गोरा रही थे भाई कि उमल्ला आमदनी होए, तो हमारे संगवारी मल्ला ये बताते हो कि फल उद्यान मा कतका बछर मा लाभ मिलना शुरू हो जाते?
0: ऐसा है मैडम कि फल बाग में तुरंत तो लाभ नहीं मिलता है, कम से कम 4 से 5 साल के बाद ही उसमें फल आना प्राप्त होता है। तो अब किसान भाइयों के मन में प्रश्न आ सकता है कि हमने जब नया बाग लगाया है, 4 से 5 साल के बाद उसमें फल आएगा, तो हम किस तरह से उसमें से आमदनी पाए उस बीच में? तो हमने जो बाग लगाया है उसके बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसमें हम अंतर्वर्ती फसलों को लगा सकते हैं, जिसमें आप सब्जियां लगा सकते हैं, दलहनी फसलें लगा सकते हैं, जो कि आपको मेन जो आपके फलबाग है, फल के जो आपकी फसल है, उसके साथ साथ आपको एक आमदनी का एक साधन भी बन पाएगा।
1: डॉक्टर कुंतल सातकर जी, हमारे संगवारी मल्ला आप मन हा और कुछ विशेष जानकारी देना चाहता तो बतावा।
0: जी मैडम, जैसे कि मैंने कहा कि फल लगाने के पहले आप मृदा परीक्षण करेंगे, तो जब आपको पता चल जाता है, आपके मिट्टी की जांच हो जाती है, आपको समझ आ जाता है कि हमारी मिट्टी किस प्रकार की है, कि वह लवणीय है, अत्यधिक लवणीय है, मध्यम लवणीय है, किस प्रकार की है। अब आप जब उसके बाद ही आप ये निश्चित कर सकते हैं कि आपको किस तरह के फल हमारे खेत में लगाने हैं। मान लीजिए आपके खेत की अगर मिट्टी अत्यधिक लवणीय है, उस अवस्था में आप खजूर लगा सकते हैं, जामुन के पौधे और बेर के पौधे की तरफ जा सकते हैं। अगर वह मध्यम लवणीय है तो आंवला, फालसा, अमरूद, अंजीर और अनार। निम्न वर्गीय है अगर मिट्टी आपकी, तो आप नींबू वर्गीय पौधे लगा सकते हैं और आम के पौधे भी लगा सकते हैं। अब आपने मिट्टी देख ली, आपने पानी देख लिया, अब पौधे लगाना है। तो पौधे लगाने के पहले हम खेत की तैयारी भी कर लिए, तो किस तरह से लगाएंगे। नए फलों का बगीचा लगाने में सर्वाधिक वर्गाकार प्रणाली उपयोग में लाई जाती है। हेज या वायुवृत्ति पौधों की पंक्ति लगाकर आप दूरी छोड़ेंगे, फिर उसके बाद रेखांकन का कार्य शुरू हो जाएगा, जिसमें प्रतिकूल फल वाले वृक्षों के ऊपर ना पड़े ऐसे आप वायुरोधी पौधे लगाएंगे। चार कोनों में पौधे लगाते हैं और उसके बीच की दूरी पौधे से पौधे और लाइन के बीच की दूरी इस विधि से सेम होती है। ये सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है पौधे लगाने के लिए फल बाग में। इससे जैसे मैंने कहा कि ड्रिप टपक सिंचाई जो है उसके लिए पाइपलाइन बिछाना भी किसानों के लिए आसान हो जाता है, अगर आप आयताकार और वर्गाकार विधि में अगर पौधों को लगाते हैं। ये एक हो गया। दूसरी बात कि जब आप पौधे लगाएंगे, आपने जगह डिसाइड कर ली, जगह चुन ली कि यहाँ पे लगाना है, तो अब आपको वहाँ पर एक गड्ढा बनाना पड़ेगा। आप बनाएंगे अगर बड़े पौधे हैं तो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का गड्ढा करेंगे, और अगर मध्यम आकार के और छोटे पौधे हैं तो 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर, मतलब आपकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई, उस तरह से आप मिट्टी निकालेंगे। फिर जब मिट्टी निकालेंगे तो ऊपर की आधी मिट्टी एक साइड रखेंगे और नीचे की आधी मिट्टी एक साइड रखेंगे। उसके बाद आप उस गड्ढों को उसमें आप मिलाएंगे, खाद मिलाया जाएगा, जिसमें की है गोबर खाद मिलाया जाएगा और SSP जिसे कहते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट। आप कम से कम 20 से 25 किलो गोबर खाद, 11 से 12 किलो SSP और कम से कम आधा किलो नीम की खली मिलाएंगे पौधे लगाने के पहले। इससे ये होगा कि उसमें दीमक और जो भी फंगस है उसका इन्फेक्शन, उसका प्रभाव नहीं होगा। उसके बाद आप कम से कम 10 दिन के लिए उन गड्ढों को उसी तरह छोड़ देंगे। उसके बाद में 15 दिन के बाद धूप में, कड़ी धूप में रहने देंगे। उसके बाद किसान भाई उसमें फल लगाना शुरुआत कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर कुंतल सातकर जी, आज आप मन हमारे संगवारी मल्ला नवा फल उद्यान के स्थापना पर नियोजन और प्रबंधन ये विषय में बड़ ही सुघर ढंग ले जानकारी दे और हमारे बीच में आए, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
1: आज की सलाह ये क्रम में अभी सुनें नए फल बाग की स्थापना हेतु नियोजन एवं प्रबंधन जानकारी देवत रहे डॉक्टर कुंतल सातकर, सहायक प्राध्यापक फल विज्ञान विभाग कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र गरिया बंदले।
2: गुड बात करत रही हमर नीतू जी। नीतू जी, हमर संगवारी मन खातिर एक सूचना है।
1: हां भाई,
2: सूचना है हमर क्रम हेलो किसान वाणी खातिर। संगवारी मल्ला बता देथन, संगवारी हो अवैया मंगलवार माने 14 जुलाई 2026 के प्रसारित होइया हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में इधर के विषय होई नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन। ये विषय में आपन की समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमारे संग स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हो ही मनीषा खापाटी, विषय वस्तु विशेषज्ञ मत्स्यिकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी। आपन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमारा फोन कर सकते हो। हमारा फोन नंबर है, पहली फोन नंबर है 400-3482, दूसरा फोन नंबर है 400-3483 और तीसरा फोन नंबर है 400-3484। रायपुर के स्टडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 14 जुलाई 2026 के बिहनिया 11:30 से 12 बजे तक और ये कार्यक्रम के प्रसारण मंगलवार मैंने उसी दिन संध्या 7:30 में होगी। तो भाई आप मन के फोन कॉल के अवरोध रही, कुछ सूचना नीचे सिरावत है।
0: मोनिका बेरा है आज के प्रश्न बताए के माने कृषक प्रश्न मंच क्रम के। तो संगवारी

0: रही हूँ, ये सुगर सुगर गीत सुने लो। आप जिला गावत रही है गोरेलाल बर्मन और संगवारी मन।
1: मोनिका देख भाई गोड़ बात करत जाए के बड़ा हो गया, घड़ी के इशारा हो गया। जाती बिराती बता देते हैं काली के कार्यक्रम। काली चौपाल में आज की बात के संक्रम आज की सलाह में नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का फसलों पर उपयोग विधि एवं लाभ ये विषय में जानकारी सुनियो। विशेषज्ञ हुए राजेश कुमार गोले और संगे संग क्रम कृषक प्रश्न मंच के संग गीत संगीत के रंग तको बगर ही आपके द्वारी संगवारी हो तकाली फिर भेंट हुई। तब तक नीतू शर्मा
0: और मोनिका देव की राम राम।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम चौपाल, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं चित्रपट संगीत।

श्रेया घोषाल की आवाज में ये था इरशाद कामिल का लिखा गीत। संगीत अमाल मलिक का था। फिल्म थी कबीर सिंह। कार्यक्रम का अगला गीत भाग चौनी फिल्म से। आवाज सुनील कामत की, गीत अमिताभ वर्मा का, संगीत मिथुन का।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए काशी फिल्म का गाना सोनू निगम और पलक मुच्छल की आवाजों में। गीत अभेंद्र उपाध्याय का है, संगीत है अंकित तिवारी का।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रही थी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 होने को है। स्वर धरोहर कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: ratan.
1: Nossa, nossa, nossa.
0: Que um ratan be ratan.
1: Santa, santa.
0: मैंने वंदे मातरम को मूल गीत की भावना के साथ कुछ नया लिखने का प्रयास कर तो नई कोशिश है और कुछ निर्दोष हो सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है प्रवीण जी, स्वागत है आपका,
0: धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जननी जन्म भूमि का वंदन आओ कर ले हम, जननी जन्म भूमि का वंदन आओ कर ले हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, राम कृष्ण को मातृभूमि से स्वर्ग लगा फीका फीका, राम कृष्ण को मातृभूमि से स्वर्ग लगा फीका फीका, चूमे चरण चंदनी भूके भाल लगा केसर टीका, सुर नर मुनि तरसा करते, सुर नर मुनि तरसा करते, पाने को जहां जन्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शीश हिमालय मुकुट सुशोभित सागर पांव पखार रहा, शीश हिमालय मुकुट सुशोभित सागर पांव पखार रहा, चीर अटक से कटक तलक धरती का रूप सवार रहा, भारत माता जग विख्याता, भारत माता जग विख्याता, अद्वितीय अनुपम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सूरज की पहली किरणें नित जिसको माथ नवाती है, सूरज की पहली किरणें नित जिसको माथ नवाती है, कन कन पावन करती गंगा जमुना इठलाती है, हर दिन नव उत्सव ले आते, हर दिन नव उत्सव ले आते, छा छा छह मौसम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, चार वेद छह शास्त्र उपनिषद मानव का निर्माण करे, चार वेद छह शास्त्र उपनिषद मानव का निर्माण करे, रामायण गीता गायत्री जन जन का कल्याण करे, सबसे सम आदर पाते हैं, सबसे सम आदर पाते हैं सारे पथ धर्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, द्वेष घृणा से दूर परस्पर प्यार भरा व्यवहार करे, श्रद्धावानी धर्म हमारे माँ की जय जयकार करे, इसके हित ही जीने मरने की ले आज कसम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आप सभी
2: धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो अब तक हमको पढ़ाते रहे, इस संगोष्ठी का संचालन करते रहे आदरणीय डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी, अब उनका

0: वो हम सबको वह बताएं, वह सुनाएं जो उन्होंने देखकर समझकर अनुभव से हम अपनी कविताओं में उकेरा है। चार मिसरों से उन्हें बुलाता हूँ कि हाथों में मेरे बाल कर जो रख दिया दिया, कि हाथों में मेरे बाल कर जो रख दिया दिया, मन तब से मंत्र मंत्र है, तन है दिया दिया, और जो मांगता तो मांगता भी क्या मैं उससे तब, जो मांगता तो मांगता भी क्या मैं उससे तब, कुछ बोलने से पहले जिसने कह दिया
1: आदरणीय ज्योति उपाध्याय जी, मैं चाहता हूँ कि बहुत सुंदर पढ़ा तो मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूँ। मैं अपनी एतुकांत कविता की कुछ लाइन पढ़ता हूँ। अब मेरा मन संपूर्ण विराम ले लेना चाहता है। अब मेरा मन संपूर्ण विराम ले लेना चाहता है। अंदर से इच्छाएं बहुत कुछ कहती सी प्रतीत हो रही हैं, पता नहीं क्यों। अब अंदर से जीवन पथ पर आगे बढ़ने बढ़ाने की प्रक्रिया का समय सावधान कर रहा है।
0: क्या बात है?
1: मुझे लग रहा है मेरे मन के अंदर कोई बैठा है जो मेरे मन को निरंतर निर्देशित कर रहा है कि दुनियादारी की दौर से अब विराम ले लिया जाए, खासकर संग्रह और संचय जैसी चीजों से। अब संग्रह और संचय जैसी चीजों से अब मुझे मन में लगता है कि जो कुछ हम सभी के पास है वह बहुत है। ज्यादा संचय ज्यादा संग्रह भला अब तुम्हारे किस काम का।
0: वाह।
1: जो उसको सकारात्मक प्रयोग भोग करेंगे वे भी तो भविष्य में अपने माफी कुछ ना कुछ तो अवश्य करेंगे। आखिर हम सभी सीमित समय के मेहमान होने के बावजूद भी इतने सारे संग्रह के पीछे पड़े हैं, जबकि हमारी शारीरिक मानसिक स्थिति अब जवाब देने लगी है। वह बार बार हमें संकेत कर रही है। कई बार जब मैं एकांत में चिंतन में बैठता हूँ तो मेरे मन के कोने में महसूस होता है कि जितना जीवन का हिस्सा जिया हमने, अब उसका बहुत कम हिस्सा ही तो जीने के लिए हमारे पास शेष बचा है। अब यह सने सने आभास होने लगा है, फिर भी हम सभी देख रहे हैं चारों तरफ वातावरण की आपाधापी, थोड़ा और
0: बहुत अच्छा चंद्रमा जी, बहुत अच्छा।
1: धन्यवाद सर।
0: आग्रह है कि कम से कम एक ऐसी कविता और पढ़ें।
1: धन्यवाद सर। एक और छोटी सी एतुकांत कविता है कि कभी सोचा तुमने कितने अवशेष बचे हैं हमारे जीवन में। कभी सोचा तुमने कितने अवशेष बचे हैं हमारे जीवन में, हम कितने अवशेषों को सहज कर रख पाए हैं अपने पूर्वजों के।
2: क्या बात।
1: हम कितने अवशेषों को सहज कर रख पाए हैं अपने पूर्वजों के, हम बस पीढ़ी दर पीढ़ी हुंकार भरते हैं अपने आप में ही बिना किसी खोज के।
2: क्या बात है।
1: हम बहुत कुछ खोजते हैं दूसरों के इतिहास में हमेशा हमेशा से, पता नहीं क्यों हम अपने आप को घोषित कर देते हैं बहुत ज्यादा व्यवहारिक, बहुत ज्यादा आदर्शवादी, बहुत ज्यादा बहुत कुछ कुछ।
2: सही बात।
1: लेकिन यहाँ पर सवाल यह पैदा होता है कि जो दूसरों के इतिहास को बारीकी से खोजते हैं, उनके इतिहास में बिंदुवार जाना चाहते हैं, तह तक जाकर कभी वे स्वयं अपने इतिहास के बारे में भी आत्मसात करें, अवलोकन करें, खोजें अपना भी उसी तरह स्वयं का इतिहास, करें तुलनात्मक अध्ययन अपने इतिहास से सामने वाले का। हम सभी आदतन कभी ना कभी दूसरों के इतिहास को बिंदुवार खोजने में अव्यस्त हो जाते हैं। शायद हमें लगता है कि दूसरों का इतिहास खोजना बहुत आसान है, जैसे दूसरों के बारे में बोलना बयां करना बहुत आसान है।
2: सही बात।
1: लेकिन जब अपने इतिहास को पढ़ते समय स्वयं के बारे में परत दर परत खुलती हैं नकारात्मक रूप में, तो हम अपने आप में मौन साध लेते हैं। फिर हम अपने स्वयं के इतिहास का अवलोकन आत्मसात नहीं करते। हम खुद स्वयं के इतिहास की चर्चा करते हुए

0: मौन मूक हो जाते हैं। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छे।
0: साथियों, आज की संगोष्ठी में हमारे साथ, मैं पुनः कहूंगा कि 23 के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मौजूद थे। साथियों, आपको ये गोष्ठी पसंद आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।
1: बहुत आभार।
2: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे डॉक्टर आदेश त्यागी, डॉक्टर प्रवीण आर्य, डॉक्टर ज्योति उपाध्याय और डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

0: मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खेलों के मैदानों की हेडलाइंस पर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चीन की गुआओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टलीना की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव कुछ देर में होंगे आमने सामने। चेकिया की लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हरा करके अपना पहला विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब हासिल किया। इंग्लैंड और गत विजेता अर्जेंटीना ने फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का लक्ष्य दिया। और एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीत करके 16 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के साथ, जो एकदम अंत की तरफ अपने बढ़ चला है और एक के बाद एक खिताबों के विजेताओं के फैसले होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज चीन की गुआओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टलीना मडलिनोविक की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में कनाडा की गैब्रिएला डिबोस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से हराया। पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला आपसे कुछ देर में इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव के बीच में होना है। तो एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन यानिक हैं जो दूसरी तरफ फ्रेंच ओपन के विजेता ज़ेवरेव हो गए। इससे पहले चेकिया की लिंडा नोस्कोवा ने अपना पहला विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। लिंडा ने सेंटर कोर्ट पर खेले गए खिताबी मुकाबले में अपने ही देश की कैरोलिना मुकोवा पर शानदार जीत दर्ज की। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: लिंडा नोस्कोवा ने कल विंबलडन के एक रोमांचक महिला सिंगल्स मुकाबले में कैरोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराते हुए अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब हासिल किया। दूसरा सेट हारने के बाद नोस्कोवा ने शानदार वापसी करते हुए अंतिम सेट और मुकाबला अपने नाम किया। 21 वर्षीय खिलाड़ी मुकोवा ने पहला सेट हारने के बाद दूसरे सेट में जोरदार वापसी की और सेट 7-5 से जीतकर मैच को निर्णायक सेट तक खींच लिया। हालांकि नोस्कोवा ने अंतिम सेट में फिर से नियंत्रण हासिल किया और अहम मौकों पर संयम बनाए रखते हुए मैच अपने नाम कर लिया। ये नोस्कोवा की पहली विंबलडन खिताब और एक बड़ी ग्रैंड स्लैम जीत है। 21 वर्षीय नोस्कोवा अपनी आदर्श खिलाड़ी और अपने देश के दिग्गज पेट्रा किवतोवा के बाद सबसे कम उम्र की विंबलडन चैंपियन बनी। वहीं पुरुष डबल्स का खिताब फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन की जोड़ी ने जीत कर अपने नाम किया। इस एंग्लो फिनिश जोड़ी ने कल एल सल्वाडोर के मार्सिलो अरिवालो और क्रोएशिया के मेट पावे को 7-6, 7-6 से शिकस्त दी। इसी के साथ पैटन ओपन एरा में 2 विंबलडन पुरुष डबल्स टाइटल जीतने वाले पहले ब्रिटिश पुरुष बन गए। पैटन और हेलियोवारा ने इससे पहले साल 2024 में यह खिताब जीता था और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की ट्रॉफी भी अपने नाम की थी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो तमाम खिताब फाइनल हो गए हैं, बस बचा है मेन सिंगल्स जो अब से कुछ देर में शुरू होगा दो चैंपियन खिलाड़ियों के बीच। और अब रुक करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा विश्व कप का, जहां इंग्लैंड और गत विजेता अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से और अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सुनते हैं इन दोनों मैचों का पूरा हाल।
2: इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नॉर्वे को 1-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इंग्लैंड के इस जीत के नायक जूड बेलिंगम रहे, जिन्होंने अतिरिक्त समय में टीम के लिए विजयी गोल दागा। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के 36वें मिनट में एंड्रियास शेल्डरूप ने पहला गोल करते हुए नॉर्वे को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद बेलिंगम ने पहले हाफ में इंजरी टाइम में शानदार गोल दागते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद मुकाबला अतिरिक्त समय में पहुंचा, जहां 93 मिनट में बेलिंगहम का जादू एक बार फिर देखने को मिला। उन्होंने मुकाबले का अपना दूसरा गोल करते हुए इंग्लैंड को 2-1 की बढ़त दिला दी, जो अंत तक कायम रखी।
3: Jude Bellingham made the difference. It has finished. Norway 1, इंग्लैंड से।
2: इससे पहले इंग्लैंड 1966, 1990 और 2018 में सेमीफाइनल में पहुंचा था। 1966 में इंग्लैंड ने खिताब भी अपने नाम किया था। वहीं एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अर्जेंटीना को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शानदार शुरुआत मिली और 10वें मिनट में मिले कॉर्नर पर लियोनेल मेसी ने बेहतरीन क्रॉस दिया, जिसे एलेक्स मैक एलिस्टर ने बिना कोई गलती किए हेडर की मदद से गोल में तब्दील कर दिया। इसके बाद दूसरे हाफ की शुरुआत स्विट्जरलैंड के नाम रही। मैच के 67वें मिनट में टीम ने मुकाबले में वापसी करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया। स्विट्जरलैंड की ओर से पहला गोल डैन एंटोय ने किया। 90वें मिनट तक स्कोर 1-1 की बराबरी पर रहा। मुकाबला अतिरिक्त समय में चला, जहां 112वें मिनट में अर्जेंटीना के अल्वारेज स्विट्जरलैंड के डिफेंस को भेदने में सफल रहे और टीम को मुकाबले में 2-1 की बढ़त दिला दी। इसके बाद इंजरी टाइम में लोटारो मार्टिनेज ने अर्जेंटीना के लिए तीसरा गोल करते हुए 3-1 से टीम की जीत पक्की कर दी।
3: Argentina's pursuit of greatness goes on. It is Argentina.
2: अब सेमीफाइनल में 15 जुलाई को अर्जेंटीना की भिड़ंत इंग्लैंड से होगी। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: अड़तालीस टीमों के साथ इस विश्व कप का अभियान शुरू हुआ था और अब ये आंकड़ा सिमट कर 4 टीमों पे आ चुका है। सेमीफाइनल की दौड़ एकदम स्पष्ट हो चुकी है और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष, हमारे सहयोगी विशेष। कौन कौन सी 4 वो टीमें हैं, इंग्लैंड और अर्जेंटीना को अगर हटा भी दिया जाए, बाकी 2 टीमें कौन सी हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और क्या तस्वीरें आने वाले मुकाबलों की?
4: शक्ति, जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा वो फ्रांस और स्पेन के बीच में खेला जाएगा। फ्रांस एक बहुत ही अनुभवी टीम है और विश्व विजेता भी रह चुकी है। वहीं अगर हम स्पेन की बात करें तो ये उनका सिर्फ दूसरा सेमीफाइनल होगा। हालांकि बहुत ज्यादा दबाव होगा स्पेन के ऊपर, क्योंकि फ्रांस ने 7 बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, 2 बार उन्होंने खिताब जीता है और 2 बार वो रनर्स अप भी रहे हुए हैं। तो इस तरीके से स्पेन के लिए काफी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और अगर दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो वो मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस विश्व कप में बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा चुकी हैं। लेकिन अगर बात करें अर्जेंटीना की, तो वह 6 बार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है उन्होंने और 3 बार विजेता रहे हैं और 3 बार उपविजेता रहे हैं। और सबसे एक दिलचस्प बात यह है कि अर्जेंटीना ने आज तक कभी भी सेमीफाइनल मुकाबला नहीं हारा है, तो इंग्लैंड के लिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत साबित हो सकती है। और हालांकि इंग्लैंड ने भी एक बार विश्व कप अपने नाम किया है 1966 में और तीसरा सेमीफाइनल उनका ये होगा, एक बार वो विजेता भी रह चुके हैं।
0: जी बिल्कुल, तो इंग्लैंड वापस दोहराना चाहेगा। 70 साल का इंतजार, तकरीबन 60 साल का इंतजार हो रहा है इंग्लैंड के लिए। टीम्स की अक्सर बात होती है कौन कौन से खिलाड़ी इस पे नजर रहेगी, गोल्डन बूट ये सबसे एक्साइटिंग फेज होता है इस विश्व कप का, कौन सबसे आगे नजर आ रहा है?
4: शक्ति, इस समय किलियन एम्बापे और लियोनेल मेसी दोनों 8-8 गोल के साथ पहले और दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, लेकिन एम्बापे ने उनसे मेसी से ज्यादा असिस्ट किए हैं, इसलिए वह रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अगर तीसरे और चौथे स्थान की बात करें तो वहाँ बेलिंगम और हैरी केन वो दोनों बने हुए हैं, लेकिन बेलिंगम ने ज्यादा असिस्ट किए हैं इसलिए वह तीसरे स्थान पर, हैरी केन चौथे स्थान पर हैं। वहीं डेम्बेले जो है फ्रांस के उन्होंने 5 गोल के साथ वो 5वें स्थान पर बने हुए हैं।
0: जी बिल्कुल, मात्र गोल का महत्व नहीं है, महत्व उन खिलाड़ियों का भी है जो असिस्ट करके गेंद को गोल के करीब तक पहुंचाते हैं। और अब रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का।

0: जहां लंदन के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 19 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। भारत के लिए यशिका भाटिका ने सर्वाधिक 113 रन और स्मृति मंधाना ने 70 रन बनाए। इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई थी और भारत ने इसके आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की थी। भारत के लिए क्रांति गौर ने बड़ी शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के 5 खिलाड़ियों को वापस पवेलियन भेजा था और पहली बार वो जो बोर्ड है लॉर्ड्स मैदान का जहां पर उन खिलाड़ियों के नाम लिखे जाते हैं जो 5 विकेट हॉल हासिल करते हैं, क्रांति गौर का नाम अंकित हुआ है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस उपलब्धि पर क्या कहा।
1: वो पता चली है कि जो नया रिकॉर्ड है वो मैंने करा है। तय की फैमिली में पहले किसी को कॉल करने का, देन मैंने मेरे बड़े भाई को कॉल किया, देन वो भी बहुत खुश है, देन पूरी फैमिली। देखा जाए आज मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ के सारे लोग मुझ पर प्राउड फील कर रहे होंगे। आज थोड़ा सा जब मैं ड्रेसिंग रूम में बैठी तो मैं सोच रही थी उस बोर्ड की साइड देख के, क्या सेकेंड डे है हमारा, क्या जिसमें नाम लिखवाना है मुझे। मैं करके 5 मिनट तक उस बोर्ड की साइड देखी, देन उसके बाद मैं नीचे गई थी। जैसे मैंने 5th विकेट लिया तो जैसे हर एक प्लेयर्स का अचीवमेंट, देन 5 विकेट की जो खुशी
0: बिल्कुल। और अब आईसीसी के दूसरे हॉल ऑफ फेम की तरफ चलते हैं जहां भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली, अंजुम चोपड़ा और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने अपना नाम अंकित किया है। इन्हें क्लास ऑफ 2026 का हिस्सा बनाया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। कल इसकी घोषणा की गई एडिनबर्ग में और अब कुल संख्या 125 हो गई है। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने तीनों पूर्व कप्तानों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी।
2: भारत के सबसे प्रभावशाली कप्तानों में से एक सौरभ गांगुली ने अपने करियर के दौरान भारतीय टीम को एक मजबूत टीम में बदला। शानदार बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 113 टेस्ट मैच में 7212 रन और 311 एक दिवसीय मैच में 11363 रन बनाए। बतौर कप्तान भारतीय क्रिकेट के इस दादा ने भारत को वर्ष 2000 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी और आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2003 के फाइनल तक पहुंचाया। उनकी कप्तानी में टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2002 का संयुक्त खिताब भी जीता। इस सम्मान पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरभ गांगुली ने कहा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात है। क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों के बीच मेरा नाम शामिल होना मेरे सबसे यादगार पलों में से एक रहेगा। वहीं शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद अंजुम चोपड़ा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज 1000 वनडे रन बनाने वाली और 100 वनडे मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने 2002 में दक्षिण अफ्रीका में भारत को उसकी पहली विदेशी टेस्ट जीत दिलाई और आईसीसी महिला विश्व कप 2005 के फाइनल तक टीम के यादगार सफर में अहम भूमिका निभाई। यह सम्मान पाने पर अंजुम चोपड़ा ने कहा कि खेल कूद वाले परिवार में पली बड़ी होने के नाते मैंने क्रिकेट के दिग्गजों और उनकी बड़ी उपलब्धियों के बारे में कहानियां सुनी थी। भारत के लिए खेलने का सपना बहुत कम उम्र में ही मन में बस गया था। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान केविन पीटरसन को भी उनके शानदार करियर की उपलब्धियों के लिए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: हालांकि एक बुरी खबर भी भारत के लिए इंग्लैंड से आई। इंग्लैंड ने भारत को चौथे 5वें टी20 मैच में साउथहैम्पटन में 56 रन से हरा करके श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है। निशानेबाजी में भारत की नीरू डांडा ने इटली के लोनाटो में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रच दिया है।
3: What a great close-up on the cameras, and the cheers go up just off camera. We just caught him there, Pete Wilson, the coach, out of his seat, punch in the air. Still one more shot to go from Carole Kolmanieff. It's another miss for the French athlete, but the moment that Nehru managed to nail the gold just happened a few moments ago. And you've got a feel for Carole Kolmanieff. She shot so well, came into this final, made a really good start, a perfect start, actually.
0: तो एक शानदार प्रदर्शन और एक बेहतरीन खिलाड़ी, पहली ट्रैप खिलाड़ी बनी है भारत के लिए महिला वर्ग में, जिन्होंने भारत के लिए पदक जीता, वो भी स्वर्ण पदक। और अब रुक करते हैं एथलेटिक्स का, जहां चीन के ओडोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारत ने अपना शानदार अभियान 16 पदकों के साथ समाप्त किया, जिसमें 3 स्वर्ण पदक शामिल थे। और अब संडे का दिन है तो बात फिटनेस की जाए, यानी फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आज देश में संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इसके 81वें संस्करण में आज नई दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट और भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सुमन देवी ने हिस्सा लिया। ये सुनते हैं सुमन देवी ने इस बारे में क्या कहा।
1: ये बहुत अच्छी चीज हो रही है संडे को, ये फिट इंडिया के साइकिलिंग बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज को कंटिन्यू रखे और अपने सबको मैं कहना चाहूंगी कि ये सब लोग कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहे।
0: जी बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि साइकिलिंग जो है वो फिटनेस के लिए, पर्यावरण के लिए और तमाम पहलुओं से बेहद लाभदायक होती है। और फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर उत्कर्ष सक्सेना ने भी फिट इंडिया संडे की सराहना की है और कहा कि ये स्वस्थ भारत बनाने के लिए एक सकारात्मक कदम है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप अपनी राय sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमेरिका ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमेरिकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते। और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। अरब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
5: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात है। उन्होंने कहा कि ईरान का हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फुकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री

0: होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
1: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारम्भ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
4: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और RTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की।

पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन के गुओ हांजू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील है। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सके। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देश भर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16

पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बाल का एडमी का और बाबुल सुप्रियो की आवाज में अभी आप सुन रहे थे प्रसून जोशी का लिखा गीत, संगीत चेतन ललित का था, फिल्म थी हम तुम।
1: कुछ यादें अतीत की।
2: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
1: कुछ बातें वर्तमान की।
3: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ, रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
1: कुछ सपने भविष्य के।
4: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
1: कुछ किस्से अनकहे।
0: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
1: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

खामोशी फिल्म का ये गीत था अलका याग्निक और ए हरिहरन की आवाज़ों में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया जतन ललित ने। आइए सुने बॉम्बे जयश्री की आवाज़ में समीर का लिखा गीत। संगीत है हरीश जयराज का, फिल्म है रहना है तेरे दिल में।

कार्यक्रम का अगला गीत कार्तिक की आवाज में, गीत नीलेश मिश्रा का, संगीत प्रीतम का, फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई।

बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: मेरे शरीर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे कुमार का लिखा गीत। संगीत प्रीतम का था, फिल्म थी दिल तो बच्चा है जी। कार्यक्रम का अगला गीत फोर्स फिल्म से। आवाजें कार्तिक और बॉम्बे जयश्री की, गीता जावेद अख्तर का, संगीत हैरिस जयराज का।
1: तो मैं कैसे कहूं सारी जो बातें दिल कहता है।

कपूर एंड सन्स फिल्म का ये गीत था अरिजीत सिंह और असीस कौर की आवाज़ों में। देवेंद्र काफिर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया तनिष्क बागची ने। कार्यक्रम का अगला गीत पलक मुच्छल की आवाज़ में।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं गुड्डू रंगीला फिल्म का गीत, चिन्मय श्रीपदा और शाहिद माल्या की आवाज़ों में। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत अमित त्रिवेदी का है।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजने को है अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज प्रस्तुत है श्री कुमार मरडुर का गायन।

0: नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्ला खान युव पुरस्कार पा चुके कुमार मरडूर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रखर गायक के रूप में जाने जाते हैं। किराना और ग्वालियर घराने की गहरे समझ के साथ साथ अपने पिता पंडित सोमनाथ मरडूर से मिली तालीम ने उनकी गायकी को एक अनोखा अंदाज दिया है। दिग्गज उस्तादों की प्रेरणा से सजी उनकी इस गायकी में जयपुर अतरौली और अन्य घरानों की झलक भी मिलती है। एक बहुमुखी कलाकार और संगीतकार के रूप में कुमार मरडूर ख्याल ठुमरी हिंदी भजन मराठी अभंग कन्नड़ दास साहित्य कन्नड़ वचन साहित्य और कई अन्य संगीत परंपराओं का अन्वेषण करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार कुमार ने देश भर के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति दी है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री कुमार मरडूर अवार्डेड द उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार बाय द संगीत नाटक अकेडमी। कुमार मरडूर स्टैंड्स आउट एज अ गिफ्टेड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। His grounding in the Kirana and Gwalior gharanas, along with training under his father, Pandit Somnath Mardur, has led to a unique gaiki that weaves in elements from Jaipur Atrauli and other gharanas, built on deep riyas and inspiration from legendary maestros. A multifaceted performer and composer, Kumar explores khayal, tumri, Hindi bhajans, Marathi abhangs, Kannada dasa sahitya, Kannada vachana sahitya, and many other traditions. An A-grade artist of Akashwani and Doordarshan, Kumar has performed throughout the country in various prestigious concerts.
0: Aaj ke is karyakram mein aapke saath tabla par Pandit Satlingappa Desai Kallur aur harmonium par Sri Panchakshari Hiremat saath de rahe hain. Shri Kumar Mardur apne karyakram ka prarambh raag Chayanat se kar rahe hain. Vilambit Jumra Inayat Ho
1: In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremat. Shri Kumar Mardur will begin his vocal recital with Raag Chayanat, Vilambit Jhumra, Inayatahu, Drut Tintal, Eri Maliniya. Followed by Tarana in Drut Teen.

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मडूर प्रस्तुत कर रहे हैं राग भाग्यश्री। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती कराता।
1: You just heard राग छायानट। श्री कुमार मडूर will now present राग भाग्यश्री। विलंबित एकताल सखी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती करता।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लोर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was Rag Bageshri. With that, we come to the end of tonight's Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was earlier recorded at Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
4: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके।

0: मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि होर्मुज जलमध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलमध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात है। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू क्वोक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माह के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माह के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ओडोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।